मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 मई सन 2026। सुबह के 5:55 और 50 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन

इस सुबह की सुनहरी रोशनी में ठंडी ठंडी हवाओं, महकते फूलों की खुशबू और पंछियों के मधुर संगीत भरे गुंजन के साथ एक नई आशा, नई उम्मीद और आसमान को छूने की कोशिश में कामयाबी की चाहत लिए नई सोच के साथ लेकर नमस्ते लखनऊ का एक और सफर। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा। सुप्रभात, नमस्कार। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 6 बजे हैं, समय है देश दुनिया की ताजा खबरों को जानने का। हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी

0: ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी लखनऊ है, धड़कन देश की। सुबह के 6:05 हुए हैं। नमस्ते लखनऊ के आज के अंक की शुरुआत कार्यक्रम कृषि चर्चा के साथ। कार्यक्रम में आज का विषय कृषि विविधीकरण। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी।
3: शुभ प्रभात। कम लाभप्रद फसलों के स्थान पर अधिक लाभप्रद फसलों को अपनाना, फसल प्रजातियों के साथ साथ क्रॉपिंग सिस्टम यानी फसल चक्र में बदलाव व आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात एवं प्रतियोगिताओं को देखते हुए बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ कृषि, उद्यान, पशुपालन एवं कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन तथा वनों के लिए उपयुक्त दशा तैयार करने की रणनीति को फसल विविधीकरण कहते हैं, यह हम सभी जानते हैं।

0: हमारे उत्तर प्रदेश में कृषि, कृषि उद्यान पशुपालन, कृषि उद्यान पशुपालन मत्स्य, इस तरह के कई फार्मिंग सिस्टम पहले से हैं। इनके अन्य सम्मेलन विभिन्न स्थितियों में अपनाकर तरह तरह से चीजें पैदा की जाती हैं। इन पद्धतियों में वस्तुओं की उत्पादकता एवं उत्पादन हमेशा लाभप्रद नहीं हो सकता, विशेषकर कृषि उत्पादन तंत्र में, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में धान गेहूं आधारित फसल चक्र बहुतायत से अपनाया जाता है, जिसका लागत लाभ अनुपात कम होता है। कम लाभ की दशा में फार्मिंग के यानी खेती के ऐसे संयोजनों को अपनाने की आवश्यकता होती है जो अधिकतम उत्पादकता के साथ साथ लाभ प्रदान कर सकें। खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के दो रास्ते हो सकते हैं, क्षेत्रफल बढ़ाकर या फिर उत्पादकता बढ़ाकर। कृषि भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाना या सीमांत भूमियों को कृषि के अंतर्गत लाना, जिसकी संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं बेतहाशा तरीके से हमारे यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है। भूमि उतनी ही है, सीमित है, लेकिन जनसंख्या दबाव के कारण इस पर बहुत बोझ पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पादकता बढ़ाना ही संभव उपाय प्रतीत होता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपज या उत्पादों के मूल्य में वृद्धि करने के उद्देश्य से जो श्रमिक वर्ग इसमें लगा हुआ है और साथ ही साथ पूंजी के औसत निवेश को बढ़ाना, फसल उत्पादन तंत्र में प्राय चार स्थितियां बनती हैं, जिसे हम सभी समझते हैं, जानते हैं या फिर उसे जानने की कोशिश करते हैं। जहां उत्पादकता एवं फसल क्षेत्र विस्तार दोनों ही कम है, वहां फसलें अवांछित हैं और विविधीकरण की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति जहां उत्पादकता कम है लेकिन फसल क्षेत्र विस्तार अधिक है, ऐसी स्थिति में फसल स्थापन की जा सकती है या फिर निवेश व तकनीक के प्रयोग से उत्पादकता बढ़ानी चाहिए। तीसरी स्थिति यह भी होती है जहां अधिक क्षेत्र विस्तार के साथ उत्पादकता भी उच्च हो, वहां प्रसंस्करण, विपणन, मूल्य संवर्धन के द्वारा टिकाऊपन लाना चाहिए। चौथी स्थिति यह बनती है जहां उच्च उत्पादकता एवं कम फसल विस्तार हो, वहां क्षेत्र विस्तार को बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है। फसल विविधीकरण विभिन्न स्थितियों में दो तरह से संभव हम सभी कर सकते हैं, जो हमारे लिए लाभप्रद हो सकती है। एक तो क्षैतिज विविधीकरण, वर्तमान में जो फसल पद्धति है यानी क्रॉपिंग सिस्टम है, उसमें अधिक फसलों का समावेश किया जाए। इसके लिए तकनीकों एवं कुशल प्रबंधन की आवश्यकता होती है। पहले हमने देखा है कि मिलवा खेती होती थी, साथ ही साथ जायद में खेती बहुत कम होती थी, लेकिन सिंचाई की सुविधा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए जो कुछ कार्य इस दिशा में किया गया है, चाहे वह बीज के लिए हो या फर्टिलाइजर के लिए या जीवांश वहां उत्पन्न करने के लिए, इन सभी को समावेशित करके सिंचाई की सुविधा के साथ इसे संपन्न बनाया गया और आज जायद की फसल अच्छे ढंग से हमारे यहाँ हो पाती है। ऊर्ध्व विविधीकरण भी है, यह फसल के औद्योगीकरण की मात्रा एवं स्थिति को बताती है, जैसे कि सब्जी, फल और इसी तरह के अन्य जो कुछ उत्पाद हम इसमें शामिल करते हैं, जैसे कि मशरूम है उसे भी ले सकते हैं, बेबी कॉर्न है वो भी है। इस तरह से हम इसे अलग अलग स्थितियों को देखते हुए, बाजार की व्यवस्था को देखते हुए, सुचारू संचालन करते हुए खेती की जो विधियां हैं, जो तरीके हैं, उसके आधार पर उत्पादन सुनिश्चित कर पाते हैं।
1: कृषि विविधीकरण, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी, कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत। ये है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 6:10 हुए हैं। नमस्ते लखनऊ के सफर में पूरे दिन की धड़कन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए आइए जानते हैं आज का सुविचार। विषय है सहज जीवन, स्वर डॉक्टर विजय नारायण गुप्ता का।
2: परमात्मा की संपूर्ण सृष्टि सहज, सरल और सुंदर है। मनुष्य इसी सृष्टि का श्रेष्ठतम अंश है। स्वाभाविक रूप से हमारा जीवन भी सहज और सरल है। प्रयास ये होने चाहिए कि हमारी स्वाभाविकता बनी रहे। अंतः सलिला की भांति जीवन प्रवाह सहज रूप में चलता रहे, इस हेतु सत्य मार्ग के अनुसरण की अपेक्षा रहती है।

0: निरंतर प्रगति पथ पर बढ़ते रहने के लिए सरल सच्चे जीवन की अपेक्षा है। राग द्वेष और स्वार्थ की भावना हमें कुटिल बनाती है। हम कुपंथ पर चलने को उद्यत होते हैं, किंतु इसका परिणाम सुखद नहीं होता। प्रगामी जीवन के लिए तो हमें सहज रूप में कर्मनिष्ठ जीवन अपनाना होता है। अतः कुमार्ग और कुरीतियों को त्याग कर शिव संकल्प के साथ आगे बढ़ना होता है। प्रकृति के साथ जीना ही जीवन है, इसी भांति सबको साथ लेकर जीना ही जीवन है। सह अस्तित्व और समन्वय हमारे उत्कर्ष का हेतु है। व्यक्ति का व्यक्ति से अंतर संबंध ही सुखद समाज का हेतु है। इसलिए हमें परिवेश के साथ जीना सीखना चाहिए। यही कारण है कि चिंतनशील लोग लोकोपयोगी जीवन व्यतीत करते रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपना विश्लेषण निष्पक्ष भाव से करना सीखना चाहिए। इस आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया में अवगुण स्वतः दूर होने लगते हैं। उन्नति तथा उल्लास की स्वानुभूति हमें प्रेरित करती है। जीवन में शुभ संकल्प का होना हमारे कल्याण का हेतु है। कुटिलता कदापि ग्राह्य नहीं है, अपितु सहजता और सरलता नैसर्गिक गुण है। जीवन शाश्वत है और खुशियों से भरपूर है। सकारात्मक विचार हमारी आत्मशक्ति को बढ़ाते हैं। विवेक का जागरण हमें तनाव मुक्त करता है। स्वार्थ और अहंकार के वशीभूत जो उन्माद रहता है, आत्मीयता का भाव उसे समन्वय और स्वीकृति में बदलता है। सद्भाव हम में स्नेह और भाईचारा बढ़ाता है। निरासक्त भाव सेवा भावना लाता है। मानसिक और शारीरिक शुद्धिकरण में विचारों का बहुत बड़ा योगदान है। नकारात्मक विचारों से दूर रहने का अभ्यास आवश्यक है। इसके लिए जीवन पर विश्वास करना होता है, स्वयं की स्वीकृति करनी होती है, परिवर्तन के लिए इच्छा शक्ति को जगाना पड़ता है। हमारी सुरक्षा वह परम शक्ति है। उसने हमें आवश्यकता अनुसार सब कुछ उपलब्ध कराया है। हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। जीवन बहुत सरल है। जो हम देते हैं वही वापस पाते हैं। अतः सभी को सुख देने का प्रयास करना चाहिए। संत वाणी है, हो सके तो सुख दो, किसी को भी दुख न दो। हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार सोचते हैं, यानी उत्कृष्टता कार्य नहीं आदत है। अपने लक्ष्य की ओर हमेशा उन्मुख रहना चाहिए। इसका फल निश्चित मिलता है। और प्रयत्न करने पर भी यदि दैववशात सफलता न मिले तो इसमें व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता। अवरोध को स्वीकार कर उसका समाधान खोजना चाहिए। सोच बदल कर हम सचेत रहें तो तनाव नहीं होगा। जीवन की मौलिकता को पहचाने और स्वाश्रित बने।
1: सहज जीवन, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुविचार। स्वर डॉक्टर विजय नारायण गुप्ता का था। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम।

सुबह के 6:15 हुए हैं। नमस्ते लखनऊ के सफर में अब समय है ईश्वर की भक्ति का। कार्यक्रम है आराधना।

विद्या वारिधि मंगलदायक, गणपति पुत्र उमेश, सुख के दाता बुद्धि विधाता, गणनायक श्री गणेश। आइए करते हैं आराधना कार्यक्रम की शुरुआत श्री गणेश की वंदना के साथ।

अनंत अखंड अमर अविनाशी कष्ट हरण है शंभु कैलाशी, शिव भक्तन का पकड़े हाथ शिव संतन के सदा ही साथ। शिव ने है ब्रह्मांड रचाया तीनों लोक है

ये भक्त की भक्ति ही है कि वो ईश्वर की कृपा को जान पाते हैं, और ये रघुनंदनी हैं जो चंदन बनकर भक्तों के हृदय को शीतल कर देते हैं।

वो प्रेम में बाधाएं गिनती ही नहीं, गिरधर आराध्य हैं, वो कृष्ण के सिवा किसी को चुनती ही नहीं। कहती है, तेरे दर के सिवा मेरे गिरधर कहीं और जाया नहीं जाता, यूं तो राहें और भी बहुत हैं, मगर ये दिल हर किसी पर लुटाया नहीं जाता।

ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं। उस पथ पर चलना हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। प्रभु की अनुकंपा, दया, प्रेम और उनकी करुणा हम सब पर यूं ही बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ संपन्न होती है आज की आराधना। आज आराधना कार्यक्रम में आपने जिन कलाकारों को सुना वो थे बेला सुखाले, सुलाखे, हरिहरन, तुलसी कुमार, अशोक खोसला और

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की, और जारी है नमस्ते लखनऊ का सफर। ईश्वर के सुमिरन में एक और मोती, श्री रामचरितमानस गान लीजिए, सुनिए आज के कलाकार रविंद्र साठे, संगीत सतीश भाटिया का।

वनवासी कोल भीलों के सौभाग्य से ही मानो श्रीराम का चित्रकूट आगमन हुआ है। उनके दर्शन पाकर सभी सनात हो गए हैं। वनवासियों का कहना है, हे नाथ, जहां जहां आपने चरण रखे हैं वे स्थान अपनी समस्त प्राकृतिक संपदा पशु पक्षियों समेत धन्य हो गए हैं। अपने निवास के लिए भी आपने अत्यंत उपयुक्त स्थान चुना है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप आनंदित रहेंगे। हम लोग सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं, हिंसक पशुओं तथा अन्य घातक प्राणियों से आपकी रक्षा करेंगे। आप हमें आज्ञा देने में संकोच न करें। हम आपकी सुख सुविधा के लिए निरंतर आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। जब से लक्ष्मण तथा सीता सहित श्री राम ने वन में निवास किया है, तब से ही ये स्थान मंगलदायक हो गया है। वृक्षों में फूल फल आने लगे हैं, उन पर लताओं ने मंडप तान दिया है। पशु पक्षी जगत नए उत्साह से जीवंत हो गया है। सभी आपसी वैर भाव त्याग कर एक साथ विचरण करने लगे हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था, गायक कलाकार रविंद्र साठे। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र धड़कन देश की। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार सन्धिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति। अस्मिन् अवसरे वदन्तः नार्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विक व्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमे अन्तिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरम् आगतवान्। भारतस्य समृद्ध कला परम्परायाः उत्सवे भव्य सांस्कृतिक संध्यायाः कार्यक्रमे सम्पूर्ण यूरोपतः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्। लोकसभायाः अध्यक्ष ओम बिरला निगम विधि संशोधन विधेयक 20-26 इत्यस्य कृते संयुक्त समितिं घटितवान्। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता समितेः अध्यक्षरूपेण नियुक्त वर्तते। समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः विनोद श्रीधर तावडे, सुजीत कुमार, उज्ज्वल निकम इत्येतैः सह राज्यसभायाः 9 सदस्याः कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा, डॉ निशिकांत दुबे इत्येतैः सह निम्न सदनस्य सदस्याः च सन्ति। भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् सम्पर्कं प्राप्नोति, यद्धि 370+879,000 किलोमीटर तः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे मार्च मासपर्यन्तं भारतेन व्यावहारिक रूपेण स्वस्य ब्राडगेज जालस्य पूर्ण विद्युत्करणं प्राप्य यूरोपीय संघस्य, यूनाइटेड किंग्स, अमेरिका संयुक्त राज्यस्य च प्रमुख रेल व्यवस्थाभ्यः अग्रे स्थितं वर्तते। मणिपुरस्य अपर प्रमुख वस्त्र वाणिज्य उद्योग सचिवः अनुराग वाजपेयी इत्यनेन उक्तं यत् राज्य सर्वकारः राज्यस्य समृद्धानि वस्त्र हस्तकरघ परम्पराणि प्रवर्तयितुं अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु निर्यातं कर्तुं च कार्यं कुर्वन् अस्ति। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां अद्य सायं 7:30 कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं। नमस्ते लखनऊ के सफर में स्वागत है आपका फिर एक बार। आगे बढ़ते हुए आइए अब करते हैं सेहत की बात। कार्यक्रम है स्वास्थ्य चर्चा। आज का विषय मौलसिरी के औषधीय गुण। जानकारी दे रही हैं नीना सोनकर।
3: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज हम एक ऐसे वृक्ष की चर्चा करेंगे जो जितना सुंदर है उतना ही गुणकारी भी। इसके फूलों की खुशबू से वातावरण महक उठता है और इसके पत्तों, छाल और फलों में छिपे हैं अनेक औषधीय गुण। हम बात कर रहे हैं मौलसिरी की, जिसे कहीं कहीं बकुल या स्पेनिश चेरी भी कहा जाता है। ये पेड़ भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत समय से जाना जाता है और आयुर्वेद में इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। मौलसिरी का वृक्ष आमतौर पर छायादार होता है। इसके चमकीले हरे पत्ते और छोटे सफेद अत्यंत सुगंधित फूल होते हैं जो शाम के समय अधिक महकते हैं। इसकी ये विशेषता है कि इसे मंदिरों के आसपास या उद्यानों में लगाया जाता है, जहां ये न केवल वातावरण को शुद्ध करता है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। लेकिन इसकी सुंदरता गुणवत्ता और सुगंध के अलावा इसके औषधीय गुणों की चर्चा करना कहीं अधिक आवश्यक है।

0: क्योंकि ये वृक्ष केवल आँखों और नाक को सुख नहीं देता है बल्कि शरीर और मन को भी लाभ देता है। आयुर्वेद में मौलसिरी को विशेष रूप से दांतों और मुंह की स्वच्छता के लिए उपयोगी माना गया है। इसकी छाल को सुखाकर बनाया गया चूर्ण मुंह के छालों, मसूड़ों की सूजन और दुर्गंध में बहुत लाभदायक होता है। प्राचीन काल में लोग मौलसिरी की टहनी को दातुन की तरह उपयोग करते थे, जिससे दांत मजबूत रहते थे और मुंह की स्वच्छता बनी रहती थी। इसकी छाल में प्राकृतिक एंटीसेप्टिक और कसैले गुण होते हैं, जो मसूड़ों को कसते हैं और रक्त स्राव को रोकते हैं। मौलसिरी का प्रयोग केवल मुंह तक सीमित नहीं है, इसके पत्तों और छाल से बना काढ़ा श्वसन संबंधी समस्याओं में भी उपयोगी माना जाता है। यदि किसी को खांसी, जुकाम, गले में खराश या टॉन्सिल की समस्या हो तो मौलसिरी के काढ़े से गरारा करने से राहत मिलती है। इसके फूलों का रस हल्का शीतल और सौम्य होता है, जो गर्मियों में शरीर को ठंडक देता है। श्रोताओं, मौलसिरी का एक और बड़ा गुण ये है कि इसका मानसिक प्रभाव, इसकी सुगंध का मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये तनाव को कम करती है, मन को शांति देती है और नींद को बेहतर बनाती है। यही कारण है कि पुराने समय में लोग मौलसिरी के फूलों को तकियों में रखते थे या फिर कमरे में सजाते थे, ताकि वातावरण में एक सौम्यता बनी रहे। जब मन शांत होता है तो शरीर भी बेहतर कार्य करता है और यही समग्र स्वास्थ्य का मूल आधार भी है। मौलसिरी के फल भी छोटे होते हैं, लेकिन औषधीय दृष्टि से उपयोगी माने जाते हैं। इन्हें पाचन के लिए लाभकारी माना गया है। अगर किसी को भूख न लग रही हो या फिर बार बार पेट फूलने की शिकायत हो तो मौलसिरी के फल का सेवन करने की सलाह दी जाती है। ये पाचन अग्नि को बढ़ाता है और आंतों को साफ करता है। इसके अलावा इसकी जड़ और छाल का उपयोग पुराने बुखार और थकावट में भी किया जाता है, क्योंकि ये शरीर को अंदर से स्फूर्ति प्रदान करता है। एक और दिलचस्प पहलू ये है कि मौलसिरी का पौधा पर्यावरण के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। ये वायु को शुद्ध करता है, धूल और धुएं को सोखने की क्षमता रखता है और घर के आसपास लगाने से गर्मी में छाया और ठंडक भी देता है। इसकी यही विशेषताएं इसे औषधीय पर्यावरणीय संतुलन का एक आदर्श उदाहरण बनाती हैं। हमारे देश में मौलसिरी को धार्मिक दृष्टि से भी शुभ माना गया है। इसके फूल पूजा में उपयोग किए जाते हैं और कई स्थानों पर तो इसे वैवाहिक सौभाग्य और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। ये सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी हमें ये सिखाता है कि जो चीजें हमें सुगंधित करती हैं, वही हमारे शरीर और मन को भी बेहतर बना सकती हैं। आज जब हम रोजमर्रा की दौड़ में प्राकृतिक चीजों से दूर होते चले जा रहे हैं, तो ऐसे में मौलसिरी का वृक्ष हमें एक बार फिर ये याद दिलाता है कि हमारे आसपास ही वो सारी चीजें मौजूद हैं जो हमें शांति, सुंदरता और स्वास्थ्य प्रदान कर सकती हैं। हमें बस थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत है और थोड़ी सी जिज्ञासा की भी, ताकि हम इन वृक्षों से जुड़ सकें और अपने जीवन में उन्हें शामिल कर सकें। श्रोताओं, अगली बार जब आप किसी बाग या मंदिर के पास से गुजरें और मौलसिरी के फूलों की मध्यम सुगंध महसूस करें, तो बस कुछ पल रुकिए, उस सुगंध को महसूस कीजिए और इस वृक्ष की शक्ति को जानिए। ये केवल सजावट नहीं बल्कि सेहत का एक सजीव रूप है। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: मौलसिरी के औषधीय गुण, इस विषय पर जानकारी दे रही थी नीना सोनकर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम संप्रसारित किया जाएगा हमारे दिल्ली केंद्र से रात्रि 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार होंगे उस्ताद नसीर खान, जिनका सारंगी वादन आप सुनेंगे सुबह 7:31 पर और रात्रि 10:30 पर। इसके साथ ही आकाशवाणी

लखनऊ से सुगम संगीत का कार्यक्रम प्रसारित होगा रात्रि 8:10 पर, जिसमें आप सुनेंगे संयुक्ता बैनर्जी के स्वर में गीत। जन्म जयंती पर विशेष हिंदी कार्यक्रम लेकर आएंगे रात्रि 8:00 से। आज इस कार्यक्रम में सुनिए प्रकृति प्रेम और सौंदर्य के उपासक सुमित्रा नंदन पंत, आलेख वाचन और संपादन सुरेंद्र राजेश्वरी का और प्रस्तुति डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी की होगा। शाम 7:45 पर होगा कार्यक्रम कानून की बात। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे भेंट वार्ता।

जिले की हलचल कार्यक्रम का प्रसारण होगा हर रोज की तरह सुबह 9:15 पर। आज सुनिए महोबा और मुजफ्फरनगर जिले की हलचल। सुबह 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे आकाशवाणी प्रयागराज की पेशकश। लोकगीत के कार्यक्रम में हमारी आज की कलाकार होंगी मधु श्रीवास्तव और सुषमा प्रकाश। इनके स्वर में अवधि युगल लोकगीत आप सुनेंगे सुबह 9:50 पर कार्यक्रम लोकरंग में और दोपहर 2:45 पर लोकमाधुरी कार्यक्रम में। विज्ञान और किसान इस कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा दोपहर 2:30 पर। आज सुनिए भेंट वार्ता सतावर की उन्नत खेती, इस विषय पर स्वप्निल कुमार श्रीवास्तव से भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। मातृ शिशु स्वास्थ्य पर आधारित कार्यक्रम आंगनवाड़ी लेकर आएंगे दोपहर 1:15 पर, जिसमें विभिन्न स्वास्थ्य वर्धक विषयों पर चर्चा के साथ सुनेंगे भेंट वार्ता जच्चा बच्चा योजना, इस विषय पर नर्सिंग ऑफिसर नीमा पंत SGPGI लखनऊ से भेंट करता होंगी नीना सोनकर। हमारी सायंकालीन सभा के आरंभ में लेकर आएंगे इंफोटेनमेंट पर आधारित कार्यक्रम युवा तरंग शाम 5:45 का समय कार्यक्रम नई उड़ान का होगा, जिसमें सामयिक चर्चा विकास समाचार के अलावा सुनेंगे कपिल के साथ ओबी प्रगति के पथ पर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। हेलो किसान, किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम लेकर आएंगे शाम 6:30 पर। हेलो किसान कार्यक्रम में आज का विषय होगा किसान क्रेडिट कार्ड योजना, कृषि आधारभूत फंड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और नाबार्ड से देय सुविधाएं। इस विषय पर आपके सवालों के जवाब में होंगे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड लखनऊ के उप महाप्रबंधक रोहित श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति एवं संचालन डॉक्टर सुशील कुमार राय की होगी। इन सभी कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी लखनऊ से आपके मनोरंजन के लिए आपके पसंदीदा फिल्मी गानों का कार्यक्रम भी समय समय पर हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो ये थी आज आकाशवाणी लखनऊ से दिन भर प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप हैं आकाशवाणी लखनऊ के साथ। सुबह के 7:10 हुए हैं, सुनिए कार्यक्रम विविधा बस कुछ ही पलों में।

विविधा कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा। नमस्कार दोस्तों, हमारा जीवन और इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ सीखना या सबक लेना एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, और इस प्रक्रिया में किसी की सबसे बड़ी भागीदारी है तो वो है हमारी प्रकृति। वो कहते हैं ना, हमारे जीवन में कोई सबसे बड़ी और श्रेष्ठ शिक्षक है तो वो है ये प्रकृति, जिसमें निहित हर सजीव निर्जीव चीजें, यहाँ तक कि नदियां, पहाड़, हवा और जलवायु, और सबसे प्रमुख रूप से पेड़ पौधे और जीव जंतु हमारे जीवन

के हर दिन, हर कदम और हर मोड़ को प्रभावित करती हैं। प्रकृति की एक ऐसी ही कृति के बारे में आज हम बातें करेंगे आज की विविधा कार्यक्रम में, और प्रकृति की वो रचना है मधुमक्खी। जी हाँ श्रोताओं, आपने सही सुना, मधुमक्खी, जिसे केंद्र में रखकर आज के दिन यानी 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, है ना अनोखी बात। लेकिन ये मधुमक्खी भी ना अपने आप में प्रकृति की एक अनोखी संरचना है। मधुमक्खी एक उड़ने वाला सामाजिक कीट यानी कीड़ा, जो अपने छत्ते में शहद और मोम बनाने के लिए जानी जाती है। लेकिन दोस्तों, मधुमक्खी जिसके नाम में ही मिठास और काम में मीठे से भरा है और अंधेरे में रोशनी भी खेलता है, इस कीड़े का दूसरा रूप बड़ा ही खतरनाक है, जो है मधुमक्खी का डंक। ये मधुमक्खी जब काटती है ना तो मानो जान निकल जाती है। लेकिन इसके बावजूद वो कौन सी विशेषता है जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व मधुमक्खी दिवस को मनाया जाता है? तो दोस्तों, मधुमक्खी जो अपने छत्ते में शहद और मोम बनाने के लिए जानी जाती है, ये फूलों से पराग और मकरंद इकट्ठा करती है, और परागण यानी कि पॉलिनेशन क्रिया द्वारा फसलों और फलों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना विशेष।

और दोस्तों मधुमक्खी की यही वो विशेषता है जिसे कि उद्देश्य बनाकर आज विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य सुरक्षा में मधुमक्खियों और अन्य परागणकों का महत्व है और ये दिन आज उसे रेखांकित करता है, उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाता है। दोस्तों हर साल विश्व मधुमक्खी दिवस मनाकर हम मधुमक्खियों और अन्य परागणकों की महत्व भूमिका के बारे में जागरूकता को बढ़ा सकते हैं, जो लोगों और पृथ्वी को स्वस्थ रखने में अपनी भागीदारी निभाती है और उन चुनौतियों के बारे में भी हम बातें करते हैं जो सामने आती है। दोस्तों बात करें इस दिवस को मनाने के पीछे इतिहास की, तो इस दिन को मनाने की पहल स्लोवेनिया सरकार द्वारा की गई थी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएन ने 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित किया। पहला विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई 2018 को मनाया गया था और इस आयोजन की तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि इसी दिन आधुनिक मधुमक्खी पालन के अग्रदूत एंटोन जांशा का जन्म हुआ था। जांशा स्लोवेनिया के मधुमक्खी पालकों के परिवार से थे, जहां मधुमक्खी पालन एक महत्वपूर्ण कृषि गतिविधि है और जिसकी एक लंबी परंपरा है। दोस्तों आज मधुमक्खियों, परागण करने वाले कीटों और अन्य कई कीटों की संख्या में गिरावट आ रही है। ये दिन हम सभी के लिए एक अवसर प्रदान करता है, चाहे हम सरकारों, संगठनों या नागरिक समाज के लिए काम करते हैं या जागरूक नागरिक हैं। परागण करने वाले कीटों और उनके आवासों की रक्षा और संवर्धन करने, उनकी संख्या और विविधता में सुधार करने और मधुमक्खी पालन के सतत विकास का समर्थन करने वाले कार्यों को बढ़ावा देना ही आज के दिन का विशेष उद्देश्य है। दोस्तों हजारों वर्षों से मधुमक्खियों और मनुष्यों के बीच एक घनिष्ठ और बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता विकसित हुआ है, जो दुनिया भर में समुदाय द्वारा भोजन और आजीविका के लिए मधुमक्खियों पर निर्भरता से आकार लेता है। मधुमक्खियां अक्सर हमारी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बनती हैं। शहद इकट्ठा करने से लेकर मधुमक्खी पालन की विभिन्न प्रणालियां, ये जो तरीके हैं, लगातार बदलते वातावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप में ढलता रहा है।

0: विश्व मधुमक्खी दिवस 2026 यानी आज का दिन इस बात पर केंद्रित है कि मनुष्य और मधुमक्खियां किस प्रकार मिलकर लोगों और पर्यावरण का पोषण और संरक्षण करते आ रहे हैं। ये दिवस हजारों वर्षों में विविध संस्कृतियों और भूदृश्यों में मधुमक्खी पालन के विकास को उजागर करता है, साथ ही मधुमक्खी उत्पादन और स्वास्थ्य में सुधार लाने वाले और महिलाओं और युवाओं सहित मधुमक्खी पालकों की आजीविका को सहारा देने वाले नवीन दृष्टिकोणों को बढ़ावा देता है। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि इस दिन को मनाने के साथ साथ हम पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीकों द्वारा मधुमक्खी पालन में योगदान दें और अपने देश को एक नई दिशा में, अपने समाज को एक नई दिशा में ले जाएं। इस उम्मीद के साथ कि आज का ये विषय आपको कहीं ना कहीं प्रकृति के इस सूक्ष्म जीव को जीने के लिए और प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं विश्व मधुमक्खी दिवस की। विविधा कार्यक्रम में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा को। मिलेंगे नए विषय के साथ फिर। तब तक के लिए बने रहिए आकाशवाणी लखनऊ के साथ। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। सुबह के 7:20 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने गोरखपुर केंद्र से रिले करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ संदेश।
1: देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुँच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए या धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सामूहिक संकल्प को और अधिक सशक्त करेगा ये मंच। कल से करीब 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए पेट्रोल और डीजल के दाम। तेल विपणन कंपनियों ने राज्य में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बताते हुए लोगों से अनावश्यक अतिरिक्त खरीदारी न करने की अपील की। सर्वोच्च न्यायालय ने खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की दी अनुमति। लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने जारी किया भीषण लू का रेड अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जन कल्याण, सुशासन और क्षेत्रीय विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष तौर से चर्चा की गई। बैठक से संबंधित एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने इसे सहकारी संघवाद, समन्वित विकास और

0: और राज्यों के मध्य बेहतर तालमेल को नई दिशा देने वाला मंच बताया। श्री योगी ने कहा कि ये मंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सामूहिक संकल्प को और अधिक सशक्त करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कल से लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में पेट्रोल की कीमत 98.40 रुपए प्रति लीटर से लेकर 98.91 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 98.73 रुपए से लेकर 92.21 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। एक रिपोर्ट।
1: यह बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जल डमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। इस बीच प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। तेल विपणन कंपनियों ने स्पष्ट किया कि राज्य में ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त है और किसी प्रकार की घबराहट या अतिरिक्त खरीदारी की जरूरत नहीं है। एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति भी सामान्य बनी हुई है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: प्रदेश सरकार ने कहा है कि प्रदेश में किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। इस समय राज्य में 13.28 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 5.23 लाख मीट्रिक टन डीएपी सहित कुल 27.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की उपलब्धता है। एक रिपोर्ट।
2: प्रदेश में उर्वरक की उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में 3.13 लाख मीट्रिक टन अधिक है। कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए अनुदान पर सभी प्रकार के उर्वरकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुदानित उर्वरक का दुरुपयोग रोकने के लिए शासन ने किसान पहचान पत्र उपलब्ध कराने वाले किसानों को उनके अभिलेखों के आधार पर ही उर्वरक देने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि उर्वरकों की अत्यधिक खरीद और अनावश्यक प्रयोग से बचें। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ओडिशा के भुवनेश्वर में हुए एक कार्यक्रम में कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार देश में किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। श्री चौहान ने कहा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की अनुमति दे दी है। एक रिपोर्ट।
3: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति NV अंजारिया की पीठ ने कहा कि उन क्षेत्रों में कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिया जा सकता है जहां कुत्तों की आबादी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है और जहां कुत्तों के लगातार काटने और आक्रामक हमलों की घटनाओं से जन सुरक्षा खतरे में पड़ रही हो। न्यायालय द्वारा ये आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान के मामले में जारी किया गया है। इस बीच शीर्ष न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थल भेजने और नसबंदी करने के अपने पहले के आदेश को वापस लेने की मांग से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। उन्होंने बछरावा में सांसद निधि से बने बारात घर का उद्घाटन किया। श्री गांधी ने रायबरेली में PSC के 25वीं बटालियन के सामने 66 फीट रोड का भी उद्घाटन किया। कांग्रेस सांसद आज भी अपने संसदीय क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल लखनऊ में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की।

0: बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को सही समय पर और उचित मात्रा में बीज उपलब्ध कराए जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि हर हाल में 31 मई तक सभी विक्रय केंद्रों तक बीज पहुंच जाने चाहिए। सभी प्रमाणित बीज किसानों को 50% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वो अनुदान पर बीज प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन करें, जिससे बुआई का कार्य सुगमता और समयबद्धता के साथ संपन्न हो सके। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। प्रदेश के कई कई जिलों में पारा 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य के

0: कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन करें, जिससे बुआई का कार्य सुगमता और समयबद्धता के साथ संपन्न हो सके। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। प्रदेश के कई कई जिलों में पारा 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार तीसरे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। रातें भी असामान्य रूप से गर्म हो गई हैं और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। दिन चढ़ते ही सड़कें सूनी हो जा रही हैं और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की तादाद बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी।
0: भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेटों, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग और संबंधित सभी राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में हुए मुकाबले में कल राजस्थान रॉयल्स की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। कल शाम को हुए मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। इसके बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 220 रन बनाए। जवाबी बल्लेबाजी में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 19 ओवर और एक गेंद

0: जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। सुबह के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सारंगी वादन। कलाकार हैं उस्ताद नसीर खान। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग कलिंगड़ा। विलंबित रचना झूम्र ताल में निबद्ध है और द्रुत रचना 3 ताल में।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राग कलिंगड़ा में उस्ताद नसीर खान द्वारा सारंगी वादन। श्रोताओं, हम आपको बता दें, उस्ताद नसीर खान द्वारा सारंगी वादन आप रात्रि 10:30 पर प्रसारित होने वाले शास्त्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत भी सुन सकते हैं। मीडियम वेव के मीटर पर हम हैं आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 8 बजे हैं, सुनिए हिंदी समाचार पत्रिका समाचार प्रभात, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा बस कुछ ही पलों में।

0: अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अभी संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित

0: सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
1: इंडिया इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज।
2: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
1: पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
2: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को यह जानकारी दी।
5: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरे तरह माइग्रेट करती है। मैं सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
0: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
6: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
7: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने

0: की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3rd स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3rd दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोक सत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष हेल्थ डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यंग वरेली में। भाई कार्यक्रम शुरू हो चुका है यंग बरेली आकाशवाणी बरेली पर। तो हमारे जो श्रोता अभी तक सो रहे हैं या नहीं उठ पाए तो भाई उठ जाइए, क्योंकि आकाशवाणी बरेली आपको बोल रहा है गुड मॉर्निंग बरेली। और बहुत सारी

0: ये जानकारी आप तक लेकर आए हैं और बहुत सारे कार्यक्रम में मेहमान हैं, इसलिए आज हम मिलवाएंगे आपको अपने यंग अचीवर मानी पटेल से और बात करेंगे मधुमक्खी पालक सतीश कुमार कुशवाहा से, क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस। तो भाई शुरू करते हैं। और श्रोताओं, कहते हैं कि जीवन में अगर हम कोई लक्ष्य हासिल कर लें या अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसी ही आज एक यंग अचीवर हैं आकाशवाणी बरेली के साथ, जिनका नाम है मानी पटेल, जिन्होंने CBSE 12th के एग्जाम में पूरे भारत देश में दूसरी रैंक हासिल की है। तो उनसे बात की हमने, तो सुनते हैं ये बातचीत।
1: लहराती हुई जीत की इस चमक में, लहराती हुई जीत की चमक में मेहनत के वो हसीन पल नजर आते हैं। कांटों भरी राहों से गुजरकर ही अक्सर मुकद्दर के सितारे समझ जाते हैं। श्रोताओं, आज कार्यक्रम यंग बरेली में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मानी पटेल, जिन्होंने अभी CBSE के 12th के जो रिजल्ट आए हैं उनमें उन्होंने 99.6% अंक प्राप्त किए हैं और पूरे देश भर में इनकी दूसरी रैंक है। तो ये बहुत श्रोताओं खुशी की बात है बरेली के लिए। तो सबसे पहले मानवी जी, आपको, आपके माता पिता को और जो आपके गुरुजन हैं उनको बहुत बहुत बधाई, जिनके गाइडेंस में आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। स्वागत है कार्यक्रम में आपका यंग बरेली में।
2: नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जब आपका रिजल्ट आया उसके बाद कैसे महसूस किया आपने?
2: मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया है और मैं बहुत खुश थी, घर में सब बहुत खुश थे।
1: क्या विचार था जब आप 12वीं के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, तो उस दौरान मन में क्या चल रहा था कि मुझे कितने अंकों तक पहुंचना है, क्या मन में था उस समय आपके?
2: मन में तो मेरे यही था कि मुझे पूरे 100 तक जाना है, पूरे 100 अंक तक जाना है और जितना अच्छा हो सके उतने अच्छे से तैयारी करनी है।
1: मानवी जी, कौन कौन लोग आपको बहुत प्रेरित किए, जैसे आपके परिवार में या स्कूल में किन लोगों ने आपसे कहा कि नहीं मानवी, आप में बहुत क्षमता है, आप ऐसा कर सकती हैं?
2: सभी, मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा और मेरा पूरा परिवार, मेरी अध्यापिकाएं और मेरी दोस्त भी, मेरी सबसे अच्छी दोस्त जो है सान्या, उसने भी बहुत मेरा साथ दिया है।
1: थैंक यू कहने बोलेंगी दिल से कि भाई मेरे इन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया पढ़ाई के दौरान 12th में।
2: सबको ही, मेरे मम्मी पापा और मेरे अध्यापक अध्यापिकाएं और मेरी दोस्त, इन सबको।
1: कोई खास दोस्त, कोई खास टीचर जिनसे आप काफी प्रेरित हुई हो, मोटिवेट हुई हो?
2: वैसे तो मेरे सारे ही टीचर बहुत अच्छे हैं, पर दो मेरी ऐसी टीचर हैं, जैसे एक जिन्होंने मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई है लीना मैम, और एक जिन्होंने मुझे कक्षा 10 में इंग्लिश पढ़ाई थी, कक्षा 9 और कक्षा 10 में उन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ाई थी। इन दोनों ने हमेशा से ही मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित किया है और बहुत ज्यादा मुझ पर भरोसा किया है। और मेरी सबसे अच्छी दोस्त सान्या, इन लोगों से मैं बहुत ज्यादा इनका धन्यवाद करना चाहूंगी।
1: अच्छा मानवी, क्या शेड्यूल था आपका?
2: मैं सुबह सोकर उठती थी और मैं नाश्ता करती थी, और नाश्ता करते समय मैं नहीं पढ़ती थी, क्योंकि एकदम सुबह उठ के जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका सुबह उठने का मन नहीं करता, इसलिए मैं आराम से नाश्ता करती थी। फिर जब मेरा हो जाता था खाना पीना, उसके बाद मैं पढ़ने बैठती थी, और फिर मैं कभी कभी लगातार 1 घंटे पढ़ाया, कभी कभी लगातार 3 घंटे पढ़ा, जब तक पढ़ पा रही हूँ तब तक पढ़ा। फिर मैंने जैसे दोपहर में खाने के लिए ब्रेक ले लिया और फिर उसके बाद पढ़ाई की। फिर शाम के टाइम पे मैं, मेरी मम्मी और मेरा भाई, हम लोग छत पे टहलने जाते थे और खाना रात को खाने के बाद में दोबारा पढ़ती थी।
1: हम सुनते हैं ना कि लोग कहते हैं हम 16 घंटे पढ़ते थे, हम 17 घंटे पढ़ते थे या हम 12 घंटे पढ़ते थे, तो क्या आपके हिसाब से कितने घंटे पढ़ना चाहिए था या आपने कितने घंटे पढ़ाई की पर डे?
2: मैंने, वैसे तो मैंने भी काफी पढ़ाई की थी, पर जैसे वो बदलता रहता था, कभी कभी मैं दिन में 5 घंटे पढ़ रही हूँ, या फिर कभी कभी एग्जाम से जस्ट पिछले दिन मैं लगभग 13 घंटे तक भी पढ़ी हूँ। पर मेरा ये कहना है कि अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप दिन की 8 घंटे पढ़ाई कर करके भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, और लगातार पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। आप एक बार में बस बैठ जाएं किताब खोल के और पढ़ते ही रहें तो ना तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी और ना आपके मन को, आपके शरीर को अच्छा लगेगा। बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहें और खाना पीना करते रहें, बाहर जाते रहें या किसी ना किसी से बात करते रहें, जैसे हर बार जब भी आप पढ़ने बैठें, किसी दूसरी दूसरी जगह पे पढ़ने बैठें ताकि आपको आपका मन बोर ना हो, तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उससे आपकी पढ़ाई जल्दी भी होती है और अच्छी भी होती है। तो अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो आप कम पढ़ के भी अच्छा कर सकते।
1: किसी का दबाव था आप पे, प्रेशर की? नहीं, तुम्हें करना ही है इतना, ऐसा कुछ था?
2: नहीं, ऐसा कुछ नहीं था।

0: मैंने अपने मन से की थी पढ़ाई। मेरी मम्मी तो कह भी रही थी कि इतना ज्यादा क्यों पढ़ रही हो, तो मैंने बस बोला कि नहीं पेपर है तो पढ़ना है बस।
1: जो मानी इस वक्त जो छात्र 10th में हैं, कुछ 12th में होंगे, तो उनसे क्या कहेंगी भाई, तो कैसे तैयारी करें आपकी ताकि वो भी अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें?
0: पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको किसी भी टाइप का दबाव अपने ऊपर बनाने की जरूरत नहीं है, या फिर अगर कोई आपके ऊपर बना भी रहा है तो उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो आपकी बिल्कुल भी सहायता नहीं करेगा। आपका बस मन खराब होगा, आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है परेशान होकर। और दूसरी बात कि आपको ये चीज समझनी होगी कि भले ही आपके मार्क्स एंड में कितने भी आए, वो डिसाइड नहीं करते कि आप भविष्य में कहाँ जाएंगे या फिर आप भविष्य में कैसा करेंगे। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस, आपके मार्क्स आपकी उम्मीद के हिसाब से नहीं भी आ रहे हैं, तो उस चीज को लेके बुरा मनाने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात अगर पढ़ने की, मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि अपने पढ़ाई का तरीका पहचान लें, कि क्योंकि सब लोग एक ही तरह से नहीं पढ़ सकते हैं, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोगों को कुछ तरीके काम करते हैं, कुछ लोगों को नहीं करते। जैसे नोट से कुछ बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है, मुझे नोट्स से हेल्प नहीं मिलती, मुझे नोट्स बनाना नहीं आता। तो अपना अपना तरीका पहचान लीजिए कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहेंगे या किस तरीके से आप सबसे अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। और जब आप पढ़ने बैठे, जहां जहां से आपको लग रहा है कि मुझे मदद चाहिए या जहां जहां से आपको मदद मिल पा रही है, उसका जरूर यूज करें। और बिल्कुल भी किसी भी तरह की परेशानी अपने ऊपर ना लें और शांत मन होके पढ़ें, तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी।
1: बहुत ही अच्छी बात आपने कही। भविष्य में किस क्षेत्र में करियर बनाने की ओर आप देख रही हैं?
0: मुझे फैशन इंडस्ट्री में जाना है आगे।
1: अमूमन लोग जब इतने मार्क्स लाते हैं, उनसे जब पूछते हैं कि आप क्या बनेंगे, तो उनका ध्येय रहता है कि मुझे IAS बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। पर आपका एक अलग आपने चयन किया है, आपका जो क्षेत्र है करियर, ऐसे कोई खास वजह इस क्षेत्र में जाने की?
0: मेरा बस यही इस क्षेत्र में जाने की वजह यही है कि मुझे हमेशा से वही करना था जिसमें मेरी रुचि रही है। तो जैसे कई लोग होते हैं जिन लोगों की बहुत सारी रुचियां होती हैं, पर जब उनका करियर चूज करने का वक्त आता है तो वो सोचते हैं कि हम अपनी रुचियों में अपना करियर नहीं बना सकते हैं और शायद हम आगे जाके अच्छा नहीं कर पाए, तो कुछ लाइक ऐसा ले लेते हैं कि इंजीनियर बन जाते हैं या डॉक्टर बन जाते हैं। और वो सब भी बहुत अच्छे क्षेत्र हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं वो सब लोग। पर मैं बस यही कहना चाहूंगी कि सबसे कि आप अपनी रुचि में भी बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मेरी हमेशा आर्ट और क्राफ्ट में और फैशन में बहुत ज्यादा रुचि रही है, तो मैं आगे भी उसे ही कंटिन्यू करना चाहूंगी और उसमें ही अपना जीवन सफल बनाना चाहूंगी।
1: बहुत धन्यवाद मानी पटेल, आकाशवाणी के लिए आपने समय निकाला। आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं। आप खूब सारी ऊंचाइयां छुएं अपने जीवन में और अपने माता पिता, परिवार, समाज और देश प्रदेश का नाम रोशन करें, यही हमारी शुभकामना है।
0: धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यंग बरेली। समय है 8:29 हो चुके हैं और कार्यक्रम में हैं आप और हम। श्रोताओं, कार्यक्रम है यंग बरेली, तो वही जो हमारे यंग लोग हैं, यंग साथी हमारे हैं, उनके लिए एक सूचना है। साथियों, अगर आप भी लॉ के क्षेत्र में अपना भविष्य सवारने के बारे में सोच रहे हैं, तो भाई एक लिए सूचना है, सत्र 2026-27 में LLB और LLM की प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए, यानी 20 मई से, यानी कि आज से इसके जो है आवेदन आप दे सकते हैं ऑनलाइन। ये जानकारी मिल रही है हमें रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली से। तो जो लोग प्रवेश चाहते हैं, तो आज से ही प्रवेश जो उसके आवेदन शुरू हो रहे हैं। और भाई जिन छात्रों की पिछली बार परीक्षा छूट गई थी या वो फेल हो गए थे, तो उनकी जो परीक्षाएं हैं वो 26 मई से 26 जून तक चलेंगी। तो भाई आप बिल्कुल भी मत चुके, क्योंकि भाई कार्यक्रम हमारा यंग बरेली है, तो हमारा उद्देश्य कि हमारे जो यंग लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं वो समय से अपने फॉर्म अप्लाई करते रहें, और कहीं भी अगर दिक्कत आ रही तो उसके लिए हम साथ में हैं। आकाशवाणी बरेली साथ में आपको खबरें दे रहा है आपके भविष्य के लिए।

0: श्रोताओं, आज है 20 मई तो आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस। और इस अवसर पर हमने बात की मधुमक्खी पालक सतीश कुमार कुशवा से, तो सुनवाते हैं आपको ये बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम में आज हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं सतीश कुमार कुशवा जी। श्रोताओं आप जानते हैं आज है 20 मई तो आज है अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस। मधुमक्खी जो पालन है वो इतना लाभदायक है और कैसे शुरुआत की हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उन्होंने। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी।
2: नमस्कार सर।
1: नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सतीश जी आप जानते हैं आज मधुमक्खी दिवस है
2: जी सर।
1: और चूंकि आप मधुमक्खी पालन करते हैं, ये मधुमक्खी पालन कब से कर रहे हैं आप और कैसे मन में आपके विचार आया?
2: ये हो गया सर 2005 या 6 से कर रहे हैं हम। ये
1: जी
2: पहले हमारे पिताजी भी करते थे काम, तो उनसे 15-20 पेटियां घर पे ही रहती थी,
1: जी
2: तो हमें उनसे देख के प्रेरणा हुआ, तो हमने कहा और इसे बड़े पैमाने में किया जाए तो और अधिक लाभ होगा।
1: अच्छा खासा फायदा आपको हो रहा है इस व्यापार में?
2: हाँ जी, एक बक्सा सीजन में 30 से करीब 50 किलो शहद दे देता है
1: जी। अच्छा, शहद के अलावा कौन कौन से इसमें चीजें बन सकती हैं ताकि और जो
2: जी।
1: जो
2: एक तो
1: मुनाफा है वो
2: बी
1: डबल हो जाए?
2: हाँ एक तो बी पोलन होता है जो मधुमक्खियाँ फूल से पराग लेके आती हैं, और वो भी इकट्ठा कर लेते हैं हम लोग।
1: जी।
2: और दूसरा एक प्रोपोलिस है, हाँ वो भी इकट्ठा किया जाता है। और तीसरा मोम है, और चौथा है रॉयल जेली। रॉयल जेली तो हम लोग नहीं निकालते हैं। और एक
1: जी
2: बी बैनम होता है मधुमक्खी का विष,
1: जी
2: वो भी बहुत कीमत का है।
1: तो ये बताइए कि जो आप व्यापार करते हैं ये मधुमक्खी पालन का, ये बरेली में सारा माल, सारा जो आपका कच्चा माल है वो सब बिक जाता है?
2: हाँ जी, हमारे फुटकर ग्राहक हैं यहीं बरेली के
1: जी
2: लोकल,
1: जी
2: और कुछ लोग हैं दुकानदार, वो अपना थोक में भी ले जाते हैं यहाँ से, वो अपने पास ले जाके बेचते हैं।
1: सतीश जी, इस व्यापार के लिए कोई विशेष जगह होती है, जैसे कोई पेड़ पौधे हो या गांव हो या शहर में भी संभव है?
2: शहर में तो संभव नहीं है, गांव का किनारा हो तो ज्यादा अच्छा है,
1: जी
2: क्योंकि सरसों लाही की खेती होना चाहिए और लिप्टिस की

0: होने चाहिए।
1: जी
0: जैसे कभी कभी सीजन ऐसा होता है ना, पूर्वा ही पछुआ हवा का भी प्रकोप होता है, तो जैसे कभी सीजन हुआ जैसे लिप्टिस चल गया या कभी लाही चल गई,
1: जी
0: दोनों चीज जहाँ रहेगा तो वहां पे आपको कोई घाटा नहीं होगा।
1: कौन से महीने में इसकी शुरुआत होती है?
0: ये अक्टूबर से लेके आप मार्च तक का कर सकते हैं कभी भी।
1: शुरुआत कम से कम व्यक्ति कितने बजट में कर सकता है?
0: ऐसा अगर लागत अगर आपके पास अगर 50,000 का बजट है तो 10 बक्से से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर 2.5-3 लाख का बजट है तो 100 बक्से से स्टार्ट कर सकते हैं।
1: जी, कुल मिलाकर अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है, अगर उसके पास 50,000 रुपये की व्यवस्था है तो वो इस रोजगार को उसकी शुरुआत कर
0: हाँ
1: सकता है।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: अच्छा, इसके लिए सतीश जी कोई आपने विशेष कहीं से आपने ट्रेनिंग ली है या कोई कहीं से प्रशिक्षण प्राप्त किया है इसके लिए?
0: हाँ जी, जूली कोर्ट से प्राप्त किया है हमने।
1: अगर कोई व्यक्ति कहीं से ट्रेनिंग ना ले, क्या सफल नहीं हो पाएगा?
0: नहीं, सफल हो जाएगा सर, लेकिन थोड़ा समय लगेगा उसमें। जैसे ट्रेनिंग तो हम भी देते हैं ना,
1: जी,
0: जैसे उस हफ्ते में एक दिन भी आता रहे ना वो 1 महीने तक का, तो पूरी उसकी जानकारी मिल जाएगी।
1: हमने आपसे लाभ की बात कर ली कि कितना लाभ हो जाएगा, या क्या चुनौतियां आती हैं इस व्यापार में? सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं?
0: सबसे बड़ी चुनौती तो एक देखिए इसमें क्या नाम है, गांव में रखते हैं तो पेस्टिसाइड का दवा छिड़काव होता है, जैसे सरसों है, जैसे कोई फसल है, तो उसमें मधुमक्खियां काफी मारी जाती हैं हमारी।
1: तो इसके बचाव के लिए क्या करते होंगे आप?
0: बचाव के लिए तो इसमें सर कुछ नहीं कर पाते हैं हम। स्प्रे कहीं होता है, किसान मान लीजिए आज ही कर दिया तो पेटी कैसे, या तो गेट भी बंद नहीं कर सकते हैं आप, ना कहीं इतनी जल्दी ले जाएंगे और ना पता भी नहीं पड़ पाता है। मान लीजिए गांव में 100 खेत हैं तो आप 100 खेत में थोड़ी जा जाकर डेली देखेंगे,
1: ये तो है।
0: तो ये असंभव है। सरकारी को इस करे कि पेस्टिसाइड का उपयोग कम से कम किया जाए खेतों में, कि उससे जो कीट है ना, हमारी जो मधुमक्खियां हैं इनसे 30 से 35% पैदावार बढ़ता है परागण क्रिया के द्वारा, लेकिन आम किसान समझता नहीं है। वो तो ये समझता है हमारी सरसों का रस चूस जाएंगी
1: जी
0: तो इनसे पैदावार नहीं होगा, लेकिन भरतपुर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उन लोग को जानकारी है
1: जी
0: कि मधुमक्खी, वो लोग खुद बुलाते हैं कि मधुमक्खी रखने से हमारी पैदावार बढ़ जाती है।
1: तो आज मधुमक्खी दिवस के अवसर पर आप क्या कहेंगे हमारे श्रोताओं से, जो इस वक्त अगर जिनके मन में ये विचार आए कि जब आप सतीश जी कर रहे हैं तो?
0: हाँ जी बिल्कुल, काम करिए, काम बहुत अच्छा है, आय का अच्छा साधन है, आने वाले भविष्य में मधुमक्खी पालन एक अच्छा आय का स्रोत बन सकता है।
1: तो श्रोताओं, ये थे सतीश कुशवाहा जी, जो कि मधुमक्खियों का पालन करते हैं, बहुत बड़े स्तर पर करते हैं। तो आप भी शुरुआत कर सकते हैं और कम पैसों में इसकी शुरुआत है, और आपके ही आपका जो कच्चा माल है, आपका जो शहद है, या ये भी जो भी उत्पाद है वो बिक जाए, सस्ता और सुलभ ये आपका रोजगार है। तो आप चाहें तो, बहुत धन्यवाद सतीश जी।
0: नमस्कार सर।

तो श्रोता हूँ, कार्यक्रम यंग वैली बस यहीं तक कैसा लगा आपको? आप जरूर लिखिए अपने पत्रों के माध्यम से, पता है कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिन नंबर है हमारा 243001। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यंग वरेली। आइए सुनवाते हैं आपको लोकगीत।

0: मैं अविनाश सिंह, जिलाधिकारी बरेली, आप सुन रहे आकाशवाणी बरेली 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे देश में जो जनगणना हो रही है वह दो चरणों में होनी है। उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण, जिसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं, का कार्य चल रहा है तथा द्वितीय चरण माह फरवरी 2027 में होगी। यह पूर्तियां डिजिटल मोड में होगी। प्रथम चरण की जो अवधि है वो 22 मई 2026 से 20 जून 2026 तक तय की गई है तथा इसके पहले 7 मई 2026 से 21 मई 2026 तक स्वगणना हेतु तिथि निर्धारित है, जिसमें आमजन स्वगणना से संबंधित पोर्टल पर जाकर स्वयं ही अपनी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा देश में पहली बार स्वगणना की विधि लाई गई है। इसमें कोई भी व्यक्ति सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल पर जाकर बड़ी आसानी से भारत सरकार द्वारा तय किए गए प्रश्नों के संबंध में जानकारी प्रदान कर सकता है। इस प्रक्रिया के अंत में एक ऐसी आईडी जनरेट होगी जिसे दिनांक 22 मई 2026 से दिनांक 20 जून 2026 के मध्य प्रागणक को प्रदान कर जनगणना की प्रक्रिया चंद मिनटों में ही पूरी की जा सकती है। इस प्रक्रिया में प्रागणक द्वारा उन्हें आवंटित हर उस मकान भवन को सूचीबद्ध करना है जिसमें कोई व्यक्ति रहता है या भविष्य में रह सकता है। साथ ही कुल 33 अधिसूचित प्रश्नों की जानकारी भी उसे प्रत्येक परिवार से लेनी है। प्रथम चरण में केवल परिवार से संबंधित जानकारियां ली जाएंगी, जबकि द्वितीय चरण में प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग जानकारी एकत्र की जाएगी। मकान सूचीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा कुल 33 प्रश्न अधिसूचित किए गए हैं, जिनके उत्तर प्रागणक प्रत्येक घर से प्राप्त करेंगे। इस जनगणना के कई फायदे हैं। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही सरकार आम जन मानस को लाभान्वित करने के लिए योजनाओं का निर्माण करती है। इसके आंकड़े क्षेत्र विशेष के लिए भी योजनाएं तय करने में सहायक सिद्ध होते हैं। विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के सीमा निर्धारण, लोकसभा विधानसभा आदि क्षेत्रों के परिसीमन, शहरीकरण, साक्षरता इत्यादि कई पहलुओं में जनगणना के आंकड़े आधार का कार्य करते हैं। मेरा जनपद बरेली के सभी सम्मानित निवासियों से यह अपील अनुरोध है कि अपनी जनगणना स्वगणना के माध्यम से अधिक संख्या में करें तथा जब प्रागणक आपके घर जाएं तो उन्हें पूर्ण सहयोग एवं बिल्कुल सही सही जानकारी प्रदान करें। आपके द्वारा जनगणना में दिए गए चंद मिनटों का समय आगामी योजनाओं का निर्धारण करेगा, अतः अपना बहुमूल्य समय देकर सभी जानकारियां प्रागणक को दें, जिसके आधार पर सरकार आपके लिए आवश्यक एवं कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण कर सके। जय हिंद, जय भारत।
1: श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं लोकगीत आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, और आप सुनवाते हैं आपको एक और लोकगीत। गायक हैं अमीचंद शर्मा।

0: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104 FM पर। अब आपको जोड़ रहे हैं विविध भारती प्रसारण सेवा कार्यक्रमों से रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए शशा तिरुपति की आवाज में बी केयरफुल फिल्म का गाना, कुमार कहें बोल और सिद्धार्थ सुहास की है तर्ज़।

अभी आप सुन रहे थे बांके की क्रेजी बारात फिल्म का गाना। दोस्तों आज 20 मई है, आज है विश्व मधुमक्खी दिवस यानी वर्ल्ड बी डे। तो विश्व मधुमक्खी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य मधुमक्खियों और अन्य परागण करने वाले जीवों के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। मधुमक्खियां प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे फूलों से पराग एकत्र कर पौधों के परागण में सहायता करती हैं, जिससे फलों, सब्जियों और अनाजों का उत्पादन बढ़ता है। और लेकिन दोस्तों आज प्रदूषण, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, जलवायु परिवर्तन और जंगलों की कटाई के कारण मधुमक्खियों की संख्या लगातार घट रही है। ये चिंताजनक बात है ना? अतः हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है, तभी मधुमक्खियां सुरक्षित रहेंगी और हमारी खाद्य श्रृंखला भी सुरक्षित रहेगी। इस वर्ष की थीम है बी टुगेदर फॉर पीपल एंड द प्लैनेट, अ पार्टनरशिप दैट सस्टेन्स अस ऑल। तो चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए इंग्लिश वो इंग्लिश फिल्म का ये गाना आपको सुनवा रहे हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए कनिष्क सेठ और कविता सेठ की आवाजों में जुग जुग जियो फिल्म का गाना। ये एक पारंपरिक रचना है जिसे संगीतबद्ध किया है कनिष्क सेठ और कविता सेठ ने।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए शशि और डीजे खुशी की आवाजों में लक्ष्मी फिल्म का गाना। गगन आहूजा हैं गीतकार और संगीतकार हैं शशि और डीजे खुशी।

0: आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश राजा हसन देवनेगी, प्रवेश मलिक और मोनाली ठाकुर की आवाज़ों में। गीतकार हैं शबीर अहमद और तनिष्क बागची, संगीतकार हैं तनिष्क बागची। फिल्म का नाम जबड़िया जोड़ी।
1: वो तोहरी लचके जब कमरिया सारा जिला हिल।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

के तो वे नायक थे, परंतु मूलतः गिरीश सच्चे साहित्यकार और रंगकर्मी थे। गिरीश कर्नाड का जन्म 19 मई 1938 को महाराष्ट्र के पर्यटन स्थल माथेरान में हुआ था, मगर उनकी माँ कृष्णाबाई और पिता डॉक्टर रघुनाथ कर्नाड कन्नड़िगा थे, अर्थात कर्नाटक के रहने वाले थे। प्राथमिक शिक्षा मराठी में हुई। आगे जब वो परिवार कर्नाटक के सिरसी गांव में रहने लगा, तब गिरीश नाटक मंडलियों के संपर्क में आए। वहां के लोक नाट्य यक्षगान के तो वे जबरदस्त प्रशंसक थे। गिरीश जब 14 बरस के थे, तब उनका परिवार धारवाड़ में आ बसा, जहां उन्होंने बीए तक की पढ़ाई पूरी की और फिर वे इंग्लैंड चले गए। ऑक्सफोर्ड के मैग्डलिन शहर में रहकर उन्होंने फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स विषयों को लेकर एमए की डिग्री हासिल की।

कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनका कार्य उन्हें जीते जी अमर कर देता है। फिल्मों में गिरीश कर्नाड को हमने चरित्र अभिनेता के रूप में देखा, निशांत, स्वामी, मंथन, अपने पराये, मेरी जंग, सुर संगम

1963 में भारत लौटने के बाद गिरीश कर्नाड चेन्नई में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लिए काम करने लगे। अब भी नाटकों और लोक कलाओं के प्रति उनका आकर्षण कम नहीं हुआ था। चेन्नई में रहते हुए गिरीश कर्नाड द मद्रास प्लेयर्स नामक नाटक मंडली से जुड़ गए। विदेश जाने से पहले ही 1961 में गिरीश कर्नाड ने जब लिखना शुरू किया था, ये वो समय था जब कन्नड़ साहित्य पर यूरोपीय साहित्य की छाप देखने को मिलती थी। कमोबेश सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य की स्थिति यही थी। सी राजगोपालाचारी द्वारा रचित महाभारत का संस्करण गिरीश कर्नाड ने पढ़ा और उन्होंने अनुभव किया कि महाभारत के पात्र उनके मस्तिष्क में विचरण कर रहे हैं और उन पात्रों के संवाद कानों में गूंज रहे हैं। आगे एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि मैं तो मात्र लेखनी हूं, एक एक कर सभी पात्र मेरे कानों में बोलते गए और मैं लिखता गया। नाटक तैयार हुआ ययाति। पांडवों के पूर्वज ययाति पर केंद्रित यह नाटक बहुत सफल हुआ और अन्य भाषाओं में इसके अनुवाद भी हुए। 1964 में गिरीश कर्नाड ने अपना अगला नाटक लिखा तुगलक। 14वीं सदी के दिल्ली के इस सुल्तान की कहानी के माध्यम से तत्कालीन प्रशासन के महत्वाकांक्षी आदर्शवाद का बुलबुला बड़ी सहजता से दर्शाया गया था इस नाटक में। गिरीश कर्नाड को एक नजरिया मिल गया था, कहानी के स्रोत इतिहास या पुराणों से लेना और समकालीन विषयों तथा आधुनिक मानव की अस्तित्व के लिए चल रही लड़ाई के साथ उसे जोड़ देना। मात्र 26 वर्ष की आयु में गिरीश कर्नाड एक उदीयमान प्रतिभाशाली लेखक के रूप में स्थापित हो चुके थे। सन 1971, गिरीश कर्नाड के कला जीवन की दो महत्वपूर्ण घटनाएं, एक और 11वीं सदी के संस्कृत ग्रंथ कथा सरित सागर से ली गई एक कहानी पर आधारित नाटक हैवदन का निर्माण और दूसरी ओर SL भैरप्पा के उपन्यास पर बनी फिल्म वंश वृक्ष का निर्देशन। लोकनाट्य यक्षगान के सांचे में ढलकर नाटक हैवदन का सफल मंचन हुआ और खूब सराहना मिली। ये नाटक जर्मन भाषा में भी अनुवादित हुआ, उसका निर्देशन किया जानी मानी निर्देशिका विजया मेहता ने। यूं तो 1970 में ही गिरीश कर्नाड का पदार्पण हो चुका था फिल्म संस्कार के पटकथा लेखक के रूप में। इस फिल्म को राष्ट्रपति के स्वर्ण कमल से सम्मानित किया गया था। निर्देशक के रूप में गिरीश कर्नाड की पहली फिल्म थी वंश।

जिसके लिए राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वोत्कृष्ट निर्देशक का पुरस्कार उन्होंने साझा किया बी.वी. कारंथ के साथ। आगे कई कन्नड़ फिल्मों का उन्होंने निर्देशन किया। जहां तक हिंदी फिल्मों की बात है, 1977 में गिरीश कर्नाड ने जिस फिल्म का निर्देशन किया वो फिल्म थी गोधूली, और 1984 में शशि कपूर निर्मित फिल्म उत्सव।

जी हाँ, क्यों न बजे मृदंग मन में और क्यों न खनके मंजीरा अंग अंग में, जब लेखन और निर्देशन के साथ साथ गिरीश कर्नाड के नाम का डंका अभिनय के क्षेत्र में भी बजने लगा। तब्बलियु नीनदे मगने, ओंदनंदु कलदल्ली, चेलुबी, काडू, कोन्नुरु हेगदित्ती, ये हैं कुछ प्रमुख कन्नड़ फिल्मों के नाम जिनमें गिरीश कर्नाड ने अभिनय किया है। उनके अभिनय से सजी हिंदी फिल्मों की तो एक लंबी फहरिस्त है। जादू का शंख, निशांत, मंथन, स्वामी, जीवन मुक्त, संपर्क, रत्नदीप, बेकसूर, आशा, मनपसंद, अपने पराए, क्षमा, तेरी कसम, आनंद भैरवी, एक बार चले आओ, तराना, जमाना, मेरी जंग, सुरसंगम, सूत्रधार, आकर्षण, मिल गई मंजिल मुझे, चैतन्य, ब्रह्म, अंतर्नाद, गुना, प्राणदाता, आतंक, चाइना गेट, AK-47, पुकार, इकबाल, डोर, 8x10 तस्वीर, आशाएं, लाइफ गोज ऑन, एक था टाइगर, शिवाय, चौक एंड डस्टर और टाइगर जिंदा है। फिल्म सुर संगम, जो तेलुगु में शंकराभरणम के नाम से बनी थी, इसके नायक पंडित शिवशंकर शास्त्री की भूमिका में थे गिरीश कर्नाड। वो जानदार शानदार अभिनय कैसे भुलाया जा सकता है।

0: 1980 के दशक में कलाकारों के लिए एक और मार्ग प्रशस्त हुआ, दूरदर्शन का। नई नई श्रृंखलाएं बनने लगी। अंग्रेजी के मशहूर साहित्यकार आर के नारायण की कहानियों पर आधारित हिंदी सीरियल बना मालगुड़ी डेज, जिसका नायक था एक नन्हा सा नटखट बालक स्वामी। इस श्रृंखला में स्वामी के पिता की भूमिका की थी गिरीश कर्नाड ने।
1: पिताजी कॉफी, मुझे आपका कमरा चाहिए।
2: किस लिए?
1: मेरा एक दोस्त आ रहा है।
2: तो तुम्हारा अपना कमरा है, वही ले लो।
1: राजम को वहाँ कैसे ले जाऊं?
2: ये राजम है कौन, इतना बड़ा आदमी?
1: डीएसपी का बेटा है, बहुत बड़ा आदमी है वो।
2: अच्छा ठीक है, तुम ये कमरा ले सकते हो, लेकिन मेज पर रखी हुई चीजों को हिलाना नहीं।
1: बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा पिताजी, आप अच्छे पिताजी हैं।
0: दूरदर्शन के ही एक कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका टर्निंग पॉइंट के सूत्रधार के रूप में भी हमने गिरीश कर्नाड को देखा है।

1971 से लेकर 1990 तक गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित नागमंडल, अग्निमट्टू माले और तालेदंड, इन नाटकों को अनुवादित रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपार सफलता मिली। भाषा साहित्य की सेवा के लिए गिरीश कर्नाड को 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1974 में पद्मश्री पुरस्कार, 1992 में पद्मभूषण पुरस्कार से गौरवान्वित किया गया। 1992 में ही उन्हें कन्नड़ साहित्य परिषद का पुरस्कार प्रदान किया गया। 1994 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। 1998 में कालिदास सम्मान तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से गिरीश कर्नाड को सम्मानित किया गया। फिल्मों में उनके योगदान को अन्यान्य पुरस्कारों से प्रतिष्ठा मिली। 1971 में बेस्ट डायरेक्टर फिल्म वंश वृक्ष के लिए, 1977 में बेस्ट फीचर फिल्म इन कन्नड़ा तब्बली यू नीनदे मगने के लिए, फिल्म भूमिका की पटकथा के लिए 1978 में बेस्ट स्क्रीन प्ले का पुरस्कार उन्होंने साझा किया श्याम बेनेगल और सत्यदेव दुबे के साथ।

नंदू कलदल्ली। कन्नड़ भाषा में बनी इस फिल्म के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का उन्हें पुरस्कार मिला 1978 में। कन्नड़ भाषा के एक संत कवि कनक पुरंदर पर उन्होंने एक वृत्तचित्र का निर्माण किया था। इसके लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार उन्हें दिया गया 1989 में। साथ ही साथ कर्नाटक राज्य सरकार के कई सम्मान उन्हें मिले तथा कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी गिरीश कर्नाड को मिले साहित्य एवं फिल्मों की।

10 जून 2019 भारतीय रंगमंच और सिनेमा तथा कन्नड़ साहित्य जगत के आकाश से एक चमकता सितारा अस्त हुआ।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था लेखक निर्देशक एवं अभिनेता गिरीश कर्नाड पर।
1: आज के फनकार।

0: आप ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र। आकाशवाणी बरेली हरदम आपके साथ। और अब प्रस्तुत कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने। कार्यक्रम है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम। कार्यक्रम में मेहमान है प्रदीप जी।
1: नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही खास जिसने पीढ़ियों को जोड़ा है ये आकाशवाणी। ये शब्द सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि हम भारतीयों की भावना बन चुके हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मैं इस महान संस्थान और इसके पीछे के उन अनगिनत कलाकारों, पत्रकारों और तकनीशियनों को बधाई देता हूँ। रेडियो के उस छोटे से बक्से से निकलकर आज डिजिटल दुनिया तक आकाशवाणी ने सूचना, शिक्षा, मनोरंजन का जो सफर तय किया है वह अतुलनीय है। जय हिंद। 90 साल का बेमिसाल सफर, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य को सार्थक करते हुए आकाशवाणी ने अपने 9 दशक पूरे कर लिए हैं। खेती किसानी से लेकर खेल के मैदान तक और शास्त्रीय संगीत से लेकर मन की बात तक आकाशवाणी हर भारतीय के दिल की धड़कन है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आकाशवाणी को मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयां। कार्यक्रमों के नाम लेकर उन सभी आकाशवाणी से जुड़े कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहता हूं। सबसे पहला जो कार्यक्रम आता है हवा महल, बहुत ही लोकप्रिय रेडियो नाटक और प्रसारण है। बिना का गीतमाला फिल्मी गीतों का ऐतिहासिक काउंटडाउन है। मन की बात प्रधानमंत्री जी का संवाद है। किसान बाड़ी कृषि जगत जानकारियां हैं। युवावाणी युवाओं के लिए समर्पित मंच है। चौपाल ग्रामीण जीवन और लोक कलाएं हैं। सैनिकों के लिए सरहद पर तैनात जवानों का पसंदीदा प्रोग्राम है। प्यारे दोस्तों, आकाशवाणी का जो मेरे जीवन का लगाव है, मैं आज 49 ईयर्स ओल्ड हो चुका हूँ। मैं 49 साल का हो गया हूँ और 12 जुलाई को पूरे 50 वर्ष का हो जाऊंगा। तो जिनमें मुझे याद है कि मैं 4 दशक से तो खूब अच्छे ढंग से इस आकाशवाणी के साथ जुड़ा हूँ और आकाशवाणी से मेरा दिली लगाव है। इसके बिना मेरी सुबह शुरू नहीं होती है। एक सच बताना चाहता हूँ, मैं एक समाचार पत्र में रिपोर्टर भी हूँ, मैं एक निजी विद्यालय में प्रधानाचार्य हूँ, मैं इस व्यस्त जीवन शैली में समाचार वितरक के रूप में भी कार्य करता हूँ। लेकिन मैं जब सुबह अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे उठ जाता हूँ तो प्यारे दोस्तों, ये आकाशवाणी मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा हमसफर मुझे अपने साथ जोड़ लेता है और मैं इसकी धुनी तरंगों से अपने आप को एक ऐसे समूह के साथ जुड़ा

0: पाता हूँ और नई नई जानकारियों का मैं आनंद उठाकर अपना वर्क पूरा करता हूँ। मैं आवाज की दुनिया के उन दोस्तों को सलाम करता हूँ और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को 90वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाइयां शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय आकाशवाणी।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने। इस कार्यक्रम में मेहमान थे प्रदीप। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। लीजिए अब प्रस्तुत कार्यक्रम आपकी पसंद। श्रोताओं, बहुत सारे कमेंट्स हमें आपके मिल चुके हैं इस कार्यक्रम के लिए। कार्यक्रम में पहला गीत सुनाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है सड़क। बोल हैं समीर के, संगीत है नदीम श्रवण का और इसे गाया है अनुराधा पौडवाल मनहर उदास ने। पसंद है आप सभी की। आप हैं जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी और दानिश अहमद सिद्दीकी। आप हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया। ये हैं सब्जी मंडी कस्बा उजामा वार्ड नंबर 1 जिला बदायूं से धर्मवीर कश्यप, उषा कश्यप, ध्यानभा कश्यप, संजय कश्यप, अनमोल कश्यप, अंश, करिश्मा और मुस्कान कश्यप। आप हमें लिख रहे हैं शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरीसी, नाजरा, नईम, नदीम और असद बाबू। ये पसंद हम तक पहुँची है टाडा शुगर से इकरार इदरीसी, सोनी इदरीसी। और आप हमें भेज रहे हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर यूपी से अपनी पसंद, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह की पसंद हम तक पहुंच चुकी है। आप हैं नाजडू क्लब करेली से, साथ ही हमारे हैं निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार अहमद अंसारी, बेटी इनकी है नुजत फातिमा अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, इस्लामुद्दीन उर्फ बन्ने भाई, साथ में दानिश अंसारी और पप्पू भाई अंसारी। ये हैं गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा। आप हमें पसंद भेज रहे हैं मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान और शेख हबीबुर रहमान साहब। आप हैं कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रजित कुमार कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत और गुरशत सिंह राजपूत। आप हैं मोहन सिंह रावत, ममता रावत, वान्या, इंदिरा टॉकेज, तलिताल, नैनीताल से हमें लिख रहे हैं पसंद अपनी, धन्यवाद आपका। और ये हैं गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, रजत बेबी गर्मा बगड़िया। आप हैं अनामदर्शी विश्वमित्र जिला भिंड एमपी से और ये हैं हरीश त्यागी, सुप्रिया त्यागी, माही त्यागी, पीहू त्यागी, गांव है बेड़की सदावाड रुड़की जिला हरिद्वार उत्तराखंड से। आप हैं ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेतान और कुसुम नेतान। कृष्णा पार्क दिल्ली से हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना। ये पसंद हमें मिली है आयरनगर कोहका भिकाई से भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरा जंगेल, अनिल भाई, अजीत, आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल का। धमधमा ग्राम सूर्यकला से हैं अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल का। ये पसंद हमें मिल चुकी है। और आप हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से हमारे साथी भाई अंकुश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा और साथ में हैं तिलक राज अरोड़ा साहब। और ये हैं साथी हमारे, हमें लिख रहे हैं आवास विकास कासगंज यूपी से पवन गौड़, सुयेश गौड़, आशीष गौड़, तरमे गौड़ और साथ में है अपूर्वा। और ये पसंद है सहारनपुर से राधा नामदेव जी, अपना नामदेव, अभिषेक नामदेव और हर्षित शर्मा की। ये हैं ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोवर्धनधरा, घनश्याम, भार्गव बाबू गौरी और हसन सिक्का। ये हमें लिख रहे हैं साथी अपनी पसंद पदना टॉकीज नेपाल रैम्पी से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह और साथ में हैं राजेंद्र जी शाह। ये पसंद भेजी है हमें गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी और पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी का। आप हैं मोहम्मद यासीन अनजान और साथ में हैं ये हमारे साथी जो हमें इस वक्त लिख रहे हैं।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
6: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
5: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
6: तो फिर सही नंबर?
5: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
6: आपने तो बचा लिया दीदी।
5: काम से नहीं।
3: RBI कहता है
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। आकाशवाणी बरेली हरदम आपके साथ, और अब सुनवाने जा रहे हैं आपको फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं। गायक कलाकार हैं शबीर कुमार, लता मंगेशकर। पसंद है आप सभी की। आप हैं ग्राम कोलासार तालुका से, नांदुरा से, महाराष्ट्र से हैं। यहाँ प्रमोद बगाड़े, वर्षा बगाड़े, प्रतीक बगाड़े, संकेत बगाड़े, और ये हैं साथी हमारे। ग्राम चारभाटा, जिला राजनांद गांव से हैं, छत्तीसगढ़ से नरेंद्र मेश्राम, मधु मेश्राम, सत्यार्थ और ईवी। आप हैं जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बाय हिमाक्ष। और ये हैं बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, सक्रांति चौहान, रितेश कुमार, ऐश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान। आप हैं मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदिनी कुमारी। आप हैं ग्राम कमथरी फरुखाबाद उत्तर प्रदेश, लिख रहे हैं जुबैर खां, मोजुम, जुनैद, अल्तमस, अमन और पूरा गांव। आप हैं पता पलारी से हैं, लिख रहे हैं इनका पता जो है पलारी छत्तीसगढ़ से है। नितेश कुमार देवांगन, पराग तनुजा देवांगन, ईशान देवांगन और साथ में है दुर्गा प्रसाद देवांगन। हमें पसंद मिल रही है ये इनका पहांदा पलारी से है लखन लाल देवांगन, शावती बाई देवांगन, ईशांत देवांगन, तनुजा देवांगन और नीतीश कुमार। ये हैं मेरठ कैंट से साथी हमारे दिग्दर्शन और कविता गौड़। और आप हैं उत्तम कुमार बघेल, रुकमणी बघेल, साहिल भारतीय बघेल, लिख रहे हैं लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। ये हैं जिला दिल्ली कार्तिक से।

हैं कार्तिक जोशी, नित्या जोशी और रेणु जोशी। ये हैं सती हमारे सतीश शर्मा, ये हमें एक संदेश भेज रहे हैं, लिख रहे हैं कि गर्मी के दिनों में पक्षियों का विशेष ध्यान रखें, अपने भरोसे पर हर घर में पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें। आपने अच्छा लिखा, धन्यवाद। और ये हैं साथी हमें लिख रहे हैं मजरा दौलतपुर आंवला जिला बरेली से, साथी हैं भगवान सिंह यादव, अर्पित यादव और ब्रजपाल लोधी। ये हैं जिला अंबागढ़ चौकी से हैं रिजवान खान, आयशा सबिया और अनस साथ में रेहान। आप हैं रजनीश मिश्रा जी लिख रहे हैं, इनका पता है वीर सिंहपुर तिलहर शाहजहांपुर। और ये साथी हमें लिख रहे हैं नगर इंदौर एयरपोर्ट रोड वंद्रा नगर इंदौर से हैं नारायण भाऊ खड़ से, ललिता आशारानी खड़ से, संजना परी खड़ से, गणेश कार्तिक खड़ से, देविका चौधरी, स्वामी प्रज्ञा चौधरी और पूरा परिवार इनका हमें लिख रहा है। और साथी हमारे ये हैं सेक्टर 18 से हैं मोहाली चंडीगढ़ से लिख रहे हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक भाई, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमन दीप। कलकत्ता से हैं शिवचंद बजाज, साहिल बजाज और साथ में हैं बिट्टा बजाज। और ये पसंद हमें मिली है रामगढ़ से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, और ये हैं साथी हमारे अकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय कुमार बेंडे, पवन जरिए, के संजीव डावेराव। और आप हमें लिख रहे हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गोराया, जलंधर से हम लिख रहे हैं ये अपनी पसंद। और ये हैं साथी हमारे नई दिल्ली से हैं रविंद्र सिंह छावड़ा साहब, और ये पसंद हमें मिली है नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला जी ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, दीपक, खुशबू, ज्योति ठाकुर का ये पत्र, ये पसंद मिल रही है ग्राम चरौंदा बार नवापारा अभियान जिला बलौदा बाजार से लिख रहे हैं छत्तीसगढ़ से। और ये साथी हमारे लिख रहे हैं हमें ग्राम धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा और कुमारी कृष्टि पटवा। ये हैं सिद्धार्थनगर दरिया पूर्व बावली से निदान यल्ले, नवदीप यल्ले, विश्वदीप यल्ले और अवंतिका यल्ले। और ये हैं एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेगा मस्कीन। और चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रजता खुराना और साथ में है केशु रिधान और पूरा खुराना परिवार। आप हैं कस्बा कलोडिया नवाबगंज बरेली से हैं साथी हमारे राजेंद्र कुमार गंगवार, प्रेमपाल, धर्मवीर, सचिन, अनुज भाई, अनमोल गंगवार, कमलेश तुलाराम, अंकुश मौर्य, राजू भाई, चंद्रपाल, उल्फत शर्मा और बबलू गंगवार, साथ में हैं बेदपाल और संजीव गंगवार। और आप हैं पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, केशु रिधान खुराना, तुलसी मस्कीन और साथ में हरिता खुराना। और ये पत्र नहीं है बल्कि ये हमें पसंद भेजिए, कमेंट भेजा अपना साथी ने हमारे साथ, इनका पता है शनि बाजार कस्बा उगति से आदेश गुप्ता, सचिन गुप्ता, देव गुप्ता, प्रियल गुप्ता, कायरव गुप्ता और साथ में हैं प्रभाकर गुप्ता जी। ये पसंद मिली है हमें शेवानी स्कूल में, माफ कीजिए, ये गंजडवारा से हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और साथ में हैं आलिया अंसारी। आप हैं कटरा चांद खां, मौर्य मंदिर, वार्ड नंबर 11, पुराना साहब बरेली से हैं भाई अनुखलाल मौर्य हैं, सुंदरदेवी मौर्य हैं, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य। तो सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
6: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया।

0: मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
0: तो फिर सही नंबर
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
0: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: आपने ट्यून किया है 104 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र। आकाशवाणी बरेली हरदम आपके साथ। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। समय हुआ है 10:54 और 52 सेकंड। कार्यक्रम है आपकी पसंद। अब सुनवाने जा रहे हैं फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन। इसे गाया है SP बालासुब्रमण्यम ने और गीत है देव कोहली का, संगीत है राम लक्ष्मण का। पसंद है आप सभी की। आप हैं पंचकुला सेक्टर 9 से हैं अंशु चुग, अश्वनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवाना, लव दीवाना और राधे ढींगरा। आप हैं मजनू टीला से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सदन एमपी से हैं उमंग मलिक, आकाश मलिक और माही मलिक। ये पसंद भेजिए हमें। साथी हमारे हैं सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदुमती पार्वती, हिमांशु गोदारा। लिख रहे हैं फाजिलका पंजाब से, गांव का हीरावाली। और ये साथी हैं जो हमें पसंद भेज रहे हैं अपनी, ये हैं गंगवार क्लब से साथी हमारे हैं बरेली से, भाई बचल गंगवार जी हैं, गुड्डी देवी हैं, प्रशांत देवी हैं, गणेश ज्ञानेंद्र देव और इला देवी गंगवार, बर्फा देवी, सुनील यादव, संजय अग्रवाल, अश्विनी कुमार मौर्य और मास्टर विनोद दीक्षित हैं। साथ में है राज, महावीर कश्यप, रमेश चंद्र सैनी और साथ में है रोबिन भाई कॉस्मेटिक वाले। ये हैं जसपाल सिंह, माफ कीजिए, ये पसंद भेजी हमें सालपुरा जिला बारा राजस्थान से, सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव। और आप हैं अमरगढ़ साधु शहर से कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर मान और गुरनूर मान, हरविंदर मान, कुलविंदर कौर मान। और आप लिख रहे हैं ग्राम बपोस्ट नगरिया विक्रम तहसील फतेहपुर से, जिला बरेली से राज सिंह, अनारकली यश कुमारी, रुपेंद्र कुमार सिंह, पूजा प्रजापति, वंदना प्रजापति, दुष्यंत प्रजापति, प्रियंका प्रजापति और साथ में गार्गी और भोलू। ये हैं ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से सुमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद यादव, सरोज, अमन, सोनी, अंगिता, विनीता, अनिता, सुनीता और सूर्यश्री यादव। और आप हैं लाल कुर्ती रोड की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। और ये पसंद मिली है हमें फाजिलका पंजाब खेड़ा से हैं, ये हैं खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, वाणी खेड़ा, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह और पूरा समस्त खेड़ा परिवार हमें ये पसंद भेज रहा है। आप हैं गांव खोकरावली श्री गंगानगर से हैं विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा और रोशनी विरासा बारासा और साथ में है शगुन बारासा। ये हैं वगैरह दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव। आप लिख रहे हैं उत्तर प्रदेश से हमें जिला बदायूं से है कस्बा उगैती से सद्दाम हसन सिद्दीकी, सतारा सिद्दीकी, साद सिद्दीकी, समर सिद्दीकी और सादिक भाई सिद्दीकी। ये पत्र हमें, माफ कीजिए, ये पसंद भेजिए हमें भोपाल के राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कमल छीप, कपिल छीपा और पूजा परिहार ने। आप हैं बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महत्रे, अंजलि कारवा और बाला साहेब कारवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और पीवी कुल थे। ये पसंद भेज रहे हैं हमें जमनिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक और स्वाति जायसवाल। आप हैं मुगिसापुर से हैं मोहम्मद साकिर मंसूरी, कमरों निशा, सबिस्ता, पलक, लोबना और यश मंसूरी। ये पसंद हमें मिली है जवाहरनगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी की। ये हैं साथी हमारे मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शर्मा अब्बासी, नबी हसन अब्बासी, राशिद वारसी, सोहेल अब्बासी और साथ में अमन और यशफ। आप हमें लिख रहे हैं हिंगोली महाराष्ट्र से

शाहजी बोडखे, श्रीमती नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जमदाडे, ये हैं। साथ ही हमें लिख रहे हैं अपनी पसंद, गांव है भटनी, जिला मंदसौर एमपी से, ईश्वरलाल मेहर, सुमित्रा मेहर, रियांश मेहर, सृष्टि मेहर और पूरा मेहर परिवार। और आप हैं साथी हमारे जो हमें लिख रहे हैं शनि मार्केट शिव हारा बिजनौर से, आसिफ चौधरी, अराफत अदीब और कादिर चौधरी। और आप हैं भटिंडा रोड मड़ी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानी नारंग, ये आप हमें लिख रहे हैं। साथी हमारे हैं ये ग्राम डहरपुर खुर्द पोस्ट सादुल्लागंज ब्लॉक समरेर है, तहसील दादागंज और सात जिला है, बताइयों। लिखने वाले हमारे साथी हैं मुजम्मल हुसैन, आशिक हुसैन, सादिक हुसैन, नूर हुसैन, मुन्ना इनायत, इशरत बी, अदनान और हसनैन। आप लिख रहे हैं पटेल नगर मलोट से हैं रमेश कुमार जजोरिया, गीतानंद जजोरिया, गगनदीप और आरजू, साथ में है गुड्डू भाई। ये हैं गजेंद्र साहब, माफ कीजिए, ये जीवन विश्वकर्मा जी हमें लिख रहे हैं। जीवन विश्वकर्मा जी का कमेंट हमने शामिल कर लिया है, आज कमेंट आपका शामिल कर रहे हैं। और आप हैं जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी, ये हैं साथी हमारे अनाकली बाजार गांव बाजार झगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपक मल्होत्रा, गायवा मल्होत्रा, सिंह पाठक, साथ में हैं जयपाल यादव और विनोदपुरी, ये लिख रहे हैं हमें साथी हमारे। ये हैं विराटनगर नेपाल से अरुण चंद्र शर्मा, रेणुका शर्मा और साथ में हैं उनके सभी साथी। और ये हैं फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से सरोज चौरसिया, सुबोध सलोनी, संजू लल्ला चौरसिया और साथ में बाबू शिवानी चौरसिया। ये बल्केश्वर कॉलोनी आगरा से हैं श्रीमती सरिता चौरसिया, साथ में हैं पीहू और दिया कानपुरी। और ये हमें लिख रहे हैं बुरखड़ा पित्राम्बल जिला उज्जैन एमपी से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूड़त, चेहतरा नाहटा। और आप हैं वर्डिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती और सभी लोगों। सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कार्यक्रम में आप सुनने जा रहे हैं, आपको फिल्म का नाम है आराधना, इसे गाया है किशोर कुमार ने और बोल है आनंद बख्शी के, संगीत है SG बर्मन साहब का, पसंद है हमारे इन साथी की। ये है ताजमहल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफी पवार, बणजीर कौसर मोहम्मद साकिब पवार, अलमास पानो पवार, मोइन छोटे पवार, शंकरलाल गंगराडे, बनीता गंगराडे और मोहम्मद हसन पवार। आप है भोपाल राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार, और ये हमें लिख रहे हैं साथी हमारे गुल वालो तहसील अलोट जलात्रमा लंबी से हैं, विक्रम मालवीय, रचना मालवीय, कमलाबाई, वन देवी, आकाश माहेश्वरी, विनायक, पूरा परिवार है। और आप हैं साथी हमारे सागर लखनादौन MP से, लाडाजी चौबे, सक्षण चौबे और रेमी चौबे, आप हमें लिख रहे हैं। मोहम्मद हमजुर रहमान, हबीब मलिक, खलील मलिक, अली रहमान, मोहल्ला ईदगाह, जनूबी जिला बक्कार, पंजाब से। और आप हैं श्रीगंगानगर से सतीश शर्मा, रोशन शर्मा और भावना गरिमा, हिमांशी शर्मा, आप लिख रहे हैं हमें। मनकारा मंदिर बीडी कॉलोनी से लिखने वाले साथी हमारे हैं बेनी सिंह सागर, पंडित लाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर, राजेश कुमार वर्मा, रवि भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, खनक, शकुन, सारांश, अयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रताप सिंह, आप लिख रहे हैं ठकिया किश्नपुर से, पोस्ट करीलगर जिला पीलीभीत से, AK राजपूत, अनिल कुमार राजपूत, भगवान दास राजपूत, मदन लाल राजपूत, संतोषी खुशबू, नवनीश वर्मा, रवि वर्मा, प्रिया, छोटी सी गुड़िया और साथ में हैं चंचल कुमारी, समस्त मित्रगण। और आप हैं TK मंडल और ये हैं साथी हमारे महाराष्ट्र से लिख रहे हैं हमें बाला प्रसाद कारवां, गीतांजलि कारवां, आकाश कारवां और आकांक्षा कारवां। ये हैं जिला खरगोन MP से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी, रमेश चंद वर्मा, शेख मुसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से हैं लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु और मुकेश जगताप। और इसी गीत के लिए हम तक ये पसंद पहुंची है हमारे इन साथी की। आप हैं साथी हमारे फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा लिख रहे हैं कस्बा गुन्नौर UP से। आप हैं साथी हमारे, ये साथी हमारे हमें लिख रहे हैं मॉडल टाउन से हैं करनाल से सुधीर नूतन, संदीप कुकलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और इशप्रीत शर्मा और साथ में हैं माया कुमारी जी। और ये हैं रिंग रोड नर्मदा नगर से हैं सूरज वर्मा, नीरज वर्मा, धीरज वर्मा, वर्मा ऋषभ, कनक और भावना वर्मा। ग्राम खैगांव तहसील से, तहसील माहेश्वर से प्रेम लाल वर्मा और वेदिका वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी, ममता और पूरा परिवार इनका, साथ में बाई वर्मा। और ये हैं साथी हमें लिख रहे हैं आप हैं

सरलाही सुकनाहा नेपाल से अरुण कुमार शर्मा आपके नाम शामिल हो चुके हैं पहले ही, और ये हैं साथी हमारे सुरेंद्र खुराना न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से। आप हैं रतन माला मौर्य, मुकेश मौर्य, प्रिंस मौर्य, प्रियांशी मौर्य, पुष्पा मौर्य, गौरव मौर्य, चंद्रप्रकाश मौर्य लिख रहे हैं गली सुकवालपुर बरेली मौर्य मंदिर से, और ये हमें लिख रहे हैं साथी हमारे इतकल रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी वोट। ये हैं गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से रेखा रघुवंशी, पूजा रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी, आराध्या खट से, वैष्णवी खट से, ललिता रानी खट से फिल्म, और आप हैं मोतला महाराष्ट्र से विजय सुलकर, रतनमाला सुलकर और कुमारी। आप हैं नई मसीकरली से भाई इंजार, भाई अंसारी, बेडी हिब्जा नूरी, नित्थू चाचा मिस्त्री, अंसारी चाचा, अख्तर अंसारी, नानी ठेकेदार और साथ में है पूरा परिवार इनका, ये संदीप स्वामी। और आप हैं ग्राम करेली भिंडी मोहल्ला बरेली से इशाक अहमद अंसारी, अफसार अहमद अंसारी, इसार अहमद अंसारी, दिलदार भाई हैं मोहम्मद अर्श, मोहम्मद आरिश, और ये हैं साथी हमारे राजपैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीपुरा मऊ से हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। आप हैं आकांक्षा कारवा और ये लिख रहे हैं हमें बीड महाराष्ट्र से, इनका भी नाम शामिल हो चुका है। आप हैं उगती से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, बजाज गुप्ता, पंकज, प्रिंस कुमार, प्रशांत कुमार, कार्तिक गुप्ता, निर्भय गुप्ता और सभी साथी। और ये हमें लिख रहे हैं वाराणसी से काशीनाथ धाम से आयन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनीता सिंह, विनायक सिंह, मोहिनी, मोहित सिंह और कोको रानी। आप हमें लिख रहे हैं ग्राम पंचायत बडेना पाटन जिला दुर्ग से बलकृष्ण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और बंटी बबली वर्मा। ये है पदमपुर जिला गंगानगर से हैं राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और साथ में भूमिका अरोड़ा, और ये पसंद हमें तक पहुंची है। विजेंद्र विश्वकर्मा, तारादेवी विश्वकर्मा, सोलानी विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। आप हैं गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन आंद्रे और मरोतराव पांचाल। ये हैं रानीगंज बगल से रवि और इंदर। और आप हैं साथी हमारे खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीलू लक्ष्मी मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, पापा नानाचंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुगू भाविका सिक्का। आप हैं साथी हमारे हमें लिख रहे हैं पसंद अपनी नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से लिख रहे हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। ये हैं नयबाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा, अलका मिड्डा और पूरा इनका परिवार। और आप हैं बड़ी गहरी चौराहा वाराणसी से साथी हमारे अरुण कुमार मालवीय, समस्त मालवीय परिवार। और ये हैं साथी हमारे हमें लिख रहे हैं स्मित रेडियो भाटापारा से हैं सोहन जोशी, रविंद्र चावला, शिव कुमार सर, लोकेश जोशी, वैदेही जोशी, वैवेही, हंसिका जोशी और कुमारी अंकिता जोशी। अनूपपुर एमपी से हैं श्रीमती जयवंती केवट जी, खंडवा एमपी से और साथ में हैं अब्दुल गफ्फार डावर जी। और आप हैं साथी हमारे हमें लिख रहे हैं ग्राम मुगिसापुर से कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमाकांत कठेरिया, कमलेश्वर कठेरिया, पुत्र बधुन की है निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया और प्रतिमा कठेरिया, साथ में हैं बाबू वेद बाबू कठेरिया। और ये हैं रघुनाथपुरा जिला कृष्णगर श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। आप हमें लिख रहे हैं हितेंद्र दास असम से हमें लिख रहे हैं। आप हैं जोन टिकेस्टो, रोजी टिकेस्टो, पल टिकेस्टो और विलिश टिकेस्टो। और ये हमें लिख रहे हैं गांव टोरावाल जिला नवाशा पंजाब से गगनदीप थांदी, तीर्थ थांदी, प्रियंका थांदी, प्रशांत, प्रियम और साथ में बेबी वामिका और वाणी थांदी। और ये पसंद हमें मिली है भाटापारा से हीरा वर्मा, हीरा मणि वर्मा और पासमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोकलाल वर्मा। आप हैं आमिर अली बनाई रोड से हैं लाल फाटक से चंदोची से। और आप लिख रहे हैं बाबूजी मेरठ कंट से। आप हैं गुजरात पाटन से हमें लिख रहे हैं धीरज वी रवारी। और ये साथी हमारे हमें लिख रहे हैं ग्राम उल्टा जागीर से ईदगाह बरेली से सताज खान, दानिश खान और वारिश खान। आप हैं कट्टा चंद का वाराणसी बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि मौर्य और मानवी मौर्य। आप हैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, श्रीमती

श्रीदेवी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मिका, प्रियंका और सृष्टि बन्नी, अरुष सॉरी दिनेश जी हैं, और आप हैं गांव भोजपुर तगा सहारनपुर से, मोहम्मद इंतज़ार, मोहम्मद जावेद, राणा प्रधान, रात अली और वकील अहमद। आप हैं अजीत कसाना, मायादेवी कसाना, आदित्य, लदाबली जिला मुरादाबाद से, और ये हैं रतन माला, मुकेश मौर्य, प्रिंस मौर्य, प्रियांशी मौर्य, और आप हैं साथी हमारे एमपी छिंदवाड़ा से, बेडी राणा जी लाम से, मीना लाम से, तेजस हर्षित लाम से, और सभी साथी इनके। और ये हैं एमएलबी रोड कॉलेज से, सुरेश खुराना, किरण खुराना, लव्या, आरब खुराना और एम के पप्पी। और आप हैं राजकोट गुजरात से, रश्मि झरना और भरतपुर से हैं, सब माफ कीजिए, भरत कुमार हैं यहीं से। और ये पसंद है हयात करौनी अररिया बिहार से, फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नबीस नफीसा परवीन। और आप हैं ग्राम कली पटी मस्जिद से, लाल मोहम्मद अंसारी, लल मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मराज अंसारी, अगार भाई अंसारी, आशिक भाई और अल्ताफ हुसैन। और ये हैं बरकत रामदानी और जमाली बलूच पाकिस्तान से ही लिख रहे हैं। और आप हैं महाराष्ट्र रत्नागिरी से, जया संजय भोजने और अमन भोजने। और ये हम तक पहुंचा है कमेंट है गिरगांव महाराष्ट्र से, दिनकर सालवे, अजय राजपुरे, एकनाथ पवार, भाऊ साहेब मोटे। और ये हैं चिनौरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से, बनवाई कुशवाहा, मंजुलता हैं, राम और श्याम, रवि, आर्यन, रंजीत, रामानंद कुशवाहा और सभी साथी इनके। ये हैं कलगांव, पुरुल टोला, भागलपुर बिहार से, तक मंडल और दिवाकर, दिवाकर भाई हैं, सभी साथी हमें लिख रहे हैं। और आप हैं साथी हमारे शाहू नगर यवतमाल से, राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल चेतन मनवर और रोशनी मनवर, साथ में हैं बेबी प्रियांशी। और ये हैं गाडगे नगर यवतमाल बनारस से, लक्ष्मण लोखंडे, कल्पना लोखंडे, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वल्लिप और रक्षिता लोखंडे। आप हमें लिख रहे हैं पनवाड़ी महाराष्ट्र से, रूपेश संगई, महेश संगई, प्रज्ञा संगई, प्रतिज्ञा संगई और पूरा संगई परिवार। और ये हैं उत्तर में दिल्ली से, बोधराज खोरबाल, कमल रानी, गीतिका खोरबाल और भानु प्रकाश। आप हैं साथी हमारे नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से, मास्टर आलिम पटेल, मोजाज पटेल और नदीम पटेल। ये हैं सौंगा मगाडोल छत्तीसगढ़ से, फणेश कुमार चंदन, सावित्री देव देवचंदन, मोहित कुमार, देवकी रानी चंदन, गजेंद्र कुमार और हेंश कुमार। आप हैं साथी हमारे अशोक सिंह, अंकिता जी हैं, कृष्ण सिंह हैं और प्यारी गुड़िया वेदा सिंह हैं इनकी। आप हमें लिख रहे हैं एमपी से। और ये हैं ग्राम पचोलिया जिला बरेली से, माफी जी, ग्राम पचोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से हैं, सबन कुमार चलोसिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक और पूरा परिवार इनका। और ये हैं अभिजीत गौहड़कर, श्रद्धा गौहड़कर, प्रिंस एकांश गौहड़कर, अर्जुन गौहड़कर और सभी साथी लिख रहे हैं मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। आप हैं साथी हमारे दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह गुर्जर, अंशराज सिंह गुर्जर और पूरा गुर्जर परिवार लिख रहे हैं जालौन उत्तर प्रदेश से। ये हैं दत्तार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। और आप हमें लिख रहे हैं ये साथी हमारे हैं डावकी रोड अकोला से, सुशीला देवी मधुरकर, सदानंद कुमार गौरव और आरब और अर्पिता। और आप हैं संतोष भाकरे, सुनैना भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। और ये हैं जी के परमार, ज्योत्सना परमार, दीपल हर्ष लिख रहे हैं हमें गांधीनगर गुजरात से। और ये हैं जयपाल, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, दिव्यांशी, राधना और सोनिका यादव और साथ में चंद्रेश गोहकर और सुनील पाठक जी हमें लिख रहे हैं बुंदेलखंड यूपी से। और आप हैं एम फारूक शेख, शेख परवीन, शाहिमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख, वही मुस्कान लिख रहे हैं हमें साथी हमारे एटा उत्तर प्रदेश से। और ये हैं खुली परवेज, इमराना बेग और दानिश शेख लिख रहे हैं। तो सुनवाते हैं आपको।

श्रोताओं, हमारे जिन साथियों के कमेंट शामिल नहीं हो पाए हैं, हम दोपहर 1 बजे से कमेंट आपके शामिल कर लेंगे, आप परेशान ना होइए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम सब रंग।

0: श्रोताओं, इस वक्त आप ढूंढ के हैं आकाशवाणी का बरेली केंद्र और कार्यक्रम सुन रहे हैं सब रंग। लेकिन सुनते हैं सबसे पहले ये संदेश।
1: नमस्कार साथियों,
2: मैं अविनाश सिंह, जिलाधिकारी बरेली। आप सुन रहे आकाशवाणी बरेली 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।
0: इसलिए बताते हैं आपको, ये भजन स्वर है अनुज लोटा का।

ईश्वर की कृपा से यह शरीर प्राप्त हुआ है। अब इस शरीर को गुण रूपी रत्नों से सजाना हमारा कर्तव्य है। ज्ञान, ध्यान, तपस्या, प्रेम, सेवा, ये वो रत्न हैं जिन्हें एक बार प्राप्त कर लिया जाए तो सदैव साथ रहते हैं। दुनिया के अन्य रत्न शरीर छूटते ही हमें छोड़ देते हैं, तो क्यों ना उन रत्नों को प्राप्त करें जो जन्म जन्मांतर हमारे साथ रहेंगे।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में गुरुवार दिनांक 21 मई 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है माइग्रेन एवं सिर दर्द की समस्या और उसका आधुनिक इलाज, शंकाएं एवं समाधान। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे बुधवार यानी कि आज 20 मई को शाम 4 बजे से। इस संबंध में कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 0581251700 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के न्यूरोसर्जन डॉक्टर विकास गुप्ता मौजूद रहेंगे। विषय रहेगा माइग्रेन एवं सिरदर्द की समस्या और उसका आधुनिक इलाज, शंकाएं एवं समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय हम आपको बता दें, रिकॉर्डिंग करेंगे हम आज यानी कि बुधवार 20 मई को शाम 4 बजे से। टेलीफोन नंबर हमारा 0581251700। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली से कार्यक्रम सबरंग। श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन करके रेडियो हेल्पलाइन में गुरुवार दिनांक 21 मई 2026 को साय 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है माइग्रेन एवं सिरदर्द की समस्या और उसका आधुनिक इलाज, शंकाएं एवं समाधान। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे बुधवार यानी कि 20 मई 2026 को आज शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि कोई प्रश्न हो तो टेलीफोन नंबर 0581 ये है बरेली का सिटी कोड और टेलीफोन नंबर है 2571200 पर फोन करें और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के न्यूरोसर्जन डॉक्टर विकास गुप्ता मौजूद रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लीजिए। विषय रहेगा माइग्रेन एवं सरदर्द की समस्या और उसका आधुनिक इलाज, शंकाएं एवं समाधान। और मेहमान होंगे आज इस कार्यक्रम में न्यूरोसर्जन डॉक्टर विकास गुप्ता। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय हम आपको याद दिलवा दें। रिकॉर्डिंग करेंगे हम आज यानी कि बुधवार दिनांक 20 मई 2026 को शाम 4 बजे से। टेलीफोन नंबर हमारा 0581251720।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सबरंग कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। पूर्व भारत के 11:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: पतंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओ, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
2: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी।
0: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अकरम आसमा फकीर।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओ, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
2: जी,
0: तो विमलेश जी अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी जी जी श्रोताओ, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
0: जी जरूर श्रोताओ, आपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
2: जी,
0: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
2: श्रोताओ, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
0: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओ कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षा वन से मिलता है।
2: जी,
0: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में।
2: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलंबिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
0: और श्रोताओ, जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
2: दूसरा है गोल्डन मंकी, बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
0: और आपने श्रोताओं एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
2: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है जिसे बुलेट एंट

0: कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
1: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं, अमेज़न का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
0: जी
1: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेज़न वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी,
0: जी एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेज़न वर्षा वन ज्यादातर अमेज़न नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओं, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेज़न नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेज़न नदी उफान से भरी रहती है।
0: जी।
1: इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
0: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
1: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेज़न नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की जानकारी अमेज़न वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है, अमेज़न नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अमेज़न नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं।
1: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम द क्रो।
0: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जांच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जांच लेना चाहिए।
2: CIET NCERT presents the series Singing the Poem. Under this series, let us listen to the program The Crow.
3: Hello children.
4: Hello ma'am.
5: Hello ma'am.
3: Hello, hello. How are you all?
4: We are fine ma'am.
5: I am fine ma'am.
6: How are you ma'am?
3: I am good. Thank you so much Vanya. All right. So children, today I am going to share something with you. Are you ready?
4: Yes, ma'am.
5: Yes, ma'am.
3: All right. You all know that pets are special members of our family, isn't it?
4: Yes, ma'am.
7: Pets are so lovely.
3: Right, Soham.
8: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
3: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
8: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
3: Wow, that's good. And what about you, Navya?
9: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
3: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
10: Ma'am, when I come home, my cat jumps and sits on my lap.
3: Oh, that's so exciting, isn't it?
4: Yes, ma'am.
3: All right. So, we spoke about our animals. What about birds? Do you like birds?
4: Yes, ma'am.
3: Can you name some birds?
5: Sparrow.
3: Okay, Vanya. Good. That's a beautiful small bird. Okay, Soham, you tell.
7: Peacock. It dances so well. It looks so pretty.
3: Yes, peacock is a colorful bird.
7: Ma'am, parrot.
3: Oh, yes. Parrot is a mimic bird. But, children, you have missed a bird. Do you know which bird is missing?
11: Any guesses?
3: Okay, I'll give you a clue. It calls... Absolutely right. Children, I remember a lovely story of a crow. Would you like to listen?
4: Yes, ma'am.
7: It will be fun.
3: So, I'll narrate the poem. Repeat after me. There once was a crow.
4: There once

0: और एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी
2: दीदी
1: राजू स्कूल से आ गए तुम?
2: हाँ दीदी।
1: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
2: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे।

0: मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
1: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे। कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए। क्या ये सच है राजू?
0: दीदी वो तो मैंने।
1: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
0: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है, मगर
1: मगर क्या? अच्छा अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
0: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
1: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
0: भोजन और पानी?
1: हाँ राजू। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक पौधा लगाओ।
0: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा। कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
1: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
0: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा तो राजू बेटा तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: हाँ अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी अभी खोदता हूँ, नई खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: लो माली काका, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ माली काका, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
2: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
2: हाँ
0: देखभाल? वो कैसे?
2: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
2: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
2: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा
0: जी?
1: अच्छा अब घर चलें?
0: जी धन्यवाद माली काका।
2: अरे बेटा
1: चलो बेटा।
2: जी दे।
0: चलिए दादाजी।

0: सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यहीं सोया था।
1: अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
0: पता नहीं।

0: लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
2: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
3: हाँ, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
2: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं? दीदी, कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
3: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
2: हाँ दीदी,
3: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
2: दीदी, ये तो बहुत ही गलत काम है। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: मैं अविनाश सिंह जिलाधिकारी बरेली आप सुन रहे आकाशवाणी बरेली 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।
3: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर।
4: आकाशवाणी के दीवानों के लिए एक हम छोटा सा कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, इसका नाम है आकाशवाणी के दीवाने। जी हाँ, आप अगर आकाशवाणी के दीवाने हैं, आप सब में दीवानगी है आकाशवाणी के प्रति, तो आप मोबाइल उठाइए, अपना वीडियो बनाइए और वीडियो में बताइए कि आपने पहली बार आकाशवाणी को कब सुना और अपनी एक यात्रा के बारे में बताइए कि कब कब सुनते रहे, किन हालातों में सुने, रेडियो का कौन सा सेट आपने इस्तेमाल किया और भी बहुत कुछ आप बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ड्यूरेशन आपके वीडियो की 2 मिनट होनी चाहिए। और जो लोग वीडियो नहीं बना पाए वो ऑडियो भी भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा तो माध्यम ही है रेडियो। तो आपकी जो वीडियोज़ हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ेंगे, जो भी चुनिंदा अच्छे अच्छे वीडियो होंगे। तो और कहाँ भेजना है ये भी नोट कर लीजिए, akashvanibareli@gmail.com। आकाशवाणी में AKSHVANI बरेली BARELLY akashvanibareli@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आपको भेज देना है, मात्र 2 मिनट का वीडियो शूट करना है। सेल्फी ले सकते हैं या फिर किसी से रिकॉर्ड करवा लीजिए सामने से। तो जल्दी से जल्दी आप अपने वीडियो भेजिए, हमें आपके वीडियोस का इंतजार है, क्योंकि आकाशवाणी की दीवानगी चारों तरफ फैल रही है और उसके दीवाने लगातार बढ़ते

0: आ रहे हैं। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रयोग कार्यक्रम। अब हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम FM रेनबो के।
2: सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे के दौरान वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डोमेस्टिक का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशकों से अधिक पुराना है। प्रदेश सरकार द्वारा खरीफ अभियान 2026 के अंतर्गत अधिक फसल उत्पादन की रणनीति तैयार करने के लिए राज्य स्तरीय और मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठियों के आयोजन का कार्यक्रम जारी किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत मुख्य रूप से 21 मई को लखनऊ में लखनऊ मंडल की राज्य स्तरीय खरीफ गोष्ठी और आज अयोध्या में अयोध्या और देवीपाटन मंडल की खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के अधिकांश जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। बीते 24 घंटों में 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा देशभर का सबसे गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 21 मई तक प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। गर्मी को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की गई है। वहीं कानपुर में जिलाधिकारी ने समस्त शैक्षिक बोर्ड द्वारा संचालित प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक के समस्त विद्यालयों में 31 मई तक की अवधि के लिए ग्रीष्म अवकाश घोषित कर दिया है। शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत जागरूकता और आवेदन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया, जहां उन्हें योजना के तहत मिलने वाले ब्याज मुक्त ऋण की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। मैनपुरी में आज आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रोडवेज बस आगे चल रहे ट्रक को ओवरटेक करने के प्रयास में पीछे से टकरा गई। इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस और यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाकर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। सभी घायलों को इलाज के लिए सैफई PGI भेजा गया है। इसी के साथ समाचारों का ये बुलेटिन ही समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: घर से लेकर ऑफिस तक, बच्चों से लेकर बॉस तक, फैमिली से लेकर फैंटेसी तक, फैशन से लेकर फन तक, अगर आपको चाहिए इन चीजों की लेटेस्ट अपडेट, सो डोंट बी लेट।
4: सुनिए नारी शक्ति को समर्पित कार्यक्रम शत्रुपा, सोमवार से गुरुवार दिन में 12 से 1, 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।
5: बारह बजकर 4 मिनट का समय। हाय हेलो नमस्कार, आपको कहने के लिए हाजिर हो चुकी है शिल्पी। जैसा कि रत्ना ने बताया, बाहर पर बहुत धूप है। मतलब रत्ना ने मुझसे पूछा कि बाहर का आलम बताइए, तो मैंने कहा बाहर बहुत धूप है और ऐसा लग रहा था कि खूब सारे पेड़ रास्ते में हो, हम चले, हमें छांव मिले और हमें धूप का एहसास तक ना हो। और ये काम हम आप कर सकते हैं, यानी पेड़ों को, यानी पौधों को लगाने में जरा भी कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि ये पौधे जब बड़े होकर पेड़ बनते

हैं तो हमें छांव देते हैं और हमें बहुत सुखद एहसास होता है ऐसी तपती गर्मी में। वैसे तपती गर्मी में एहसास ठंडक अगर आपको करना है तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप, यानी कुछ ऐसे ड्रिंक्स होते हैं जिन्हें पीकर आप बिल्कुल ताजगी का एहसास कर सकते हैं, और वो ड्रिंक्स आज लेकर आई मैं शतरूपा में। वेल दोस्तों, वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आज ऐसे ड्रिंक्स हैं जिनमें किसी भी तरह आपको गैस जलाने की ज़रूरत नहीं, यानी हीट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं वो चीज़ें बताऊंगी जिसमें बस स्टे कूल एंड हाइड्रेटेड विदाउट यूजिंग हीट, यानी पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, सिर्फ पेड़ लगाने पर नहीं, लेकिन थोड़ा कोशिश कीजिए कि हम जो हमारे पास ईंधन है उनका भी यूज़ कम से कम करें, जिससे कि हमें, हमारे पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे। अक्सर ऐसा होता है ना, हम किचन में बहुत सारा कचरा निकलता है और हम उसे एक ही साथ रख देते हैं, और ऐसे संदेश हमें अक्सर मिलते रहते हैं कि इन सब चीज़ों को डिवाइड करके रखें, लेकिन उस पर हम ध्यान नहीं देते। तो थोड़ा इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना, यानी हमें जो भी काम करना है वो अपने भविष्य को लेकर ध्यान में रखें, यानी पर्यावरण की सुरक्षा अगर होगी तो हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, आज हम कौन कौन से ड्रिंक्स लाए हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि भाई पेपर और पेन निकाल लीजिए या पेपर पेंसिल निकाल लीजिए और बस एक गाना एंजॉय कीजिए। जब तक आप ढूंढ लीजिए पेपर पेन और गाना सुनिए, और उसके बाद हम जो जो ड्रिंक्स लेके आ रहे हैं वो फटाफट आप नोट कीजिएगा और इस तपती गर्मी में ठंडक का एहसास लीजिएगा।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: शत्रुपा में हमारी आज की जो थीम है, स्टे कूल एंड हाइड्रेटेड विदाउट यूजिंग हीट। और आज जो हम कुछ ड्रिंक्स आपको बताने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले है आप सबका फेवरेट और बहुत ठंडा देने वाला मसाला छाछ। मसाला छाछ बनाने के लिए जो आपको सामग्री चाहिए वो नोट कर लीजिए, जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है वो आपको नोट करना है। पेपर पेन आपने ले लिया होगा तो बस फटाफट नोट कीजिए। सबसे पहले आपको लेना है एक कप दही, फिर आपको चाहिए एक कप ठंडा पानी और आधा टेबल स्पून भुना जीरा पाउडर या टीस्पून, आधा टीस्पून भुना जीरा पाउडर और आधा टीस्पून काला नमक ले लीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा इसमें स्वाद बढ़ जाएगा अगर आप इसमें चुटके भर चाट मसाला ऐड कर देंगे। और हाँ, ये जब गर्मियों में एक बहुत अच्छी चीज़ आती है और वो है पुदीना, जो आपके शरीर को बहुत ठंडक देता है, तो कुछ पुदीने की पत्तियां भी ले लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, इस एक कप दही को, एक कप ठंडे पानी को, भुने जीरे पाउडर को, काले नमक को, चुटकी भर चाट मसाले को और पुदीने के पत्तियों को बढ़िया से ब्लेंडर में मिक्स कर लेना और तब तक मिक्स करना है जब तक वो स्मूथ ना हो जाए। बस जैसे ही वो स्मूथ हो बस ग्लास में निकालिए, ठंडा ठंडा पी लीजिए। और आपको बता दें कि बिना गैस के बढ़िया से तैयार हो गया आपका ये प्यारा सा ड्रिंक, जो आपको खूब खूब मज़े देने वाला है गर्मी के दिनों में। और ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, यानी कि फटाफट से तैयार हो जाएगा आपका ये ड्रिंक। तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए और मज़े लीजिए इस खूबसूरत से, इस प्यारे से ड्रिंक के।

तो भैया जो रेसिपीज आप नोट कर लीजिएगा, इस पेपर को कहीं खोने मत दीजिएगा, क्योंकि बहुत संभाल के रखिएगा ऐसी मजेदार रेसिपीज जिन्हें आप तैयार करते हैं और इन गर्मियों में बढ़िया आपको ठंडक मिलती है। सत्तू आप जानते हैं, सत्तू का गर्मी में बहुत सेवन किया जाता है और ये हमारे शरीर को बहुत ठंडक पहुंचाता है। तो सत्तू पेय जो होता है उसके लिए जो आपको चाहिए वो है 2 टेबल स्पून चने का सत्तू। ध्यान से देखिएगा, 2 टेबल स्पून चने का सत्तू, ठंडा पानी ले लीजिए, आधा टीस्पून नींबू का रस ले लीजिए और आधा टीस्पून काला नमक और जीरा पाउडर ले लीजिए। और इसके बाद आपको क्या करना है, सत्तू और पानी को आपको एक गिलास में अच्छे से मिला लेना है ताकि उसमें लम्स ना हो, यानी गांठें ना पड़ने पाए।

और इसके बाद बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं उनको भी उसमें अच्छे से मिला लीजिए और फटाफट पी लीजिए। और ये जो काला नमक और जीरा पाउडर थोड़ा थोड़ा हम जो डालते हैं वो एक तो टेस्ट बढ़ाता है और बाकी वो आपके पेट के लिए काफ़ी हेल्दी रहता है, तो इन चीज़ों को ऐड करना मत भूलिएगा। और बढ़िया से सत्तू जो होता है वो इजीली डाइजेस्ट होता है, और सबसे बड़ी बात है कि गर्मी में आपके शरीर को ठंडक पहुंचाता है। तो सिर्फ एयर कंडीशन में या फिर कूलर में बैठने से कोई फायदा नहीं है, इन सब चीज़ों को अपनाइए जो आपके शरीर को अंदर से ठंडा रखें।

एक चीज जो इजीली हम सबके घर पे मौजूद होती है वो होता है गुड़। जी हाँ, गुड़ हर घर में होता है और गुड़ का शरबत आहा पी लीजिए तो क्या मजे आते हैं। तो चलिए गुड़ का शरबत बनाते हैं और बताते हैं आपको इसके लिए क्या चाहिए। आपको आपको चाहिए 1 टेबल स्पून पाउडर्ड, यानी आपको पाउडर किया हुआ गुड़ चाहिए, और उसमें 1 गिलास ठंडा पानी ले लीजिए।

नींबू का जूस ले लीजिए और एक चुटकी काला नमक ले लीजिए। अच्छा, आपको एक चीज बता दूं, ये जो गुड़ है वो ठंडे पानी में भी धीरे धीरे आप करते चलाते रहिए तो घुल जाता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत हीट की जरूरत है तो बहुत हल्का सा गुनगुना पानी कर लीजिए और बस उसमें गुड़ डालिए, वो डिजोल्व हो जाएगा हल्का सा चलाने पर। और उसके बाद उसमें आप एक गिलास चिल्ड वाटर डालिए, अच्छे से उसे चलाइए, और उसके बाद इसमें लेमन जूस और नमक मिलाकर इसे बढ़िया पी जाइए। यकीन जानिए, बिना शक्कर का यानी गुड़ का इतना अच्छा शरबत लगता है पीने में और आपकी गर्मी को भी शांत करता है।

0: 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा,
1: विरासत और स्वस्थ मनोरंजन की अनूठी पहचान। आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई। आकाशवाणी की मधुर ध्वनि यूं ही जन जन तक ज्ञान, संस्कृति और प्रेरणा पहुंचाती रहे तथा सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का अपना ध्येय पूरा करती रहे, इसी आशा के साथ मैं SR बैनर्जी, पूर्व उप महानिदेशक आकाशवाणी, आकाशवाणी के परिवार तथा असंख्य श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: वेल, खरबूजा और तरबूज ऐसी चीजें हैं जो गर्मी में हम यूज करते हैं और हमें खा के बहुत मजा आता है। गर्मियों में अक्सर क्या होता है कि जब हम खरबूजा यूज करते हैं तो उसके जो बीज होते हैं वो हम उन्हें बेकार समझकर हटा के रख देते हैं, और कई लोग बीज रखते हैं और उसको छील के बकायदा पूरा स्टोर करते हैं और यूं भी खाने में उसे बहुत मजा आता है। लेकिन हम आपको बताते हैं, ये जो खरबूजे के बीज होते हैं और उसके जो पल्प है उसको बेकार समझकर अगर आप फेंक देते हैं तो अब आप बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, क्योंकि ये जो है वो शरीर को ठंडक देने वाला, न्यूट्रिशन देने वाला बेहतरीन शरबत इससे आप बना सकते हैं। तो बस आपका पेन पेपर तैयार है, मैं देख रही हूँ अपनी मन की आंखों से, और बस इन्ग्रीडियंट्स आप नोट कीजिए। आपको क्या करना है, खरबूजे के बीज चाहिए पल्प के साथ, चीनी या शहद चाहिए स्वाद के अनुसार, और ठंडा पानी या फिर ठंडा दूध। जी हाँ, इसमें ऑप्शनल है, चाहे आप ठंडा पानी लीजिए या ठंडा दूध लीजिए। हाँ, जब ठंडा दूध लेंगे तो उसमें आप नींबू का रस ऐड नहीं करेंगे और पुदीने की पत्तियां नहीं ऐड करेंगे, काला नमक नहीं ऐड करेंगे, लेकिन जब ठंडा पानी आप लेंगे तो इसमें नींबू का रस रहेगा। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपका मन हो तो लीजिए, ना मन हो तो ना लीजिए। पुदीने की पत्तियां और काला नमक आप स्वाद अनुसार ले लीजिएगा। अब आपको क्या करना है ये आप सुनिए कि इन बीजों से कैसे मजेदार शरबत बनाएं। ये जो आपके पके हुए खरबूजे को आप निकाल कर इसके बीज के सारे बीज और पल्प आपको निकाल लेना है, और इन बीजों को और पल्प को एक मिक्सी में आपको डाल लेना है, और इसमें आपको क्या करना है कि 1-2 चम्मच चीनी डाल लीजिए, पुदीने की पत्तियां डाल लीजिए और 1/2 कप पानी डालकर पीस लीजिए। अब क्या करना है, क्योंकि इसमें बीजों का छिलके हैं तो इसे आपको छानना है अच्छे से। छान कर आप बिल्कुल साफ सुथरा इसमें जूस निकाल लेंगे इसका, और उसके बाद इस छने हुए रस में ठंडा पानी मिलाइए। जब ठंडा पानी मिलाइए तो नींबू का रस, पुदीने की पत्तियां और काला नमक डालिए, और दूध मिलाइए तो दूध के साथ इसका ठंडा दूध मिलाइएगा और ठंडा ठंडा इसका आनंद लीजिएगा। तो ये जो खरबूजे के बीज अक्सर आप फेंक देते हैं, इनसे भी बहुत बेहतरीन शरबत तैयार होता है और उसे खरबूजे का शरबत कहते हैं। तो भाई, इतने ढेर सारे शरबत मैंने आज आपको बता दिए, क्या क्या चीज़ें आपको लेनी है जिसके आपका शरीर बढ़िया ठंडा रहे इस गर्मी के मौसम में, क्योंकि भाई देखिए

ना अब तो बाहर सर ऊपर किया ही नहीं जाता, सर झुका के ही चला जाता, क्योंकि इतनी तेज धूप है कि बिल्कुल मन नहीं करता। तो कोशिश कीजिए कुछ ऐसी चीजें खाइए पीजिए जिससे आपका शरीर अंदर से रहे ठंडा। No longer a nice to have.

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

देखो देखो लिसनर हम ये इतने शरबत लाए। जी बहुत ढेर सारे शरबतों की फेहरिस्त हो चुकी है और आप सोचेंगे खरबूजे की बात कर ली, तरबूज कहाँ गायब हो गया मैडम। जी चलिए भाई खरबूजे के बाद तरबूज की बात कर लेते हैं। तरबूज बहुत प्यारा लगता है देखने में जब आप अंदर से उसे काटते हैं, रेड कलर का पार्ट, वाओ कितना जूसी होता है और कितना अच्छा लगता है। उसके आगे जो चीनी होती है वो तो लगता बेकार है, ये कितने फ्रूट्स की जो चीनी होती है वो कितनी अच्छी लगती है, मीठापन। अब बात करते हैं कि आपको फ्रेश वाटरमेलन कूलर इसको कहा गया है, लेकिन आप कोई भी नाम दे सकते हैं और इसको इसलिए ये कहा गया है कि आपको कूल करता है इसलिए। और अब आपको क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो आपको जो सामग्री चाहिए वो है 1 कप क्यूब्ड तरबूज, ठीक है, क्यूब किए हुए तरबूज चाहिए, 2-3 पुदीने की पत्तियां चाहिए, नींबू का रस को ले लीजिए, चुटकी भर काला नमक, यानी काफी सारी चीजें सेम है, बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी, बस तरबूज को ब्लेंड कर लीजिए, पुदीने की पत्तियां इसमें डाल लीजिए और इसे छानने के बाद लेमन जूस और काला नमक मिलाकर, इसके बाद बर्फ मिलाकर इसे सर्व कीजिए और ठंडे ठंडे तरबूज के जूस का आनंद लीजिए। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि भाई एक चीज और होती है गर्मियों में जो मिलती है बेल, बेल का शरबत जो होता है, तो बेल बहुत ही फायदे की चीज होती है, आपके पेट के लिए बहुत मुफीद चीज है बेल। और आपको क्या करना है कि बेल लेना है और बेल में आपको पल्प निकाल के 2.5 ग्लास पानी में उसे थोड़ी देर सॉफ्ट करने के लिए रख देना है, करीब 15 मिनट तक भीगा रहने दीजिए और इसको उसी तरह निकालना है जैसे आप इमली के जब इसको भिगोते हैं इमली को, उसके बाद उसके बीज निकाल के इमली का आप वो निकालते हैं, उसी तरह सेम प्रोसेस होता है कि इसको हाथों से मसल के इसका जो आपको पानी निकालना है यानी जो जूस निकालना है वो इसी तरह निकालना है, और इसके बाद इसको आपको छानना पड़ेगा ताकि किसी भी तरह की चीज़ ऐसी ना हो जो आपको जब आप पिए तो आपको दिक्कत करे। तो बढ़िया से इसे छान लीजिए, इसमें काला नमक, हल्की सी चीनी अगर आपका मन करे, वैसे ना भी मिलाइए तो काफ़ी है, काला नमक मिला लीजिए और इसे ठंडा करके बढ़िया से सर्व कीजिए, इसमें आप बर्फ के कुछ टुकड़े मिला दीजिए, फिर देखिए बढ़िया से शरबत तैयार हो गया और ये शरबत जो है वो भी आपको ताजगी देगा। साथ ही बेल का शरबत आप गर्मियों में यूं भी पीजिए क्योंकि ठंडा तो करता है, पेट की सारी बीमारियों की जो कहते हैं दूर भगाने की शक्ति होती है वो बेल में होती है। और अब मेरी नजर गई इस घड़ी पर और ये मुझे बता रही है 12:54:43 हो गए, तो शिल्पी को अभी के लिए आपसे टाटा बाय बाय कहनी होगी क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में एक बार फिर मैं रहूंगी आपके साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड 200.7 FM रेनबो।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। दोपहर का 1 बज चुका है और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अनुरोध गीत।

इस तरीके में हमने आपके बहुत सारे खत संजो कर रखे हैं और उन्हें हम अब इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाने जा रहे हैं आपको। फिल्म का नाम है हम साथ साथ हैं। इसे गाया है उदित नारायण, सोनू निगम, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों ने। अनुरोध है आप सभी का। आप हैं जक्शन बरेली से गरीब भाई, नासिर भाई, बिक्की भारद्वाज, वीरेश सिंह चौहान और सोनू मिश्र, साथ में हैं शरीफ भाई। बागपत से हैं नमन ढींगिया, संजय ढींगिया, आसिफ अली खान और ये पत्र है। साथी हमारे हैं कनेरा मोहल्ला पटेला से बत्ता परिवार है। मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पालक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता का ये पत्र हमें मिला है। आप हैं सतीश अनेजा, विमला अनेजा, चंडीगढ़ से और ये पत्र हमें मिला है प्रण तालाब डुमराव से, वलीउल्लाह अंसारी, उर्मा अंसारी और की प्यारी बिटिया सोनम। सारीपुर बक्सर से हैं शरीफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और मोहम्मद सामी अंसारी। इंदिरा बिहार कॉलोनी से डब्बू अंसारी और बेबी अंसारी। छटिया पोखरा डुमराव से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। ये हैं साथी इस कार्यक्रम में का नाम शामिल करने जा रहे हैं। आप हैं ये हमें पत्र भेज रहे हैं छावनी अशरफ खां, होली चौक से। साथी हमारे हैं भाई फजरुद्दीन, यशी देवी, राम प्रसाद शर्मा जी हैं, मनोरमा, अजय, रीता, विनोद, वंश, कनिष्का और घर के सभी लोग ये पत्र भेज रहे हैं। बक्सर बिहार से हैं सरफुद्दीन अंसारी, डुमराव से बलीउल्लाह अंसारी, सारीपुर से बक्सर से आर राज, एस डी अंसारी, इंदिरा बिहार कॉलोनी दिल्ली से डब्ल्यू अंसारी, जे रोड बक्सर से नरेंद्र कुमार यादव, पोखरा डुमराव से सुनील कुमार वर्मा, मुस्तफाबाद दिल्ली से लालू लाल दीवाना। ये हैं मोहल्ला तलैया और लजागी, बरेली से भाई भाईउद्दीन अबरार, अफजाल, मल्लू, शवीना, रामू प्रजापति, धर्मपुर, बरेली, फहीम खां सिद्दीकी से हैं या सिद्दीकी हैं, फहीम खां सिद्दीकी साहब हैं और अली जमजम, फातिमा, अज्जू और साहबिया। तो सुनवाते हैं आपको ये गीत।

इस वक्त आप सुन रहे हैं करके अमर रोध की गीत, आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। ये पत्र मिला है ग्राम करेली पढ़ने मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, अल्ताफ हुसैन अंसारी, आशिक हुसैन अंसारी और मुन्ना अंसारी का। यह है मनकारा मंदिर बीडी कॉलोनी करना बरेली से पनीलाल सागर, बेनी सिंह मासूम, धर्मवीर मनमौजी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश उर्फ पंटी, रूबी भारती, रचना भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, ममता चौधरी, श्रीमती ओमवती भारती, बेटी खनक, नकुल, नैन्सी और सारांश का ये पत्र भी हम तक पहुंच चुका है। आप हैं सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, दीपा थापा, मेहर कॉलोनी लोनी से परवीन होम, सरफुद्दीन होम, कुमारी वल्ली डोम, अभी जी डोम है ये, माफ़ कीजिए, कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से हैं बसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार और उल्ला आसमा बेलदार। और ये हैं दौलत बाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन अंसारी, नेमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी का। आप हैं रेंगनी से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, भटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झैवेंद्र कुमार वर्मा। आप हैं कटाचनखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 प्रणा शरीर बरली से हैं अनुकलाल मौर्य, कैलाश मौर्य, बेदराम मौर्य, कपिल मौर्य, सुनील मौर्य और प्रकाश मौर्य। ये पत्र हम तक पहुंचा है मोहल्ला कड़िया बरेली से मोहम्मद कैसर शमसी, अजीम शमसी, सलीम शमसी, नवेद शमसी, रजिया शमसी हैं और साथ में हैं इनके सभी साथी। सुनवाने जा रहे हैं आपको ये गीत, फिल्म का नाम है बेटा, बोल हैं समीर के, संगीत है आनंद मिलन का, उसे गाया है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने।

श्रोता हूँ, इस वक्त आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। करके मैं अब सुनवाने जा रहे हैं आपको, फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी और गीत है समीर का, संगीत है नदीम श्रवण का, इसे गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। आप हैं साथी हमारे बजेगंज जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से, प्रेम कुमार वाष्णेय, प्रभात कमल, सुशीला कमल, अमरीश, सलोनी, सचिन, नीरू कमल, देविका, कार्तिक, वेदरिचा और ऐश्वर्य कमल वाष्णे का। यह है गांधी चौक रोड पंजाब से मीका विरक, वरमिंदर विरक, जयदेव विरक और हरदेव मीका। आप हैं वरवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल, साथ में हैं पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा लिख रहे हैं प्रमलागंज अलोट जिला रतनमाल एमपी से। ये अनुरोध पत्र हम तक पहुंचा है विमल ठाकुर, सरिता ठाकुर, शुभ, लव, गुनगुन, वक्सना दादागंज से हम ये लिख रहे हैं। आप हैं यादव मोहल्ला, सनावत एमपी से, दिलीप मालाकर, योगेश मालाकर, सुनीता मालाकर और मुस्कान मालाकर, इंदिरा बिहार, रायगढ़ से बसी अकरम नूरजहां, डब्लू अकरम नूरजहां, वली अकरम नूरजहां और उल्लाह अकरम नूरजहां, राजानंद गांव से हैं याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा और इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, हुसराम तिवारी, आदिबा तिवारी। आप हैं गुरु नानक नगर मलोट पंजाब से राजीव सेतिया, रजनीश आरती और तनीष सेतिया। तो सुनवाते हैं आपको ये गीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत। अब सुनवाने जा रहे हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है छोटे सरकार। इसे गाए है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने। बोल है रानी मलिक के। अनुरोध है आप सभी का। आप हैं कट्टाचांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से। अनुखलाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू अरोही और स्वाति मौर्य। आप हैं पीतम लाला के मकान के पास ककला बताइयों से। डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज खान, विकास सक्सेना, करमबीर, प्रवीण, अनिल, सागर बख्शी, अमजद अंसारी। ये हैं खुटिया उत्तर प्रदेश से प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा और साथ में हैं भाई तिलक राज अरोड़ा। ये पत्र है पीर बहुड़ा बरेली से आज़ाद खान, दिलशाद खान, मुस्तकीम और तबस्सुम। कोटवा नारायणपुर बापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती ऊषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुरकला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुलानी, जगमोहन प्रजापति और सनी शर्मा। आप हैं दीदा रेडियो क्लब बिल्लावगेट कसगंज से एम असलम सैफी, जहबान शाह बेगम, अकरम सैफी और आवाद खान। परिमल कसगंज से हैं आवाद खान, नबील खान, आरफा खान और इल्मा खान। तो सुनवाते हैं आपको ये गीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। कार्यक्रम में अब सुनवाने जा रहे हैं आपको फिल्म का नाम है लेकिन, इसे गाया है लता मंगेशकर ने, बोल गुलजार के हैं और अनुरोध है आप सभी का। आप हैं सनाबद एमपी से हैं, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमाश खत्री और रमेश कौर साथ में हैं, मोहम्मद शादाब खत्री। ये हैं दादीगेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। आप हैं सरगुजा मैनपाट से सोनिया, माफ कीजिए, ये हैं साथी हमारे जसपुर उत्तराखंड से हैं नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, रियासत भाई, रानी तबस्सुम, रुखसार और मोहम्मद आशिफ। आप हैं मोहल्ला हलवाईयान शेखकोट बिजनौर से हैं मोहम्मद वकाय फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साथ में हैं शारदा रानी और हिना कौशल। आप हैं महादेव घाट अमृतसर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी, सूरज, ज्योति, रियांश और सभी परिवार के इनके लोग। और ये ख़त हमें मिला है पीर बोड़ा बरेली से आयाद खान, दिलशाद खान, मुस्तकीम और तबस्सुम, मोहल्ला तलैया और जागीर से हैं फजदीन भाई, अफरार भाई, अफजाल भाई, राम प्रसाद शर्मा। ये हैं करनाल से सुधीर नूतन, संदीप उगलानी, सुमित सा माफ कीजिए जगमोह प्रजापति हैं और सभी परिवार के लोग हैं। सुनीता जैन हैं, सुनीता शर्मा हैं। और आप हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गौड़कर, राही श्रीमती रीता गौड़कर, प्रिंस एकांश गौड़कर, बलदापुर मुंबई से हैं सिद्धांत गौड़कर,

प्रणीता गवाड़कर, अर्जुन गवाड़कर, और ये हैं बहादुरपुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाड़कर, समित गवाड़कर, ध्वनि गवाड़कर और सभी लोग। आप हैं पूर्वा कलशावनी से विश्वनाथ भारद्वाज, शिवद भारद्वाज, गंगाधर भारद्वाज, बिक्की भारद्वाज, वर्षा, कविता, ईशु, भावना, आदित्य, देवकी, शिप्रा, नीलम, मुन्नी देवी भारद्वाज और साथ में हैं श्री राम राठौर। और ये पत्र है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरा ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, असमा, सालिया, शोएब खान, पोत्रा से हैं मुश्तबा खान, राउब भाई, शाहीन भाई, गांधीबाग अकेला से हैं रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। ये पत्र है बरेली यूपी से अकरम अंसारी, जमील अहमद अंसारी, बरकत अली अंसारी, सुल्तान अहमद अंसारी, मोहम्मद हसन अंसारी और साथ में हैं हमजा अंसारी। तो सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम के आखिर में सुनवाने जा रहे हैं आपको, फिल्म का नाम है दूध का कर्ज, बोल है आनंद बख्शी, के संगीत है अनु मलिक का और सिखाया है अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज ने। अनुरोध आप सभी का है, आप हैं गैक्टा काशीपुर धर्मपुर बरेली से फहीम खां सिद्दीकी अली साबिया अफसर शर्मा दुर्नगर से हैं ठाकुरमंडल से कठेरिया फजदीन भाई अब्यार भाई अफसल भाई दौलतबाग मुरादाबाद से आप जाफर हुसैन नईमा बेगम कासिम अली अदीम अली और जुनैद अब्बासी ये हैं चर डोगरिया पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से हैं दुर्गा साहू अजय कुमार साहू जय किशन साहू श्रीमती कुमारी साहू श्रीमती इंद्राणी साहू माया साहू और इसी गीत के लिए ये हम तक अनुरोध पत्र पहुंचा है पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत किशु तासु अर्णव आनंद और सत्यम भगत का ये हम तक पत्र हमें मिला है और ये हमारे साथी हैं जो हमें भेज रहे हैं। साथी हमारे हमें हैं रायपुर से लिख रहे हैं विनोद बंडलकर वीणा बंडलकर विविधा बंडलकर का ये मिला है और आप हैं साथी हमारे पारसमणि रेडियो संघ से हैं गांधी चौक बाड़मेर से राजस्थान से बबलेश्वर पवार डेंड पवार मनीष पवार रामदेवरा से हैं दिनेश चौहान डांगी से बाबूराम जयपाल और खलीफों की पापड़ी से हैं खुदा शत्र वक्ष खलीफा और ये हैं साथी हमारे इनका पता है जिला कन्नौज उत्तर प्रदेश से गांव है नवलपुरवा रमन राज लिख रहे हैं और ये हैं गणेश प्रसाद हुजदार और हीरा देवी हुजदार काठमांडू से। ये हैं साथी हमारे जो इस गीत के लिए हमें अपनी अनुरोध अपना भेज रहे हैं। जी हाँ आप हैं मुकेश साहब ने रामचंद्र गुप्ता जी हैं और शोभा गुप्ता हैं। ये हैं धनतरी से रामचंद्र माखीजा और काफिर भाई। आप हैं जुवनी जिला दुर्ग से हैं सुरीत रमेश साहू तारा विद्या साहू जितेंद्र कुमार साहू कुशन कुमार साहू सुनीता देवी साहू रसीबन लाल त्रिलोक कुमार मास्टर रणजीत सिंह साहू और आप हैं साथी हमारे जिला बरेली ग्राम कोठा मकान से रिजवान अंसारी अफरोज अंसारी फारूक अंसारी और सभी साथी इनके और ये हमारे साथी हैं ग्राम पंचायत बागरगंज तहसील फरीदपुर के पास से

मास्टर सुनील बाबू हैं, शिवम सिंह हैं, अभयमीत, भगवान देई, स्वाति सिंह, तान्या हैं, बागरगंज से ही हैं मास्टर अख्तर अली, शाहरुख नूर खान, मोबीन साहिबा और आसिफ मित्रगण के हमें ये भेज रहे हैं। सरगांव बाजार से हैं नसीम मोहम्मद, हबीब मोहम्मद और इरफान मोहम्मद आप हैं। साथ ही हमारे पढ़िया से आशीष कुमार, अर्पिता, अक्षत और सुधा, ये हैं ग्राम रसूलपुर बहानपुर से नन्हे भैया, छोटे लाल, गणेश मिस्त्री और तमाम पर इनके परिवार के लोग। तो सुनवाते हैं आपको ये गीत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम अनुरोध गीत। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है और अब इस कार्यक्रम और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं यानी कि संजय रहेगा आपके साथ। प्रोग्राम इस समय आप लोगों के बीच में भेज रहे हैं रसरंग। रसरंग की पहली प्रस्तुति आइए सुनते हैं।

साथियों, रस रंग प्रोग्राम में पहली प्रस्तुति जहीर अहमद खान और साथियों की आवाज में यह कव्वाली आपने सुनी। अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक और पेशकश।

जहीर अहमद खान और साथियों की आवाजों में इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम रस रंग यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अगला प्रोग्राम हम बस कुछ ही क्षणों में रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: हमारी अगली पेशकश मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, गीतकार हैं एस एच बिहारी और संगीतकार हैं ओपी नैयर, फिल्म का नाम कश्मीर की कली।
1: यूसी।

अगला गाना हमने लिया है वक्त फिल्म से। इसे गाया है आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं रवि।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारे याद सताते हैं,
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है सदाबहार नगमे। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में भावी फिल्म का गाना। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगर।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप

0: कभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। लीजिए अब सुनिए शकील बदायनी का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम कोहिनूर।

अब आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मुकेश की आवाज में कटी पतंग फिल्म से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं आरडी बर्मन। श्रोताओं, आप सुनिए ये गीत और अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सखी सहेली में सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
1: आरती श्रीवास्तव।
0: आप सभी को हमारा
1: और मेरा यानी कि आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार। कैसी हो आरती?
1: बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत बढ़िया हूँ।
0: हाँ, बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त लग रही है और काफी खुश भी नजर आ रही हूँ। क्या बात है।
1: बस थोड़ा सा जब ब्रेक मिल जाता है ना, इतनी ऐसी जो रोज की हमारी दिनचर्या होती है ना, तो फिर अपना एकदम पूरे चार्ज हो जाते हैं हम लोग।
0: क्या बात है, ऐसा कौन सा ब्रेक तुमने ले लिया? हालांकि बहुत दिनों बाद मिली हो और मुझे एक बार तो घबराहट भी हो गई थी कि आरती मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब आज जैसे ही तुम मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई।
1: बिल्कुल, ये आपका प्यार है जो आपने मुझे इतना नोटिस किया। और मैं गई थी मतलब बहुत ज्यादा यात्राओं पे।
0: अच्छा,
1: यात्रा की बात तो हम लोग करते रहते हैं, मैंने सोचा जाना भी चाहिए। बात करने से कुछ नहीं होता। तो मैं गई थी इस बार, मैं गई मथुरा, वृंदावन और अयोध्या।
0: अरे वाह।
1: और साथ में बरसाने और आगरा, मतलब जो भी चीजें रास्ते में पड़ती गई हम लोग जाते रहे।
0: क्या बात है, क्या बात है। जब भी चेहरे की चमक बता रही है
1: बिल्कुल,
0: और आपकी मुस्कुराहट और हंसी बता रही है कि आप बहुत सुंदर यात्रा करके लौटी है।
1: बिल्कुल।
0: कैसी रही यात्रा और क्या रहा?
1: बहुत अच्छी रही और बहुत चीजें बदल भी गई मंदाकिनी जी।
0: अच्छा।
1: वहाँ जब हम लोग गए थे तो पहले जैसे बहुत परेशानियां होती थी बरसाना साइड जाने में कि गाड़ी करो, ये करो, तब जाओ वहां तक पहुंचो, आपको एक मंदिर है जो वहाँ का प्रसिद्ध। तो लेकिन इस बार था रोपवे शुरू हो गया वहाँ पे।
0: अच्छा।
1: तो बस आप रोपवे तक पहुंची अपनी गाड़ी से या किसी भी ऑटो से, किसी चीज से, और उसके बाद बहुत ज्यादा रास्ता भी नहीं है बरसाने का। अगर मथुरा से जाते हैं आप 45 मिनट में पहुंच जाएंगे, उससे भी कम में भी कभी कभी पहुंच सकते हैं 20-25 मिनट में अगर रास्ते में ट्रैफिक नहीं है तो। और रोप वे पकड़िए, सीधे आपको जहां मंदिर है वहीं पे ही उतारता है वो।
0: अरे वाह।
1: और बस आप मुश्किल से 10 कदम चलेंगे मंदिर आ गया।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, तो बहुत अच्छा हो गया। अयोध्या भी गए तो वहां पे बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है, सिक्योरिटी भी उसी हिसाब से है, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत सुंदर इंतजाम किया हुआ है।
0: आपके कहने का मतलब यह है कि अब यात्रा उतनी तकलीफ देह नहीं है। कई बार हम क्या होता है, निकलते तो हैं यात्रा पर रास्ते हैं या वो सुविधाएं हमें नहीं मिलती है जिससे यात्रीगण परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब इतनी सुविधाएं दे दी गई हैं कि यात्रा करने का मजा बहुत ही आता है।
1: बिल्कुल। और लेकिन आप ये भी सोच के जाइए कि जैसे अगर मथुरा जा रहे हैं आप, तो अगर आपको वहां मथुरा या वृंदावन में घूमना है तो आपको थोड़ा सा पैदल चलने की आपको आदत होनी चाहिए।
0: हाँ।
1: क्योंकि वहां पे ट्रैफिक की वजह से गाड़ियों को जो पहले ही रोक लेते हैं और आपको पैदल ही जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे ऑटो रिक्शा और जो ई रिक्शा वगैरह चलते हैं उसकी वजह से बहुत भीड़ हो जाती है, ट्रैफिक हो जाता है। इस वजह से जो पैदल चलते हैं यात्री, बहुत से लोग परिक्रमा करते हैं लेट के, बैठ के, तो उनको परेशानी ना हो, इस वजह से वो रोका जाता है। तो इसलिए आप पैदल चलेंगे तो अच्छी बात है ना, जितना आप पैदल चलेंगे उतना अच्छा है।
0: वो अच्छी बात है, लेकिन ये बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, जितने भी ये मठ हैं, तीर्थ जगह हैं, स्थान हैं, वहां पर हमें बहुत पहले रोक दिया जाता है ताकि जो हम लोग जा रहे हैं, दर्शक जा रहे हैं या जो भक्त जा रहे हैं, कहने का मतलब, वो परेशान नहीं हो और यात्रा जो है सुचारू और शांतिपूर्वक हो जाए। और इस घूमने के जो है ना आरती, बहुत ज्यादा फायदे भी हैं। देखो तुम्हें देखकर लग रहा कितनी फ्रेश नजर आ रही हो, तुमने खुद ही कहा, तो तुम्हारा मानसिक तनाव बिल्कुल दूर हो गया होगा और एक फिजिकल फिटनेस महसूस कर रही होंगी।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है।
0: और आत्मविश्वास बढ़ा होगा, एक नया दृष्टिकोण आया होगा यात्रा को करने के बाद, इतनी जगह घूम के आई हो,
1: इतने लोगों को देखा, सब कुछ किस तरह से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, सब चीजें देख के बहुत
0: नई संस्कृतियों का अनुभव होता है, हमें नए अनुभव हमारे जीवन से जुड़ते
1: हैं, तरह तरह के व्यंजन मिलते हैं। जो मेरा बहुत फेवरेट चीज है।
0: हाँ?
1: मैं मुझे जगह जगह की जो क्यूजीन होते हैं, जो व्यंजन होते हैं ना, वो खाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वही चीजें हैं, एक ही चीज है जो यहाँ बनेगी और वो जो वहाँ बनेगी, लेकिन
0: फर्क होता है,
1: बिल्कुल फर्क होता है।

0: क्योंकि पानी का बनाने वाले का तरीके तौर तरीके बदल जाते हैं, लेकिन हमारा जो स्वाद लेने का तरीका है वो नहीं बदलता है ना। तो
1: अच्छा
0: यात्रा करके आपके दिमाग को सुकून मिला है, मैं ऐसा मानती हूँ। और अब जो आपने प्राकृतिक सुंदरता देख ली है तो आप फील गुड महसूस कर रही हैं।
1: बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं अपने अंदर।
0: तो चलिए सखी सहेली में आज हमारे सखी और सखा आपको सुन रहे हैं और वो भी बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। मतलब आपकी यात्रा वृतांत सुनकर हमने मन से इस यात्रा को कर लिया है
1: जी।
0: तो अब ये गीत सुन ले।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो आरती आपके आने से भी देखो चार चांद लग गए हैं, है ना।
1: बहुत प्यारा गीत लगता है
0: जी। बताइए तो देखिए, आप यात्रा में इतनी खो गई कि आप ये बताना भूल गई हैं कि हमारे श्रोता जानना चाहते हैं आज के हमारे विषय क्या क्या है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे एकदम ही इतना ज्यादा उत्साह लग रहा था कि मैं बताने भूल गई। तो हम बता देते हैं, अभी आज हम बात करेंगे विश्व मधुमक्खी दिवस के ऊपर।
0: अच्छा,
1: तो जो कि बहुत ही जरूरी है हमारे लिए मधुमक्खियाँ।
0: बिल्कुल।
1: और हम बात करेंगे,
0: पर काटती बहुत बुरा है।
1: और काट चुकी है मुझे, इसलिए मुझे पूरा उसका एहसास है, पूरा एक्सपीरियंस है उसका। और हम बात करेंगे भाषाओं से किस तरह से जुड़ा हुआ है संस्कार।
0: अच्छा,
1: तो इसके बारे में तो चर्चा करेंगे, साथ ही हम चाहेंगे हमारे जो जितने भी श्रोता हैं वो सब अपने अपने विचार, अपने अपने जो भी वो सोचते हैं उसके बारे में वो लिख के भेजा। ये बताएं कि वो उनको कितनी भाषाएं आती हैं बोलनी।
0: अच्छा ठीक है, यानी शब्द हमारा विचार आपके जो आप सेगमेंट लाई हैं
1: उसके अंदर हम बात करेंगे सद्भावना।
0: अच्छा, भाषाओं से जुड़े संस्कार में आप बताना चाहती हैं कि भाई अपनी अपनी भाषाओं के बारे में हमारे श्रोता हमसे बात करें कि वो किस भाषा को जानते हैं या कितनी भाषाओं के ज्ञाता हैं। तो फटाफट लिखिए, हमारे सखा और सखियों से हम अनुरोध करते हैं कि जो भाषाओं से

0: संस्कार है, इस पर लिखने के साथ साथ ये भी बताइए आपने अब तक कितनी भाषाएं सीखी हैं,
1: जी बिल्कुल।
0: है ना?
1: और हम बात करेंगे आज साड़ियों का संसार, जो साड़ियों का जो विषय है उसमें हम आज हम लेकर आए हैं तनचोई साड़ी।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो आज मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप मेरे लिए तनचोई साड़ी लेकर आई
1: साड़ी तो
0: हैं।
1: मैं खैर नहीं लेकर आ पाई हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत सारी मिठाइयाँ मैं लेकर आई हूँ।
0: बिल्कुल, वो हमें मिल भी गई है ना।
1: जी
0: और शब्द हमारा विचार आपके में आज सद्भावना पर हम बात करने
1: जी
0: वाले हैं। देखिए, सद्भावना कहने को एक बहुत सामान्य शब्द लगता है,
1: जी
0: सद्भावना होनी चाहिए, लेकिन इसके गहरे अर्थ है। बहुत
1: बहुत
0: गहराई में जाकर
1: जी
0: आप इस पर अपने विचार लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आपके भीतर कितनी सद्भावना है दूसरों के प्रति, है ना।
1: बिल्कुल।
0: हम लिख तो देते हैं आरती बड़ी बड़ी बातें कि सद्भावना होनी चाहिए, बहुत
1: जी
0: जरूरी है जीवन में, लेकिन जब हमारा मौका मिलता है तो पता चलता है कि हमारे अंदर तो सद्भावना है ही नहीं, वो
1: बिल्कुल,
0: भावना ही
1: आप
0: नहीं
1: अपने
0: है।
1: विचार लिखें
0: हाँ,
1: और जो चीजें लिखी हुई पहले से उसमें।
0: उस पर मत
1: हाँ
0: जाइए कि सद्भावना के विषय में क्या लिखा गया है,
1: हाँ
0: ये बताइएगा कि आप सद्भावना को लेकर
1: जी
0: क्या सोचते हैं। आपके
1: बिल्कुल
0: जीवन में, आपके विचारों में, आपके व्यवहार में कितनी सद्भावना है, या सामने जो आपके लोग आते हैं उनसे आपको क्या सद्भावना रूपी
1: जी
0: विचार मिलते हैं।
1: बिल्कुल। तो हम बात एक चीज और भूल रहे
0: व्यंजन, आपका बहुत ही
1: हैं
0: पॉपुलर सेगमेंट।
1: जो मुझे बहुत पसंद है। आज हम बात करेंगे ठेकुआ की और दाल पीठा की। दाल पीठा मेरा इतना फेवरेट है ना, मैं बनाती भी हूँ, मैं खाती भी हूँ बहुत मन से।
0: चलिए, तो अगली बार जब आप आएंगी तो लेकर भी आएंगी
1: बिल्कुल
0: दाल
1: बिल्कुल, लेके
0: पीठा और
1: आऊंगी
0: हमें
1: मैं।
0: खिलाएंगी भी,
1: हाँ जी
0: ठीक है।
1: बिल्कुल।
0: तो भाई, हम बात कर रहे थे विश्व मधुमक्खी दिवस की, जिसका हमें डर भी लगता है जब मधुमक्खी पास में
1: अरे
0: छत्ता बना लेती है हमारे घर के आजू बाजू में कहीं, तो हम बड़े डर जाते हैं। एक मधुमक्खी उड़ती हुई नजर आती है तो बड़ा डर लगता है कि
1: एकदम
0: कब काट
1: चिल्लाने
0: खाएगी।
1: से रहते हैं, अरे भगाओ भगाओ जल्दी
0: लेकिन देखिए कितनी
1: जी
0: बड़ी बात है कि ये दुनिया में अगर मधुमक्खी नहीं रही तो दुनिया के लोग सिर्फ 4 साल तक जीवित रह सकते हैं, और अनाज होगा कि नहीं, इस पर काफी मतलब शोध भी किए गए हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है अपने हमारे इकोसिस्टम, इस जो हमारे सिस्टम है पूरा पृथ्वी का, उसको चलाने के लिए।
0: बिल्कुल,
1: और हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस पर मधुमक्खियों के बारे में खास बातें कुछ बता रहे हैं वो, कि दुनिया की 1/3 खाद्य फसलें पूरी तरह से मधुमक्खियों जैसे जो परागणकों पर निर्भर है, यानी कि वो जो मधुमक्खियां हैं वो उसको पराग को जब लेती हैं और बिखेरती हैं उस पर ही निर्भर करता है।
0: बिल्कुल,
1: यदि ये ना हो तो हमारे भोजन की प्लेट से अधिकांश फल सब्जियां और मेवे गायब हो जाएंगे। मधुमक्खियां आपस में बात करने या भोजन के स्रोत का पता लगाने के लिए एक विशेष प्रकार का वेगल डांस यानी कि नृत्य करती हैं। 1 पाउंड लगभग आधा किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों के पूरे झुंड को लगभग 20 लाख फूलों का दौरा करना पड़ता है, और अंत में मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं, 2 बड़ी मुख्य आंखें और सिर के ठीक बीच में 3 छोटी आंखें। सच में 20 लाख,
0: बताइए, तब
1: इतना
0: जाके
1: मेहनत।
0: हमें हाँ शुद्ध जो शहद है वो मिलता है
1: एक
0: ना।
1: बूंद भी नहीं गिराना
0: हाँ,
1: चाहिए
0: बिल्कुल नहीं गिनाना चाहिए। और हम सभी को ये भी पता होना चाहिए आरती, कि मधुमक्खियां उन पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जिन पर हम भोजन के लिए निर्भर हैं। जैसे कि सदियों से मधुमक्खियां जो पृथ्वी पर सबसे मेहनती जीवों में गिनी जाती है, और वो मनुष्य को, पौधों को, जैसा कि अभी तुमने बताया हमारे श्रोता ने लिखा,
1: हाँ, श्रोता ने
0: कि
1: हमारे
0: पर्यावरण
1: जी
0: को लाभ भी पहुंचाती रही है, और एक
1: जी
0: फूल से दूसरे फूल तक वो पराग को ले जाती हैं, और प्रचुर मात्रा में फल, मेवा और बीज भी वो पैदा करती हैं।
1: जी हमारी ये श्रोता जो है कितने ही कितने जानकार हैं, मतलब कितने
0: हाँ,
1: अच्छे तरीके से उन्होंने इस बात को लिखा हुआ है।
0: बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, और बल्कि उनकी जो विविधता है और गुणवत्ता में भी सुधार लाते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और पोषण में योगदान होता है, वो पृथ्वी पर जीवन चलते रहने के लिए जरूरी भी होता है।
1: जी
0: और शहद के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो शहद तो उत्पादक होने के अलावा मधुमक्खियां पौधों के निषेचन में मदद करती हैं, और अनगिनत प्रजातियों के प्रजनन को वो सुनिश्चित भी करती हैं। फलों की और सब्जियों से लेकर फूलों और पेड़ों तक हमारे द्वारा जो खाए जाने वाले कितने ही खाद्य पदार्थ हैं, वो परागण के लिए मधुमक्खियों पर ही निर्भर हैं,
1: जी
0: जैसा अभी
1: बिल्कुल
0: तुमने शुरू में बताया भी था।
1: जी। और मधुमक्खियों के बिना हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होगा, जिससे जैव विविधता में कमी आएगी, और मनुष्यों और वन्य जीवों दोनों के लिए खाद्य सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ सकती है। और विश्व मधुमक्खी दिवस की स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2017 में मधुमक्खियों और परागकर्ताओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए।
0: बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि काफी अच्छी जानकारी इन्होंने दी है कि विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है और इस दिन मधुमक्खी पालन के अग्रणी एंटोन जानसा को 1734 में 32वां दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य जो है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य पराग कणों की भूमिका को स्वीकार भी करना है। तो अमेरिका में ये पहली बार दिवस मनाया गया और ये पहल मधुमक्खी पालकों, शिक्षकों और शहद प्रेमियों द्वारा मधुमक्खियों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी और उनका लक्ष्य मधुमक्खी

0: की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करना था और उनके संरक्षण को उनके महत्व पर जोर देना भी था।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है हमारे जो लिखते हैं कि 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार दुनिया की लगभग 33% खाद्य फसलें और 90% जंगली फूलों वाले पौधे पूरी तरह या आंशिक रूप से परागकों पर निर्भर करते हैं। मधुमक्खियां इस पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा जरिया है।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखिए बहुत सारी जानकारी जो हम जुटा के लाए थे वही हमारे श्रोता भी बता रहे हैं काफी अच्छा मधुमक्खियों के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज दिवस हम मना रहे हैं ना आरती, ये मधुमक्खियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार अवसर है। और मधुमक्खियों को प्रचुर मात्रा में पराग उपलब्ध कराने के लिए मधुमक्खी अनुकूल फूल और जड़ी बूटियां हमें लगानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वो अपना कार्य कर सकें। अपने बगीचों की अगर हम बात करें उन पर पौधों पर कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग करने से हमें बचना भी चाहिए क्योंकि मधुमक्खी और अन्य जो लाभकारी कीड़े हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। और साथ ही मधुमक्खी उत्पाद खरीदकर स्थानीय मधुमक्खी पालकों को हम बढ़ावा दे सकते हैं। और इस बार का जो मुख्य विषय रखा गया है वो है प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खियां हम सभी का पोषण करती हैं।
1: बिल्कुल, हर बार एक नया विषय के साथ में आते हैं तो इस बार का विषय ये है। और हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि फूल और फलों के फलीकरण के लिए मधुमक्खी वाहक का काम करती है, इसलिए मधुमक्खी का अस्तित्व बना रहना इस सृष्टि के लिए बेहद जरूरी है। पेड़ों की डाली के अलावा किसी घर की छत के नीचे छाता बना रही मधुमक्खियों से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ। बिल्कुल, जब तक आप उसे छेड़ेंगे नहीं तब तक वो काटी
0: करेगी। बिल्कुल,
1: और कि वो आपको डस ना ले, हम मतलब उसको डंक ना लगा दें आपको, हम भी यही कह रहे हैं अगर उसे आप छेड़ेंगे नहीं तो वो अगर आप उसे छेड़ेंगे तो हमें छोड़ेगी नहीं। इसलिए जिस पेड़ की डाली पर तेरा छता हो उस डाली के पास से गुजरना नहीं। उन्होंने बड़े मजाक के तरीके से इस चीज को लिखा है।
0: बिल्कुल सही कहा है।
1: और कहते हैं कि 3 साल पहले हमारे घर के ओटीएस के सालियों पर छाता बनाया था, अब इस साल हमारे घर अमरूद के पेड़ के नीचे कपड़े सुखाने के तार पर एक कोने में एक महीन पहले छत्ता बनाना शुरू किया जो आज काफी बड़ा हो गया है और कुछ दिनों बाद बरसात की ऋतु में अपने आप उड़ जाएंगी, ना हम उसे छेड़ते ना वो हमें छेड़ती।
0: बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस पर ये जरूर बताना चाहूंगी कि हमारी स्कूल बिल्डिंग में अभी अप्रैल में काफी बड़ा सा छत्ता है जिसे बुलवाकर हटवाया गया था। पहले तो हमको बहुत स्थानों पर दिखाई देती थी मधुमक्खी, आप कम दिखती हैं। बचपन में माँ बताती थी कि उस पर बिल्कुल भी पत्थर नहीं फेंकना है, नहीं तो पानी के अंदर जाकर भी वो डंक मार देती है। वो हमेशा बात हमें याद रहती है और मधुमक्खी शहद सी मिठास देती है, ऐसे ही सभी के जीवन में मधुरता बनी रहे।
1: बिल्कुल,
0: तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो आरती
1: नाम नहीं बताने वाली हूँ चित्तौड़ का।
0: भाई नाम तो हमारे पता ही है हमारे श्रोताओं को।
1: बिल्कुल।
0: तो हम बात कर रहे थे आज की, भाई विश्व मधुमक्खी दिवस है और हमने बात की उनकी मिठास पर और मधुमक्खियों को किस तरह से हमें बचाना है इस पर। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे देश में,
1: जी
0: हमारी संस्कृतियों से जुड़ी चीजें हैं जहां पर हम बहुत सारी बातों से, बहुत सारी चीजों से, गुणों से जुड़ पाते हैं और
1: जी
0: उनमें एक है हमारा साड़ियों का संसार,
1: अरे बहुत
0: है ना। और हम महिलाओं को सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं ये साड़ियां, और आज हम बात करने वाले हैं तंचोई साड़ी के बारे
1: जी।
0: में।
1: तो तंचोई के बारे में बात करते हैं। तो तंचोई की कहानी 19वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से शुरू होती है और ऐसा माना जाता है कि लगभग 1856 ईस्वी में पारसी व्यापारी सर जमशेद जी जेजी भाई ने सूरत के जोशी परिवार के 3 बुनकरों को चीन भेजा ताकि वो इस विशेष ब्रोकेट रेशम की बुनाई की कला को सीख सकें।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आरती। और वापस लौटने पर भाइयों ने अपने चीनी शिक्षक छुई का नाम अपना लिया और उन्होंने रेशम बुनाई की कला जो सिखाई थी। तन शब्द गुजराती शब्द त्रान से मिलता जुलता है जिसका अर्थ तीन होता है, और इसी से तीनों भाइयों का नाम लिया जाता है। इस प्रकार जिस रेशम को उन्होंने बनाना सीखा उसे तंचोई के नाम से जाना जाने
1: अच्छा
0: लगा है।
1: जी। तो उनके शिक्षक का नाम और उनका जो
0: नाम
1: तीन व्यू
0: जुड़
1: भाई
0: के,
1: थे मिलके।
0: हाँ देखिए,
1: और बम्बई में 1950 के दशक तक तंचोई साड़ियों का उत्पादन जारी रहा और जब बनारस के बुनकरों ने इन ब्रोकेट को बनाने की कला सीख ली तो उसी कपड़े का उत्पादन बहुत कम कीमत पर शुरू कर दिया गया और इसी तरह कुछ जटिल बनारसी डिजाइन तंचोई रेशम पर भी दिखाई देने लगे।
0: बिल्कुल सही कहा। और तंचोई बुनाई की एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक या दो ताने और बाने में 2 से 5 रंग के होते हैं, मतलब जो अक्सर एक ही रंग के होते हैं। और तंचोई साड़ियों की एक और खास बात यह है आरती कि इनके कपड़े की सतह साटन जैसी होती है और एक जटिल और तकनीकी बुनाई तकनीक है। बहुत मतलब थोड़ा जटिल है ये
1: जी,
0: तकनीक,
1: इसको टाइम लगता है सीखने में, बनाने में
0: बहुत
1: भी।
0: मुश्किल है।
1: तो इसमें एक या दो ताने और 2 से 5 बाने के रंगों का उपयोग होता है। ये साड़ियां बेहद हल्की और पहनने में मुलायम होती हैं। तंचोई की कई अलग अलग किस्में होती हैं जैसे कि सैटन तंचोई जो कि एक ही रंग के सैटन कपड़े पर, जो साटन का कपड़ा होता है उस पर आधारित होती हैं और इसमें एक या अधिक रंगों के ताने के धागे इस्तेमाल किए जाते हैं।
0: हाँ, और अतिरिक्त ताने के रंगों को भी मुख्य ताने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सैटिन जरी तंचोई, सैटिन तंचोई का ही एक विस्तारित रूप है जिसमें ताना या तो एक रेशम और एक सोने के धागे का या 2 रेशम के धागे और 1 सोने के धागे का, इस तरह से इसको बनाया जाता है।
1: जी। और इसके साथ एटलस या गिल्ट कपड़े की सतह शुद्ध साटन की होती है। अन्य कपड़ों की तुलना में एटलस या गिल्ट भारी होता है और जरी के अतिरिक्त उपयोग के कारण इसमें अधिक चमक भी होती है। और मुशब्बर का डिजाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण, ये डिजाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण थोड़ा अलग सा दिखता है।
0: हाँ बिल्कुल अलग लगती है तंचोई साड़ी, और ये झाड़ियों या पेड़ की शाखाओं जैसा भी प्रतीत होता है। मुशब्बर डिजाइन जो है अक्सर जंगल या प्रकृति की हरियाली से जुड़ी है। तो तंचोई जो वस्त्र है वो चटक रंगों से बुने जाते हैं और बुनाई की तकनीक में कई रेशमी धागों का उपयोग होता है। ब्रोकेट की साड़ियां होती है ना, उसी तरह ब्रोकेट की तरह तांचोई भी साटन बेस को ढकने वाले रंगीन बाने के रेशमी धागों के एक अतिरिक्त सेट का उपयोग करके बनाया जाता है जिससे विशिष्ट और अनूठे पैटर्न भी बनते हैं।
1: बिल्कुल। और तांचोई साड़ियों में डिजाइन हमेशा उड़ते हुए पक्षियों, फूलों की मालाओं के बीच बैठे मुर्गों की आकृतियों से सजे होते हैं जो पूरी साड़ी पर फूलों और फूलों से भरी टोकरियों से घिरे रहते हैं। कभी कभी पल्लू पर मोर, टोकरियां, फूलों के गुच्छे या शिकार के दृश्य अधिक सघनता से बनाए जाते हैं। तंचोई रेशमी साड़ियों को कुछ मनमोहक पुष्प, ज्यामितीय और पैसले डिजाइन से भी सजाया जाता है।

0: बहुत ही अजीब सी एक क्लासिक डिजाइन होती है तांचुरी साड़ियों में
1: जी।
0: और अधिकतर डिजाइन जो है चीनी मूल की होती है, लेकिन बुनकर जो है अनूठी कलाकृतियां बनाने के लिए भारतीय रूपांकनों को इसमें शामिल कर लेते हैं। और तांचुरी साड़ियों पूरे देश में औपचारिक अवसर जो है या विवाह समारोह के अवसर है या त्योहार है हमारे, उसमें बहुत ही प्यार से बहुत ही खुशियों के साथ पहनी जाती है, शौक के साथ पहनी जाती है। और तंचोई रेशम की साड़ियां अपने कपड़े की वजह से शरद ऋतु यानी सर्दी की ऋतु में और सर्दियों के ठंडे महीनों में पहनने के लिए एक अच्छी साड़ी हो सकती है। तो आरती, मैं तो अपनी सखियों से भी कहना चाहूंगी, अगर उनके पास तंचोई साड़ी है तो हमें बताइए किस रंग की तंचोई है और उन्होंने इसे कब और कहाँ पहना, और नहीं तो उनके पति देव बता दे कि उनकी पत्नी ने तंचोई साड़ी खरीदने के लिए कितना दिमाग खराब किया होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो लिखिए हमें फटाफट और बताइए तंचोई साड़ी से जुड़ा कोई आपका अनुभव है हमारी सखियों और सखाओं का। हाँ, तो हमसे शामिल करें।
1: बिल्कुल, तब तक हम गीत सुनते हैं।
0: गीत सुनते हैं।

0: तो इस अंतराल के बाद हमारे सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है।
1: स्वागत है
0: हार्दिक
1: जी। और अब हम क्या बात करने जा रहे हैं?
0: अब भाई बात तो हम करने वाले हैं कि भाषाओं से जुड़े संस्कार क्या हैं।
1: जी
0: है ना। तो सबसे पहले हमें जानना होगा आरती कि

0: तो एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मुझे कम से कम 25 भाषाएं आती हैं, इससे मैं इससे अधिक भाषाओं को भी जानता हूं, मुझे 25 भाषा आती है, लेकिन सबसे जो भाषा अच्छी लगती है, जो सबसे खूबसूरत है, तो वो प्यारी भाषा है हिंदी भाषा, और हिंदी भाषा के बराबर उनको मतलब वो उनको बहुत अच्छी लगती है इसे हिंदी बोलना, वैसे वो 25 भाषाओं को जानते हैं।
1: हाँ, लेकिन आपने 25 भाषाओं के नाम नहीं लिखे। आप बताइए हमें कि आपको कौन सी 25 भाषाएं आती हैं, और उसके
0: बिल्कुल
1: थोड़ा सा बताइए कैसे आपने सीखी। इतनी भाषाएं सीखना आसान नहीं होता है,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि आप जब अपने विचार हम तक भेजेंगे, अपना अनुभव हमसे साझा करेंगे, तो हो सकता है हम भी आज भी कोई भाषा सीखने के लिए चाहत हमारे मन में आ जाए, जिसका हमें
0: बिल्कुल,
1: डर होता है कि अरे भाई
0: और कोई आसान तरीका भी हो
1: हमें
0: उसका।
1: मिल जाए। तो
0: जी
1: आप थोड़ा सा बताइए कि आपने कौन कौन सी 25 भाषाएं सीखी हैं, और किस तरह से सीखी हैं, और उनका आपके जीवन में कहाँ कैसे उपयोग हो रहा है, इस पर थोड़ा सा बताइए।
0: बिल्कुल
1: तो सबसे बड़ी बात थी आज हम बात करने वाले हैं कि भी भाषाओं से जो जुड़े संस्कार हैं वो क्या हैं।
0: जी
1: तो आरती, क्या कभी हमने सोचा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बोले जाने वाली जो भाषाएं, हजारों भाषाएं, एक दूसरे से इतनी भिन्न क्यों हैं, है
0: जी
1: ना? देखने और सुनने में भले ही बिल्कुल अलग लगे, लेकिन हाल ही में एक अध्ययन हुआ, शोध हुआ, उसमें चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि चाहे भाषा कोई भी हो, उनकी बुनियादी संरचना और उन्हें गढ़ने वाले जो नियम हैं वो आश्चर्यजनक रूप से एक समान है।
0: जी बिल्कुल। और साथ ही ये समानता इसलिए है क्योंकि इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति हमारे मस्तिष्क की एक ही प्राकृतिक कार्य प्रणाली से हुई है, और यानी हम मनुष्य चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों न रहें, हमारे सोचने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मूल तरीका एक ही गहरे सांचे में ढला हुआ है। यानी अगर हमें दुख होगा तो हम रोएंगे, हमारे आंसू निकलेंगे, चाहे वो कोई अमरीका में
1: बिल्कुल
0: रहने वाला हो, चाहे वो हिंदुस्तान में रहने वाला हो।
1: बिल्कुल
0: ये खोज साबित करती है कि हमारी बोलियां भले ही अलग हो, लेकिन हम सभी भीतर से एक ही मानवीय सूत्र से जुड़े हुए
1: जुड़े
0: हैं।
1: हैं। बहुत गहरी बात है आरती है, अगर हम इसे समझ पाए तो
0: जी
1: कितनी बड़ी बात है कि हम भीतर से एक मानवीय सूत्र से जुड़े हुए हैं, है
0: जी
1: ना?
0: बिल्कुल
1: और भाषा का जो सीधा संबंध है वो संस्कार और सभ्यता से होता है। हम अपनी भाषा के संस्कार भूलते अगर जा रहे हैं तो गलत बात है। इसी संदर्भ में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के शब्दों का अगर हम यहाँ उल्लेख करते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की।
0: बिल्कुल, जो वो भाषा जानते थे उसमें समझ में आता है ना, जिस तरीके से जिस भाषा को जानते हैं।
1: कितनी बड़ी बात है। और
0: जी
1: हमारे मन में क्या रहता है कि अगर हमने अंग्रेजी भाषा नहीं सीखी तो हमने कुछ भी नहीं सीखा,
0: जी
1: है ना? हम
0: अक्सर
1: मॉडर्न नहीं कहलाएंगे, हमें सम्मान नहीं मिलेगा, या
0: जी
1: हम विकास नहीं कर पाएंगे।
0: जी
1: लेकिन इतने बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैंने अपनी मातृभाषा में गणित और विज्ञान की शिक्षा
0: बिल्कुल
1: ली।
0: सीखिए, आप जितनी भाषाएं हो सकते हैं उतनी सीखिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जब हम सीखना शुरू करते हैं भाषाओं को अलग अलग, तो हमारा जो मस्तिष्क का वो हिस्सा है ना, एकदम से वो एक्टिव हो जाता है,
1: बिल्कुल
0: और उसके बाद ना वो हमारा जो दिमाग है बहुत शार्प हो जाता है, जिसकी वजह से हम अच्छे से और भाषाओं को सीख पाते हैं, हम और चीजों को अपने अच्छे तरीके से कर पाते हैं।
1: बिल्कुल, आपने
0: तो
1: देखा होगा
0: सीखना
1: कई
0: कभी मत
1: लोग
0: बंद करिए।
1: शौक या फ्रेंच भाषा सीखते हैं,
0: हाँ
1: उनका जीवन में उपयोग नहीं होता है, लेकिन शौक होता है कि मैं भाषा सीखता हूँ।
0: बिल्कुल
1: तो आप किसी भी भाषा के ज्ञाता हो, किसी भी भाषा को सीखते हो, लेकिन मन में हीन भावना नहीं रखनी
0: बिल्कुल
1: चाहिए कि मुझे वो भाषा नहीं आती है तो मुझे कुछ नहीं आता है।
0: जी बिल्कुल। और भाषाएं केवल संवाद का माध्यम ही नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, संस्कारों, जीवन मूल्यों और पहचान की सच्ची संवाहक हैं। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और अगली पीढ़ी तक पारंपरिक ज्ञान और संस्कार पहुंचाने का काम करती है।
1: बिल्कुल। और आज के दौर की अगर हम बात करें, हमारी युवा पीढ़ी की बात करें, तो सोशल मीडिया के प्रचलन के कारण भाषा का प्रयोग थोड़ा शॉर्टकट में
0: बिल्कुल
1: होने लगा है,
0: जी
1: जो कि गलत भी है ना, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि शुद्ध भाषा ही समाज के संस्कार के विकास की रीढ़ होती है। और ऐसे में युवा पीढ़ी को भाषा का सही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट भाषा की आदत जो है सोशल मीडिया में काम तो आ जाती है, लेकिन जब ये आदत जीवन में आ जाती है आरती, तो इसका नुकसान परीक्षाओं से लेकर कई मंचों पर आपको झेलना पड़ता है, क्योंकि वहां आपके पास अच्छे शब्द और व्याकरण का अकाल पड़ जाता है।
0: बिल्कुल। और एक शोध बताता है कि जो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी सीखने की जो क्षमता होती है वो जीवन भर बनी रहती है। जरूरी नहीं कि हम इस साल इतने साल के हो गए अब हम क्या सीखेंगे,
1: हाँ,
0: ये कभी मत मन में
1: बिल्कुल
0: लेकर आइए।
1: आप जब तक आपकी अंतिम सांस है आप सीख सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: चाहत आपके अंदर होनी चाहिए।
0: जी। और साथ ही जो व्यस्क सीखना जारी रखते हैं उनमें डेमेंशिया जो होता है, मनोभ्रंश, वो उसका जोखिम जो होता है वो 46% तक कम होता है। और सीखना केवल शिक्षा नहीं है, ये मन की औषधि है, यानी पढ़ना सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, पढ़ना जिंदगी को जीवित जिंदा रहने के लिए जरूरी
1: क्या
0: है।
1: बात है, कितनी बड़ी बात है कि केवल डिग्रियां हम धारण कर लेते हैं, मैं डबल एमए हूँ, ट्रिपल एमए हूँ, मैं पीएचडी हूँ, है ना,
0: जी
1: मैं एमफिल हूँ, ये अच्छी बात है, डिग्रियां लेते हैं, आप पढ़ते हैं, विद्वान बनते हैं, बड़ी बड़ी
0: बिल्कुल
1: नौकरियों पर हम जाते हैं, वो तो है ही जिंदगी का, लेकिन इसके अलावा

0: पढ़ना जो है वो जिंदगी को जीवित रखने के लिए कितना जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत जो साहित्यकार है ना वो लिखते रहते हैं अंत तक। उनके लिए कहानी लिखना, उपन्यास लिखना, कविता लिखना जिंदा रहने का माध्यम होता है।
1: बिल्कुल, आप कुछ नहीं तो डायरी लिखना शुरू कर दीजिए, आप खुद ही अपने आप को, आपको लगेगा कि यार ये कितना अच्छा लिखने लगा हूं मैं।
0: जो भीतर बदलाव आता है वो कितना सुंदर होता है ना,
1: बिल्कुल
0: ये सबसे
1: बिल्कुल
0: बड़ी बात है। तो देखते तो हम सभी चीजें हैं आरती,
1: जी
0: प्रकृति को आप भी देखती हैं, मैं भी देखती हूँ, लेकिन आप प्रकृति को किस अंदाज में देखकर क्या
1: जी,
0: लिखती हैं
1: सबका नजरिया
0: ये
1: अलग
0: मायना
1: होता है
0: रखता
1: जी।
0: है ना। तो भाषाओं को सीखना जारी रखना चाहिए, एक ऐसा निर्णय हमें लेना चाहिए कि हम भाषाएं सीखेंगे, क्योंकि ये हमारे संवाद कौशल को भी बढ़ाता है और मानसिक क्षमता में वृद्धि भी करता है। और एक से अधिक भाषाएं जानना रोमांचक यात्रा अवसरों के द्वारा द्वार आपको खोल सकता है। आप कहीं भी जाएंगे अगर आपको वहां की भाषा आती है तो आपको उस यात्रा के मजे दोगुने हो जाएंगे।
1: बिल्कुल, वहां से आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं आराम से,
0: हाँ
1: जैसे कि हम गए थे तो हमने बात करी वहां पे ब्रिज भाषा में
0: हाँ
1: क्योंकि
0: कितना अच्छा
1: हाँ
0: लगा
1: बिल्कुल
0: होगा।
1: बहुत अच्छा लगता है। फिर अगर आप जब उनसे उनकी भाषा में बात करते हैं ना तो और जुड़ जाते हैं आपसे कि अच्छा ये तो हमारी भाषा बोल रहा है,
0: हाँ,
1: तो
0: तो
1: इस
0: अपने
1: वजह
0: करीब पाते हैं ना आपको
1: बिल्कुल
0: कि हमारे ही लोग हैं और भाषा एक दूसरे को जोड़ती
1: बिल्कुल
0: है
1: जोड़ती
0: ना।
1: है। और इन संवादों से स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में ज्ञान और समझ गहरी होती है। भाषा सीखने से लोगों को अन्य संस्कृतियों से परिचित होने का अवसर मिलता है। इससे किसी संस्कृति के अनूठे दृष्टिकोण, बारीकियों और इतिहास, उनके जो इतिहास की जो समझ है वो बढ़ती है और हम विभिन्न संस्कृतियों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करना सीखते हैं
0: क्या बात है। तो यानी कि भाषा हर कीमत पर हमें सीखनी चाहिए, अपनी
1: जी।
0: मातृभाषा के अलावा हमें जितनी भाषाएं हम सीख सकते हो
1: बिल्कुल
0: हमें सीखनी चाहिए। इसके लिए प्रेशराइज नहीं होना, प्रेशर नहीं
1: जी
0: पालना,
1: बिल्कुल
0: लेकिन शौक रखना
1: बिल्कुल,
0: चाहिए
1: अपने
0: कि
1: मन से सीखिए,
0: हाँ।
1: आपको खुद अच्छा लगेगा कि मैं कितने अच्छी तरह से, नए नए शब्द मुझे पता चल रहे हैं, नई नई चीजें किस
0: आपकी
1: तरह से बोल रहा
0: वोकैबुलरी
1: हूं मैं।
0: बढ़ती है, आपका व्याकरण सुधरता
1: बिल्कुल
0: है, आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कहने का दम
1: जी
0: रखते हैं। किसी मंच से जब आप अपनी बात रखते हैं तो वो भाषा ही आपके काम आती है, वो शब्द ही आपके काम आते हैं
1: बिल्कुल
0: और आपकी पर्सनैलिटी को दोगुना कर देते हैं।
1: जी, जब कोई जब कहता है ना कि मुझे इतनी भाषा आती, तो हम सच में एकदम से कहने से कैसे इतनी भाषाएं
0: हाँ,
1: बोल
0: हम
1: लेते
0: चौंक
1: हैं
0: जाते हैं
1: जी।
0: और हमारी दृष्टि में उसके प्रति सम्मान और बढ़
1: बिल्कुल
0: जाता है,
1: बिल्कुल बढ़ जाता
0: देखने
1: है
0: का जो नजरिया है वो एकदम बदल जाता है जब
1: जी
0: हमें कोई बताता है कि वो इतनी भाषाओं का ज्ञाता है। तो
1: बिल्कुल
0: भाषा इतना मायने रखती है जिंदगी में, और
1: जी
0: इस भाषा को शॉर्टकट मत अपनाइए, इस भाषा को विकृत मत कीजिए, है
1: जी
0: ना। भाषा को शुद्ध तरीके से जानिए। हाँ,
1: जी
0: कभी कभार मजाक में हमने कोई शॉर्टकट इस्तेमाल कर लिया वो एक अलग बात है,
1: जी
0: लेकिन भाषा से तोड़ मरोड़ अच्छी नहीं होती है।
1: बिल्कुल
0: तो एक गीत सुन ले।
1: बिल्कुल, सुनते हैं।

0: हाँ, तो मंदाकिनी जी, जब हम जब बात कर रहे थे मधुमक्खियों की, तो उस पे एक शोधा जो है उन्होंने हमें लिख के भेजा है, अपने उनके साथ में जो घटना हुई वो लिख के भेजी है उन्होंने। तो वो लिखती हैं कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, तब मेरा छोटा भाई, जो मुझे लगभग 6 साल छोटा है, मेरे साथ स्कूल में खेल रहा था। हमारे गाँव के स्कूल में पीपल के बड़े बड़े पेड़ थे और उन पेड़ों पर मधुमक्खियों के विशाल छत्ते लगे रहते थे। खेलते समय किसी ने शरारत में एक छत्ते पर पत्थर मार दिया। इसके बाद मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया और मेरे छोटे भाई को कई मधुमक्खियों ने काट लिया, और उसके बाद उसके पूरे चेहरे, हाथ पैर में बहुत ज्यादा सूजन आ गई। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे उल्टियां भी होने लगी। उस दिन का दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मैं अंदर से डर जाती हूँ।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और क्योंकि आपने उनको छेड़ दिया ना, जब आप किसी को छेड़ोगे तो वो भी तो अपना कुछ ना
0: वो
1: कुछ,
0: तो उनको तो लगेगा ना कि हम पे हमला हो रहा है, तो
1: वो भी तो सुरक्षा महसूस करती है ना। इस बात को हम नहीं समझ पाते, हमें लगता है मधुमक्खी तो भी काट लेती है, लेकिन वो क्यों काट रही है
0: जी,
1: उसके पीछे का लॉजिक समझ आए ना, आपने पत्थर मारा और उसने पलट कर बदला ले लिया।
0: बिल्कुल,
1: तो हमें इस बात का बचाव करना है कि पत्थर नहीं,
0: पानी पे भी अगर आप पत्थर मारेंगे तो उछल के
1: आप पर आएगा, आप कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो उछल कर आप पर आएगा। तो ये कहने का मतलब है कि आप कहीं भी किसी भी तरह की कोई शरारत जब करते हैं, प्यारी शरारत करिए, मीठी शरारत जैसे हम करते हैं, लेकिन गलत तरीके से जब हम काम करते हैं तो उसके थोड़े से दुष्परिणाम,
0: और ये बहुत खतरनाक भी हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा काट लिया तो बहुत ज्यादा अगर जहर फैल जाता है ना तो जान भी बनाती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, ततैया होता है, मधुमक्खी होती है, सांप है, इन सब अपना रास्ते जा रहे हैं। अगर आपने इनको छेड़ दिया,
0: बिल्कुल
1: ऐसी ततैया भी बहुत बुरा काटता है, जो पीले रंग का होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं बैठ जाता है और अचानक आकर आप पर हमला कर देता है।
0: बिल्कुल,
1: है ना। तो चलिए भाषा पर हम बात कर रहे थे, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, जीवन मूल्यों और संस्कारों की संवाहक है। हम जिस परिवेश और भाषा में बड़े होते हैं, उसी से हमारे आचरण, शिष्टाचार और सोच का निर्माण होता है। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जुड़े रखती है, सिखाती है कि बड़ों से बात करते समय आदर सूचक शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है।
0: जी, और एक श्रोता, जैसे हमने पूछा था ना कि कितनी भाषा आती है, तो एक श्रोता जो लिखते हैं कि मुझे इंग्लिश, हिंदी और प्यार की भाषा बोलनी, लिखनी और पढ़नी आती है, और सिंधी भाषा सिर्फ बोलनी आती है, संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है, और सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी मेरे से एक कदम आगे हैं, उन्हें इंग्लिश, हिंदी, सिंधी और प्यार की भाषा पढ़नी, लिखनी और बोलनी आती है, और संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है। बहुत बहुत ही ज्यादा भाई ज्ञानी है फिर आपकी पत्नी तो।
1: चलिए अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपने कहा प्यार की भाषा, जो मोहब्बत है ना,
0: बहुत बड़ी भाषा है,
1: सबसे बड़ी बात है। भाषाएं तो आपने सीख ली, लेकिन अगर आपके भीतर प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो सब भाषाएं भी रूखी हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कार, संस्कृति और आचरण का आईना है। ये हमारे विचारों को आकार देती है, हमारे परिवेश और जीवन मूल्यों को दर्शाती है। एक सभ्य और मर्यादित भाषा का प्रयोग ही वास्तव में भाषा से जुड़े संस्कार को दर्शाता है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है।
0: जी, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे हिंदी के अलावा गुजराती और इंग्लिश आती है, और गुजराती सीखना आसान रहा। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत पंजाबी और सिंधी आती है, वैसे 2-3 और भाषा थोड़ी थोड़ी समझ भी सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है, कितने देखिए तभी कह रहे श्रोताओं के विचार है ना, वो विचार इस वजह से भी है कि उनको तरह तरह की भाषाओं का, शब्दों का, व्याकरण का ज्ञान है।
1: बिल्कुल,
0: तो वो जो उनके अंदर चीजें ना, वो विचार सामने आते हैं।
1: बिल्कुल, देखिए यही हम जानना भी तो चाहते हैं कि हमारे श्रोता क्या विचार अपने रखते हैं अपनी भाषाओं को लेकर, अपने विचारों को, जो उनके विचार है जिंदगी में। वही एक श्रोता लिखते हैं कि भाषाओं का संसार अत्यंत विशाल है, विविधतापूर्ण और जीवंत है। वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 7,000 से अधिक जीवित भाषाएं बोली जाती हैं, और यह न केवल संवाद का साधन है बल्कि संस्कृतियों, इतिहास और मानव पहचान को जीवित भी रखती हैं। और बाकी जैसा आपने लिखा कि वो लिखते हैं गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, 2-3 भाषाएं थोड़ी थोड़ी समझती भी हैं और बोलती भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है।
0: जी।
1: बिल्कुल, और
0: एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि भाषा किसी भी समाज की संस्कृति का दर्पण होती है, हमारी मातृभाषा ही हमें बड़ों का आदर करना सिखाती है, जैसे कि आप कहकर बुलाना, छोटों को प्यार देना और अतिथि देवो भव जैसे सामाजिक मूल्य सिखाती है, और साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं और मातृभाषा में जो अपनापन और आत्मीयता होती है वो किसी अन्य विदेशी भाषा में संभव नहीं है। यही जुड़ाव हमें अपनी पारिवारिक जड़ों से बांध कर रखता है, और हमारी भाषाएं विशेष रूप से संस्कृत और हिंदी वेदों, उपनिषदों और पुराणों का ज्ञान समेटे हुए हैं। ये ग्रंथ हमें जीवन जीने की सही कला, नैतिकता और कर्म के सिद्धांत भी सिखाते हैं।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमें किसी भी भाषा के बारे में कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी
0: है। भाषा
1: विदेशी भाषा ऐसी है या देशी भाषा,
0: अगर आपको वो भाषा नहीं

0: आएंगी, तो अगर आपको कहीं बाहर जाना है या
1: हाँ
0: कोई बाहर से कोई हमारे अतिथि आता है तो हम उससे बात कैसे कर पाएंगे?
1: हाँ, चलिए
0: बहुत जरूरी
1: आपको
0: है
1: भाषा नहीं भी आती, आप नहीं भी सीख पाए,
0: जी।
1: लेकिन भाषा भाषा है,
0: जी
1: हमें
0: सर,
1: हर भाषा का
0: भाषा कभी
1: विश्व,
0: बुरी नहीं हो
1: हमें
0: सकती।
1: वैश्विक भाषाएं
0: जी
1: जितनी भी
0: बिल्कुल
1: हैं उन सभी का सम्मान करना चाहिए।
0: जी,
1: एक गाना सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ तो आरती भाई, हमारे श्रोताओं ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात कही कि किस तरह
1: जी
0: से भाषाओं से जुड़े संस्कार हमारे काम आते हैं।
1: जी
0: और इसी के साथ हमने एक और सेगमेंट रखा उनके लिए कि शब्द हमारा और विचार आपके, और आज का विषय था
1: सद्भावना।
0: सद्भावना।
1: तो उस पर भी बहुत सारे हमें कमेंट्स में आए हैं। तो एक श्रोता है जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, शुभ विचार या भलाई की चाह, और इसका मतलब किसी व्यक्ति या समाज के प्रति प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और निष्पक्ष रहने का सच्चा इरादा रखना है जिसमें कोई द्वेष या स्वार्थ ना हो। जी
0: बिल्कुल सही लिखा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सद्भावना यानी अच्छी नीयत, दूसरों के प्रति शुभ भावना और परोपकार। जब किसी व्यक्ति के मन में दूसरों के लिए प्रेम, दया, सहानुभूति और सहयोग की भावना होती है, तो वो किसी का बुरा नहीं सोचकर उसकी भलाई चाहता है, तो उसे सद्भावना कहते हैं। और साधारण बोलचाल में किसी के साथ निष्पक्ष और मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना, जिसमें कोई छल, कपट या द्वेष न हो, सच्चाई और ईमानदारी का इरादा, बिना किसी को धोखा देने के भाव से कोई कार्य करना, इसमें आता है।
1: बिल्कुल। और श्रोताएं जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, अच्छे और उच्च विचार, मन में बसने वाली वो सुंदर भावना है जो प्रेम, सम्मान और अपनापन बढ़ाती है। जहाँ सद्भावना होती है वहाँ रिश्तों में मिठास, समाज में शांति और जीवन में खुशी बनी रहती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज के समय में जहां समाज में

0: विभाजन और असहिष्णुता बढ़ रही है, वहाँ सद्भावना की प्रासंगिकता बहुत अधिक है। ये विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं को आपस में जोड़ने का काम करती है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही परिवार है, इस भारतीय सोच सद्भावना पर ही टिकी है। ये जो भारतीय सोच है इसी सद्भावना पर टिकी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और विवादों को सुलझाने के लिए देशों के बीच में भी सद्भावना का होना अनिवार्य है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ से मुक्त होती है और मानवता, प्रेम, करुणा और भाईचारे को बढ़ावा देती है। सद्भावना केवल एक नैतिक गुण नहीं है बल्कि एक शांतिपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण की बुनियादी जरूरत है। जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तभी समाज का कल्याण संभव है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी तो हमने ये भी जानना चाहा था कि आपके अंदर सद्भावना कितनी है, ये भी बताइएगा। लिखा है हमारे श्रोताओं ने कुछ आरती, ऐसा कोई विचार आया है किसी का?
1: अभी तो सबने यही चीज लिखी है कि सद्भावना के जो अर्थ है
0: वो क्या है। हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना अच्छे विचार, दूसरों के प्रति भलाई की भावना, प्रेमपूर्ण व्यवहार, और ये किसी के मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या, द्वेष या बैर का भाव नहीं रखकर आपसी भाईचारा और सहयोग बनाए रखने की एक स्थिति है। और सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानवीय गुण है।
1: बिल्कुल। एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि जहाँ सद्भावना होती है वहाँ झगड़े कम और प्रेम अधिक होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सद्भावना अपनानी चाहिए। और उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि यदि हमारे पड़ोसी पर कठिन समय आए तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए।
0: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, पर आपने ये नहीं लिखा कि क्या ऐसा कोई कठिन समय आपके पड़ोसी पर आया था और आपने कोई उनकी सेवा की थी, है ना, ध्यान दिया था उनका।
1: बिल्कुल,
0: ये भी लिखते तो हमें अच्छा लगता। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दूसरों के प्रति मन में स्नेह, आदर और सहानुभूति रखना ही सद्भावना है। इसमें जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव के बिना सभी के कल्याण की कामना होती है और समाज में आपसी भाईचारे और शांति को बनाए रखने के लिए ये बहुत मूल्यवान है।
1: जी बिल्कुल। और आप हमें गीत सुन लेते हैं?
0: अब मूल्यवान तो एक गीत ही है
1: जी।

0: हाँ तो आरती, अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी सोपान तक पहुंच चुके हैं और अब हमारे श्रोता क्या कर रहे हैं, व्यंजन की
1: बिल्कुल।
0: प्रतीक्षा।
1: और हम बता देते हैं उनको दाल पीठा की रेसिपी क्या है। तो वो दाल पीठा बिहार और उत्तर प्रदेश का व्यंजन है, जिसमें जो चावल के आटे और दाल आमतौर पर चना, मूंग और उड़द से बनाया जाता है। भाप में पके होने के कारण ये

0: सॉस वर्धक और स्वादिष्ट होता है, उन्होंने बताया इसके बारे में। और इसमें उन्होंने कहा है कि इसे भाप में पकाया जाता है जिसमें तेल या घी का उपयोग ना के बराबर होता है। सर्दियों के मौसम में विशेषकर पौष के महीने में बिहार के घरों में बड़े चाव से बनाया जाता है। पुजही पीठा सिर्फ दाल से ही नहीं, तरह तरह के भरावन, भूनी मूंगफली, तिल, मावा, गुड़, नारियल, इन सब चीज़ों से बनाया जाता है। और इन्होंने जो ठेकुआ है उसकी भेजी है रेसिपी, तो उसमें गेहूं का आटा चाहिए 2 कप, गुड़ 1 कप और बारीक कटा हुआ कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए गुड़, घी मोयन के लिए 3-4 बड़े चम्मच सूखी नारियल, 2-3 बड़े चम्मच बारीक कटा या कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए, और सौंफ 1 छोटा चम्मच, इलायची पाउडर छोटा चम्मच एक होना चाहिए, आधा छोटा चम्मच, और पानी और आधा कप गुड़ पिघलाने के लिए, और फिर तेल या घी तलने के लिए, और आवश्यकता अनुसार बनाने की विधि है। एक गुड़ पहले आप गुड़ का पानी तैयार करें, एक बर्तन में गुड़ और आधा कप पानी डालकर धीमी आंच पर पिघला लीजिए उसको गुड़ को, और चाशनी नहीं बननी चाहिए उसकी, सिर्फ गुड़ को पानी में घुलने देना है और इसे ठंडा होने दीजिए, और फिर छलनी में से छान लीजिए, जो भी गंदा होगा वो निकल जाएगा। आटे का मिश्रण बनाएं, एक बड़े कटोरे में गेहूं का आटा लें, उसमें सूजी कुरकुरेपन के लिए सौंफ, इलायची पाउडर और कसा हुआ नारियल डालें, मोयन डालें। अब आटे में 3-4 चम्मच पिघला हुआ घी डालें, आटे को दोनों हाथों से अच्छी तरह से रगड़ें, जब आटा मुट्ठी में बंधने लगे तो समझ लीजिए मोयन जो है वो एकदम सही है। अब आटा गूंद लीजिए और छने हुए गुड़ के पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर सख्त आटा गूंदना है, इसका मुलायम नहीं होना चाहिए, इसे ज्यादा मुलायम नहीं करना है, और आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाइए और सांचे पर थोड़ा सा तेल लगाकर लोई को दबाएं और मनचाहा डिजाइन बना लीजिए। अगर सांचा ना हो तो हाथ से भी आप कांटे की मदद से भी बना सकते हैं, और धीमी आंच पर तल लीजिए आपका जो तेल में या घी में, तो सुनहरा होने तक तल लीजिए, फिर आराम से निकाल के खाइए।
1: तो आपने इतनी जल्दी में बताया है, मुझे तो भाई आरती बनाना आया ही नहीं है। मुझे लगता है हमारे श्रोता जिनको ठेकू और दाल पीठा बनाना आता है वो आराम से बनाएंगे।
0: बिल्कुल, और रेसिपी आपको वहाँ फेसबुक पेज पर मिली जाएगी,
1: मिल जाएगी, तो बनाने की मैं भी
0: समय
1: कोशिश
0: की कमी
1: करूंगी।
0: की वजह से हमें थोड़ा सा जल्दी है वो
1: बताना पड़ा। तो चलिए अब सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
0: आरती श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार। सखी सहेली की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। लीजिए आप सुनिए आकाशवाणी के दीवाने इस सेगमेंट के अंतर्गत माधुरी कश्यप को।
1: नमस्कार, मेरा नाम माधुरी कश्यप है और मैं बरेली की रहने वाली हूँ। आकाशवाणी के 90 इयर्स पूरे हो रहे हैं, इस बात की बहुत बहुत बहुत सारी बधाइयाँ पूरी टीम के लिए। और अगर इसकी यादों की कहा जाए या इससे जुड़े रहने की कहा जाए, तो मैंने तो बचपन से सुना है, तो ये एक्चुअली बचपन से जो काम आप करो ना, वो आपके हैबिट में शामिल हो जाता है। तो मैंने आकाशवाणी को बचपन से सुना। हमें याद है हमारे पापा के पास इतना बड़ा और इतना चौड़ा सा एक रेडियो हुआ करता था, और जब हम थाने में रहते थे, क्योंकि मेरे पापा पुलिस से हैं, तो फिर वो सुबह स्टार्ट हो जाता था और वो दिन भर चलता था जब तक कि चालू रहता था। उसके बाद जब प्रोग्राम बंद हो जाते तो फिर बंद हो जाता था, फिर उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता था। तो हमें याद है कि उस वक्त मैं, क्योंकि मुझे कुकिंग का बचपन से शौक है, तो कुकिंग की अगर कोई चीजें जानकारी आती तो मैं कॉपी में नोट डाउन करती थी। इवन भजन गीत छंद ये सब मैं कॉपी में लिख लेती थी, ताकि क्योंकि उस समय यूट्यूब वगैरह तो हुआ नहीं करता था, तो यही था एक मनोरंजन का साधन। तो हम ये कॉपी में नोट कर लेते थे, फिर जब कीर्तन वगैरह कुछ होता था तो हम गाते थे। मेरे पास आज भी वो नोट डाउन है। तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट है उससे, और बहुत सारी महिलाओं से रिलेटेड प्रोग्राम की जानकारियां होती हैं, वो भी हमें यहीं से मिलती थी। और आज के टाइम में तो यूथ के लिए काफी अच्छे काम कर रहे हैं, नई नई जानकारियां देना, या बच्चों को किन चीजों से दूर रखा जाए, कौन सी चीजें दी जाए, इस तरह की जानकारियां देना। आज भी मेरे पापा को तो, मतलब अभी भी हमारे घर में एक इतना बड़ा सा, एक आजकल तो नए नए तरीके के आने लगे हैं, तो एक FM है, सुबह से स्टार्ट हो जाता है और जब वो सोने जाते हैं, जब वो सोने लगते हैं, तब जब 11 बजे के आसपास जब बंद होता है प्रोग्राम, तभी उनका वो ऑफ होता है। तो हमको रोज पता चलता रहता है कि आज किसकी ड्यूटी है, क्योंकि आवाज ही पहचान में आने लगी है। तो इसलिए लगातार हम सुनते हैं और हमको बहुत खुशी है कि 90 इयर्स पूरे हो रहे हैं, क्योंकि पहले इतना लोकल FM नहीं हुआ करते थे, तो सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी सुना जाया करता था, और जिसमें महिलाओं के प्रोग्राम आते थे, जैसे ममता सखी, तो उनको बचपन से सुना है, तो उनकी आवाजें, उनका बोलने का तरीका भी एकदम जहन में अच्छे से ताजा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसी तरक्की करता है आकाशवाणी।

0: बहुत सारी
1: मैं अविनाश सिंह जिलाधिकारी बरेली, आप सुन रहे आकाशवाणी बरेली 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे देश में जो जनगणना हो रही है वह दो चरणों में होनी है। उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण, जिसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं, का कार्य चल रहा है, तथा द्वितीय चरण माह फरवरी 2027 में होगी। यह पूर्तियां डिजिटल मोड में होगी। प्रथम चरण की जो अवधि है वो 22 मई 2026 से 20 जून 2026 तक तय की गई है, तथा इसके पहले 7 मई 2026 से 21 मई 2026 तक स्वगणना हेतु तिथि निर्धारित है, जिसमें आमजन स्वगणना से संबंधित पोर्टल पर जाकर स्वयं ही अपनी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा देश में पहली बार स्वगणना की विधि लाई गई है। इसमें कोई भी व्यक्ति सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल पर जाकर बड़ी आसानी से भारत सरकार द्वारा तय किए गए प्रश्नों के संबंध में जानकारी प्रदान कर सकता है। इस प्रक्रिया के अंत में एक ऐसी आईडी जनरेट होगी जिसे दिनांक 22 मई 2026 से दिनांक 20 जून 2026 के मध्य प्रागणक को प्रदान कर जनगणना की प्रक्रिया चंद मिनटों में ही पूरी की जा सकती है। इस प्रक्रिया में प्रागणक द्वारा उन्हें आवंटित हर उस मकान भवन को सूचीबद्ध करना है जिसमें कोई व्यक्ति रहता है या भविष्य में रह सकता है। साथ ही कुल 33 अधिसूचित प्रश्नों की जानकारी भी उसे प्रत्येक परिवार से लेनी है। प्रथम चरण में केवल परिवार से संबंधित जानकारियां ली जाएंगी, जबकि द्वितीय चरण में प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग जानकारी एकत्र की जाएगी। मकान सूचीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा कुल 33 प्रश्न अधिसूचित किए गए हैं, जिनके उत्तर प्रागणक प्रत्येक घर से प्राप्त करेंगे। इस जनगणना के कई फायदे हैं। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही सरकार आम जन मानस को लाभान्वित करने के लिए योजनाओं का निर्माण करती है। इसके आंकड़े क्षेत्र विशेष के लिए भी योजनाएं तय करने में सहायक सिद्ध होते हैं। विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के सीमा निर्धारण, लोकसभा विधानसभा आदि क्षेत्रों के परिसीमन, शहरीकरण, साक्षरता इत्यादि कई पहलुओं में जनगणना के आंकड़े आधार का कार्य करते हैं। मेरा जनपद बरेली के सभी सम्मानित निवासियों से यह अपील अनुरोध है कि अपनी जनगणना स्वगणना के माध्यम से अधिक संख्या में करें, तथा जब प्रागणक आपके घर जाएं तो उन्हें पूर्ण सहयोग एवं बिल्कुल सही सही जानकारी प्रदान करें। आपके द्वारा जनगणना में दिए गए चंद मिनटों का समय आगामी योजनाओं का निर्धारण करेगा। अतः अपना बहुमूल्य समय देकर सभी जानकारियां प्रागणक को दें, जिसके आधार पर सरकार आपके लिए आवश्यक एवं कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण कर सके। जय हिंद, जय भारत।
2: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। कार्यक्रम में आज का विषय है, आज जी भर जीना अच्छा या कल संवारने में लगे रहना। आइए सुनते हैं।
3: साथियों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि कुछ लोग आज को खुलकर जी लेते हैं और कुछ लोग आने वाले कल को संवारने में पूरी उम्र लगा देते हैं। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन एहसासों का, जहां आज जी भर जीना भी जरूरी है और कल को बेहतर बनाना भी। आज साथियों मुस्कुराने ही पाया जो, वो कल की खुशियों का एहसास भी कहां कर पाएगा। तो आइए आज के इस पल को दिल से जीते हैं, संगीत शब्दों और एहसासों के साथ। मैं हूं आपका दोस्त संजय और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। आज के प्रोग्राम में विषय रखा गया है, आज जी भर जीना या कल संवारने में लगे रहना। देखते हैं इस विषय पर हमारे पहले कॉलर कौन है और वो क्या बोलते हैं इस सब्जेक्ट। हेलो।
4: हाँ सर, नमस्कार, वंदे मातरम।
3: नमस्कार, वंदे मातरम, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
4: मैं बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य से बोल रहा हूँ सर, रामचंद्र मखीजा काफिर भाई।
3: अच्छा, तो रामचंद्र मखीजा जी ये कहेंगे कि आज का विषय आपको जानकारी में होगा।
4: जी जी, जीना है अपने को, आज को देख के जीना है क्योंकि कल को हम जानते नहीं कब क्या हो जाए। जिंदगी जो है धूप छांव के संग

0: संगम में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए सुख दुख हो जिंदगी को आज खुशी हंसी से जीना चाहिए, क्योंकि एक पल है तो एक पल नहीं है जिंदगी।
1: क्या बात है रामचंद्र जी, हम भी यही कहेंगे कि कल की चिंता में अगर हम आज खो जाएंगे तो जिंदगी अधूरी सी लगने लगती है ना। अच्छा ये तो बात,
0: जिंदगी
1: जी
0: का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी जो है मौत की अमानत है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, भगवान दे तो देता है लेकिन कब क्या हो सकता, कुछ भी हो सकता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने रामचंद्र जी। और रामचंद्र जी हम आपसे ये भी कहेंगे कि हमने सुना है लोगों को कहते हुए छत्तीसगढ़ के विषय में, सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया, क्या बोलते हैं उसको,
0: छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।
1: तो इस
0: बिल्कुल सही सुना है आपने, क्योंकि यहाँ आपसी समन्वय है, लड़ाई झगड़े की संभावनाएं बिल्कुल नहीं बराबर रहती है, आपस में जो प्रेम भाव से रहते हैं।
1: अच्छा जी रामचंद्र जी, आपके छत्तीसगढ़ का जो लोक नृत्य है, फोक डांस है, वो मतलब बड़े अच्छी अच्छी कॉस्ट्यूम पहन के आर्टिस्ट लोग डांस करते हैं, तो उसके कुछ फोक गीत की कुछ पंक्तियां अगर आपको आती हो।
0: जी जी जी
1: जी बताइए।
0: लोक नृत्य में बहुत बढ़िया अपने गीत हैं छत्तीसगढ़ के।
1: एक कोई
0: इसमें एक बढ़िया गीत आपको बता रहा हूँ।
1: जी बताइए।
0: बैरी बैरी मन मितान हो गए और मोर देश मन हवा बिहान हो गए,
1: इसका अर्थ
0: बनिहार मन किसान हो गए, भारत देश महान हो गए,
1: इसका अर्थ बताइए।
0: और भी है, ददरिया है, और भी कर्मा गीत ज्यादा फेमस है इधर के।
1: जो आपने गाया गुनगुनाया उसका अर्थ बताइए।
0: यानी जो बैरी बैरी मन है वो मितान यानी दोस्त भाई बंधु हो गए, बैर भाव पड़ गया, और जो अपना भारत देश जो है हमारा महान हो गया, छत्तीसगढ़ गीत के इसमें सम्मिलित भाव है ये।
1: अच्छा जी चलिए।
0: जो मजदूर है वो किसान हो गए, यानी इतना संबंध है, प्रेम है कि अपना दो दो पैसे कमा के अपना किसानी कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं।
1: ठीक है रामचंद्र जी, आपने समय दिया, आपका बहुत
0: महानता है यानी छत्तीसगढ़ के, यानी
1: आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो
1: हाँ, आप अपना नाम बताइए, कहाँ रहती हैं ये भी बताइए।
0: जी, मैं रिफा खान बोल रही हूँ, शाहजहाँपुर।
1: रिफा, आप प्रॉपर शाहजहाँपुर में रहती हैं या आसपास गांव में रहती हैं?
0: जी नहीं, शाहजहाँपुर में,
1: शाहजहाँपुर।
0: के पास।
1: आज के कार्यक्रम में विषय है आज जी भर के जीना या कल संवारने में लगे रहना। क्या कहेंगी इस विषय पर आप?
0: जी, हमें जी भर के जी लेना चाहिए, कल का देखना नहीं। जी जैसे हम जी रहे हैं, कल का कोई भरोसा नहीं है हमें, तो अपनी जिंदगी एंजॉय कर लेनी चाहिए।
1: अच्छा, जो कुछ लोग होते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते करते कल का नहीं देख पाते हैं, तो ऐसा क्या कभी हुआ है आपके साथ? खैर, टेक्निकल इशू की वजह से फोन लाइन कट हो गई है। हम इनकी कॉल जरूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। रिफा की हम तो यही कहेंगे कि कल की फिक्र में आज को मत खो देना, जिंदगी मिली है साहब, इसे मुस्कुरा कर जी लेना।

0: हेलो,
1: हाँ जी,
0: आप अपना नाम बताइए।
1: नाम धीरे सिंह चौहान,
0: आप क्या करते हैं?
1: ड्राइवर हूँ, ड्राइवर। जी
0: अच्छा, तो गाड़ी में FM चलता है हमारा, आकाशवाणी बरेली।
1: जी जी जी
0: आज का विषय है, आज जी भर के जी लेना चाहिए या कल संवारने में लगे रहना चाहिए। आप क्या कहेंगे, आपका क्या नजरिया है?
1: जी भर से तो जिंदगी जहाँ तक रहे वो बढ़िया है।
0: और कल की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए क्या?
1: आप प्लानिंग करना चाहिए,
0: क्या प्लानिंग करनी चाहिए बताइए।
1: जिंदगी को कुछ सुधार होना चाहिए।
0: वो तो ठीक है, लेकिन कल की प्लानिंग क्या करनी?
1: कल की प्लान का हिसाब आगे करके रखना चाहिए इंसान को।
0: पैसे वैसे सेव करके रखना चाहिए, है ना?
1: पैसे पैसे तो सर हमेशा लाए करना चाहिए, आज है कल नहीं है। पैसे भी बैंक बैलेंस करना चाहिए, घर
0: अच्छा, और
1: की स्थिति देख के चलना चाहिए, माँ बाप का कहना मानना चाहिए।
0: कुछ कुछ बच्चे माँ बाप के दिशा के अनुसार, दिशा निर्देशन के अनुसार नहीं चलते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे?
1: नहीं, उनकी गलती है सर, ये जो नहीं बोलते पछताते हैं।
0: वीरेश जी से जैसी बात हुई उससे हमें लगा कि वो कहना चाहते हैं कि क्यों ना थोड़ा आज के लिए मुस्कराया जाए और थोड़ा कल के लिए मेहनत भी की जाए।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: नाम बताइए।
1: मैं राम प्रसाद सर बोल रहा हूँ, संपत साहब जी।
0: राम प्रसाद जी, क्या करते हैं आप?
1: मैं हारमोनियम बनाता हूँ ना ब्रायन सर।
0: अरे वाह, तब तो आप स्वरों से खेलते हैं।
1: हाँ सर, मेरा मेरा काम बनाना और बजाना भी, बजाने का भी है मुझे, बनाने का भी।
0: अच्छा, तो राम प्रसाद
1: हाँ सर,
0: जी, आज कार्यक्रम में विषय है आज जी भर के जीना जरूरी है या कल संवारने में लगे रहना जरूरी है, बताइए आप।
1: हाँ तो ये साहब, ये तो जिंदगी का है साहब, आज को भी देखना है साहब, कल को भी देखना है, जिंदगी में सब संभालना साहब, करना है कुछ।
0: अच्छा, तो राम प्रसाद जी, जहां तक मेरा जो मन है, मेरा दिमाग है, वो कहता है कि आपको जीवन का काफी अनुभव है ना? तो जीवन भर आपने क्या क्या किया? क्या कोई मकान बनाया, बच्चों की शादी की, क्या क्या किया आपने, बताइए आप।
1: मैंने साहब सब कुछ करा। मैंने मैंने अपना मकान 1992 में मकान बनाया, फिर अपने बच्चों की शादी की, 2015 में भी लड़की की शादी मैंने करी। मैंने सब कुछ अपना, मेरी उम्र भी हो गई है 65 साल का लगभग है मेरी उम्र, और मेरा जीवन सारा संवारने में लग गया।
0: अच्छा, तो वर्तमान में भी आपने बच्चों की जिम्मेदारियां उठाई और उनके भविष्य को भी देख
1: हाँ,
0: के आपने
1: उसकी
0: जिम्मेदारियां
1: जिम्मेदारियां
0: उठाई।
1: होती है, जब तक इंसान जीवित है साहब, जिम्मेदारियां उसके काम में रहती है साहब,
0: जी
1: जिम्मेदारी
0: जी
1: कभी खत्म नहीं होती है।
0: तो
1: लोग
0: अभी
1: कहते हैं कि हमने शादी कर ली, हम छुटकारा पा गए, तो छुटकारा साहब नहीं मिलता, बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, बेटियां बड़ी हो जाती है, शादी हो जाती है, बेटियां घर आती हैं तो अपने पापा से, घर हुआ से मांग करती है, उनकी मांग पूरी करना पड़ती है
0: हाँ,
1: बच्चों की।
0: मतलब वो हमारा कर्तव्य होता है ना? अच्छा, तो आपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए उनका वर्तमान भी देखा और भविष्य भी देखा।
1: बच्चों का भविष्य बनाना पड़ता है साहब, बिजली अगर किसी बच्चों को अपने की जगह पर पहुंचाना है
0: हाँ
1: तो उन
0: हाँ
1: बच्चों को पढ़ाना भी है, सब
0: जी।
1: कुछ भविष्य को बनाना है उनको, जब तक पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे भी नहीं साहब।
0: अच्छा, राम प्रसाद जी, और क्या कहना चाहेंगे आज कार्यक्रम में?
1: मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जिम्मेदारियां होती है उसको पूरी तरह से निभाए, और अपने बच्चों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं, जब तक बच्चों की जिम्मेदारी अपने पूरी आप पूरी नहीं करेंगे तो बच्चे भी आगे आपसे नहीं बढ़ेंगे।
0: ठीक है, बात हो गई आपसे, रिकॉर्डिंग हो गई आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, आप अपना नाम बताएं, क्या करते हैं ये भी बताएं।
1: डॉक्टर आरबी सिंह बोल रहा हूँ, अल्लाह का जनपद शाहजहांपुर से।
0: अच्छा, तो डॉक्टर साहब, हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि आज जो वर्तमान है उसको जी भर के जीना चाहिए या कल संवारने में लगे रहना चाहिए, आप दोनों विषयों पर बताएं।
1: सर कहने का मतलब है, आज भी प्रयास करना चाहिए और आज जब प्रयास करेंगे तो आज का प्रयास ही कल रंग लाएगा। ठीक
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो
1: है,
0: हाँ, और इसको विस्तार से कुछ आप समझाना चाहें।
1: समझाने का मतलब ये है
0: जी
1: कि मेहनत बहुत है। ठीक है, मेहनत में तो समझौता नहीं करना चाहिए, जब मेहनत करेंगे तभी कुछ आगे बढ़ेंगे, अगर मेहनत नहीं करेंगे बाकी भरोसे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, जब मेहनत करेंगे कुछ ना कुछ मिलेगा।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभी हमने देखा है कुछ लोग मेहनत करने से बचते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
1: नहीं सर, वो तो हम कुछ कहेंगे नहीं उसके लिए।

0: आलसी टाइप लोग होते जो मेहनत करते हैं वो कुछ कुछ लागत जरूर बरतते हैं,
1: जी
0: आज से ही कल समझता है कल।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं डॉक्टर साहब जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें उसका कम फल मिलता है, उनके लिए या उस विषय पर आपका क्या नजरिया है?
0: भाई साहब कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कभी कोई मेहनत करता है फल नहीं मिल पाता है, कभी कोई मेहनत कम करता है फल ज्यादा मिल जाता है, लेकिन फिर भी

0: करा मिल जाता है, लेकिन फिर भी प्यार करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब ये नहीं जैसे कोई काम की आ रही है छोड़ो से नहीं, छोड़ना चाहिए, मतलब साथ उसका चलता रहे। जिसे कहना मतलब ये है
1: जी,
0: जब हम मेहनत करेंगे तो सौभाग्यता ये मान लो आगे ही बढ़ेगा, इसे बनने का चांस ना बराबर है।
1: जी जी जी जी डॉक्टर साहब, आपसे आपके जो विचार हैं वो सुनकर लग रहा है कि काफी आपको अनुभव है जिंदगी जीने का। आपके परिवार में कौन कौन है?
0: बस माता है, पिता है, दो बच्चे, हम हैं
1: जी,
0: और बाकी आपके एफएम बरेली कार्यक्रम सुनते रहे।
1: डॉक्टर साहब कहते हैं कि वक्त बोलता है, जो पल अभी है वही सबसे खास है, क्या कहेंगे आप?
0: नहीं, अभी वो भी खास है, भविष्य वो भी खास। जब अभी हम मेहनत करेंगे अभी वाला ही आगे बढ़ेगा, ठीक है। हम सोचते हैं अभी हम खाना खा लें तो कल क्या खाएंगे, ठीक है। जब अभी हम मेहनत करेंगे तो आगे भी उसी हिसाब हमें भोजन मिलेगा।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही है आपने। अच्छा डॉक्टर साहब, चलते चलते दो पंक्तियां आपके लिए।
0: जी बताएं।
1: कुछ लोग सपने सजाते रहते हैं, कुछ लोग सपने सजाते रहते हैं, और कुछ लोग हर पल को सपना बना लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
0: थैंक यू थैंक यू।

दोस्तों, ये तो फोन कॉल के माध्यम से हमारे श्रोताओं ने जो अपने विचार आज के टॉपिक पर दिए वो थे, और अब थोड़ा सा गाड़ी को मोड़ते हैं और आकाशवाणी बरेली के जो फेसबुक प्रोफाइल पर इसी विषय को लेकर कमेंट आए हैं उनको शामिल करते हैं। नंद कुमार ठाकुर और इनके साथ हैं प्रमिला, प्रियंका और ठाकुर परिवार के सभी लोग। ये रहने वाले हैं चरौदा बार नवापारा अभ्यारण्य, बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ के। कहते हैं कि दोनों जरूरी हैं, सिर्फ आज में जिएंगे तो कल बिखर सकता है, और सिर्फ कल संवारेंगे तो आज हाथ से निकल जाएगा। बेहतर है कि आज को भी जी भर के जिए, लेकिन इतनी समझदारी से कि कल भी समरता रहे। बैलेंस ही असली सुकून देता है। तो साथियों, इन्होंने जैसा कहा बिल्कुल सही कहा, और इस बैलेंस के साथ अगर हम जिंदगी को आगे लेकर चलते हैं तो खुशियां ही खुशियां हमारे पास, आपके पास, सभी के पास आती हैं। कुछ लोग आज की मुस्कान में जीते हैं और कुछ कल के सपनों को सजाने में लगे रहते हैं, लेकिन जिंदगी खूबसूरत तब बनती है जब आज भी मुस्कुराए और कल भी संवर जाए।

100.4 FM आकाशवाणी बरेली से हम आपको सुनवा रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। कार्यक्रम में आज का विषय, जैसा कि आपको मालूम ही है, एक बार बता देते हैं आपको, आज जी भर जीना या कल संवारने में लगे रहना। और इसी विषय को लेकर हमारे कुछ श्रोताओं ने फेसबुक प्रोफाइल पर कमेंट भेजा है। प्रवीण चौहान साहब कहते हैं, कल क्या होगा वो कोई नहीं जानता, हमारे हाथों में वर्तमान है, इसलिए आज जी भर के जीना अच्छा है। तो प्रवीण जी, हम तो कहना चाहेंगे आपसे, आपने जो कहा है वो भी सही है और हम जो अब आपसे कहेंगे वो भी सही ही होगा। वर्तमान में जीने से बहुत सारी खुशियां हमें मिलती हैं, लेकिन जब हम भविष्य की ओर बढ़ते हैं, जब हमारी उम्र बढ़ती है और उस समय हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है और वो हमारे पास नहीं होती है तो बहुत दुख होता है। बस यही सोचते रह जाते हैं कि उस समय अगर हम ये काम कर लेते तो अच्छा होता। खैर, आगे बढ़ते हैं। महेंद्र मोदी साहब ये कहते हैं कि जियो तो ऐसे जियो कि लोग कहें जिया है कोई, मरो तो ऐसे मरो कि लोग कहें मरा है कोई। आज ढंग से जियो तो कल खुद ब खुद समर जाएगा, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। तो महेंद्र मोदी साहब, आपकी इन बातों से, आपकी इस शब्दावली से लगता है जीवन का बहुत सारा अनुभव आपके पास है, आप अनुभव रखते हैं। तो कभी फोन लगाइएगा कार्यक्रम में, आपसे बात करके हमें अच्छा लगेगा।

दोस्तों, कस्बा तिगड़ी शीशगढ़ से शाहरुख खान, अरहम बाबू और किश्वा नूर। आप लोग कहते हैं कार्यक्रम के विषय अनुसार, जीवन को आज जी भर के जीना और कल को संवारने के लिए मेहनत करना, दोनों का संतुलन ही सबसे अच्छा है। बहुत अच्छी बात बोली आपने, कल अनिश्चित है। कहते हैं ये, जो पल आज है बस वही सच है, आने वाला कल कैसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। साथ में ये कहते हैं कि वर्तमान में जीने से तनाव और चिंता कम होती है और आप जीवन की खुशियों को महसूस कर पाते हैं। अगर आप सिर्फ भविष्य के लिए मेहनत करते रहेंगे तो बुढ़ापे में इस बात का मलाल हो सकता है कि आप जीवन जी नहीं पाए। तो शाहरुख खान जी, आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन वर्तमान जीने के साथ साथ अगर भविष्य की भी थोड़ी सी चिंता कर ली जाए तो बुढ़ापा सही से कटता है। बहरहाल, एक और हमारे लिसनर हैं, वो हैं भगवान सिंह यादव साहब, मजरा दौलतपुर आंवला बरेली से। बोलते हैं कि रामायण हमको सिखाती है कि अगर आज हम आनंद से जिएंगे तो आने वाला कल भी आनंदमय हो जाएगा। जिसकी हस्ती जिंदा है तो समझो उसकी मस्ती जिंदा है, नहीं तो आदमी जबरदस्ती जिंदा है। बहुत बढ़िया लिखा आपने, बस आपकी क्रिएटिविटी ऐसे ही हम तक पहुंचती रहे और हम आपकी क्रिएटिविटी को कार्यक्रम में शामिल करते रहेंगे। रघुवीर नगर नई दिल्ली से दिलावर खान और हसीना बानो, साथ में एलिजा नायाब और उनके परिवार के लोग कहते हैं कि हम अपने कल को संवारने के चक्कर में आज को खराब कर देते हैं। आज ही जीना अच्छा है कल के संवारने से। तो रघुवीर नगर नई दिल्ली के जो हमारे श्रोता हैं, उनसे कहना चाहेंगे कि वर्तमान में जीने से अच्छा है, वो भी अच्छा है, वर्तमान में जीना भी अच्छा है, लेकिन भविष्य की चिंता करना भी बहुत जरूरी है। हमें एक टारगेट, एक एम सेट करना पड़ता है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। धीरे धीरे जब हम उम्र पार करते हैं, जब युवा से अधेड़ की ओर पहुंचते हैं, कभी बुजुर्ग बनते हैं, तो बहुत सारी चीजों की हमें आवश्यकता होती है और अगर वो चीजें हमें ना मिल पाए तो बड़ा दुख होता है। अगर हम वर्तमान में जीते समय कुछ एम, कुछ टारगेट अगर हम सेट कर लें जीवन के, तो कोई भी ऐसा कारण नहीं होगा कि हम अपने कल को भी संवार ना पाएं।

0: तो दोस्तों आज के इस प्रोग्राम से बस इतना ही संदेश, कल को बेहतर बनाने की कोशिश जरूर कीजिए, लेकिन आज की खुशियों को कभी मत भूलिए, क्योंकि जिंदगी ना कल में बसती है ना बीते हुए पल में। जिंदगी तो बस इसी खूबसूरत आज में मुस्कुराती है। इसी मुस्कुराहट के साथ मैं संजय आपसे इजाजत चाहता हूँ। फिर मिलेंगे नई बातों, नए एहसासों और नए गीतों के साथ। नमस्कार।
1: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30
2: FM 100.4 MHz यानी आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई न कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareilycbs@gmail.com।
1: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30

साथियों 5 बजे हैं और अब हम आपको बता दें हमारी आज और कल की सभा में प्रसारित तथा रिले होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। अब से कुछ ही देर में यानी कि 5:05 पर हम लेकर आएंगे भजन संध्या। युवाणी में शाम 6 बजे माधुरी लोधी के साथ चर्चा होगी गोल गुंबज किस राज्य में है, साथ ही होगा चक्रव्यूह। कार्यक्रम ग्राम जगत में 6:30 पर आपके साथ होंगे सुरेंद्र पाल और कृष्णवीर। चर्चा होगी आपसी सद्भाव, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर। प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन प्रसारित किया जाएगा 7:31 पर। साथियों कल की सुबह की सभा में 2 बजे तक के कार्यक्रम में 8:15 पर नमस्ते बरेली ब्रजेश तिवारी के साथ। 9 बजे हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। आकाशवाणी के दीवाने इस सेगमेंट के अंतर्गत विनेश कुमार को आप सुनेंगे 10 बजे। 10:05 पर आपकी पसंद होगा और झुमका गिरारे ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 11:15 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग आप सुन सकते हैं 11:30 पर। 12 बजे हम रिले करेंगे FM रेनबो के कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

1 बजे आप सुन सकते हैं अपने ही अनुरोध पर कार्यक्रम अनुरोध गीत। भिन्न भिन्न रसों पर आधारित कार्यक्रम रस रंग होगा 2 बजे। साथियों कल शाम 4 बजे आकाशवाणी दीवाने के अंतर्गत आप सुनेंगे महेश कश्यप को। कल के कार्यक्रम नारी संसार में 5:30 पर आपके साथ होंगी शिप्रा श्रीवास्तव। चर्चा होगी कैसे करें सही कॉस्मेटिक का इस्तेमाल। युवाणी में कल के शाम 6 बजे माधुरी लोधी होंगी और आपसे चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर। साथियों कल के कार्यक्रम किसानवाणी में 6:30 पर आपके साथ होंगे रविंद्र और पूनम। कार्यक्रम में कृषक गोष्ठी आपको सुनवाई जाएगी। ग्राम जगत होगा 7 बजे और 7:31 पर हम प्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। तो ये थी हमारे केंद्र से आज और कल की सभा में प्रसारित तथा रिले होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

भक्ति, श्रद्धा और सुरों की इस पावन संध्या में आप सभी का दिल से स्वागत है, जहां संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम बन जाता है। तो आइए दीपों की इस उजास और भजनों की मधुर रसधार के साथ शुरुआत करते हैं आज की इस सुंदर भजन संध्या का।

मैं अविनाश सिंह, जिलाधिकारी बरेली, आप सुन रहे आकाशवाणी बरेली 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे देश में जो जनगणना हो रही है वह दो चरणों में होनी है। उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण, जिसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं, का कार्य चल रहा है, तथा द्वितीय चरण माह फरवरी 2027 में होगी। यह पूर्तियां डिजिटल मोड में होगी। प्रथम चरण की जो अवधि है वो 22 मई 2026 से 20 जून 2026 तक तय की गई है, तथा इसके पहले 7 मई 2026 से 21 मई 2026 तक स्वगणना हेतु तिथि निर्धारित है, जिसमें आमजन स्वगणना से संबंधित पोर्टल पर जाकर स्वयं ही अपनी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा देश में पहली बार स्वगणना की विधि लाई गई है। इसमें कोई भी व्यक्ति सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल पर जाकर बड़ी आसानी से भारत सरकार द्वारा तय किए गए प्रश्नों के संबंध में जानकारी प्रदान कर सकता है। इस प्रक्रिया के अंत में एक ऐसी आईडी जनरेट होगी जिसे दिनांक 22 मई 2026 से दिनांक 20 जून 2026 के मध्य प्रागणक को प्रदान कर जनगणना की प्रक्रिया चंद मिनटों में ही पूरी की जा सकती है। इस प्रक्रिया में प्रागणक द्वारा उन्हें आवंटित हर उस मकान भवन को सूचीबद्ध करना है जिसमें कोई व्यक्ति रहता है या भविष्य में रह सकता है। साथ ही कुल 33 अधिसूचित प्रश्नों की जानकारी भी उसे प्रत्येक परिवार से लेनी है। प्रथम चरण में केवल परिवार से संबंधित जानकारियां ली जाएंगी, जबकि द्वितीय चरण में प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग जानकारी एकत्र की जाएगी। मकान सूचीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा कुल 33 प्रश्न अधिसूचित किए गए हैं, जिनके उत्तर प्रागणक प्रत्येक घर से प्राप्त करेंगे। इस जनगणना के कई फायदे हैं। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही सरकार आम जन मानस को लाभान्वित करने के लिए योजनाओं का निर्माण करती है। इसके आंकड़े

0: विशेष के लिए भी योजनाएं तय करने में सहायक सिद्ध होते हैं। विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के सीमा निर्धारण, लोकसभा विधानसभा आदि क्षेत्रों के परिसीमन, शहरीकरण, साक्षरता इत्यादि कई पहलुओं में जनगणना के आंकड़े आधार का कार्य करते हैं। मेरा जनपद बरेली के सभी सम्मानित निवासियों से यह अपील अनुरोध है कि अपनी जनगणना स्वगणना के माध्यम से अधिक संख्या में करें तथा जब प्रगणक आपके घर जाएं तो उन्हें पूर्ण सहयोग एवं बिल्कुल सही सही जानकारी प्रदान करें। आपके द्वारा जनगणना में दिए गए चंद मिनटों का समय आगामी योजनाओं का निर्धारण करेगा, अतः अपना बहुमूल्य समय देकर सभी जानकारियां प्रगणक को दें, जिसके आधार पर सरकार आपके लिए आवश्यक एवं कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण कर सके। जय हिंद, जय भारत।
1: जब जब मन अशांत होता है तब प्रभु का नाम जीवन में शांति और विश्वास भर देता है। मर्यादा, प्रेम और सत्य का संदेश देने वाले प्रभु को ये समर्पित भजन

0: भजन अभी और हैं, उससे पहले रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शुक्रवार दिनांक 22 मई को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है गुर्दे की पथरी व पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं और समाधान। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे गुरुवार दिनांक 21 मई को यानी कि कल शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के यूरोलॉजिस्ट एवं एंडोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज कुमार अग्रवाल उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार पुनः सुने, विषय गुर्दे की पथरी व पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं और समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, गुरुवार 21 मई शाम 4 बजे से। हमारा टेलीफोन नंबर है 2517200।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

भक्ति का सबसे सुंदर क्षण वो होता है जब भक्त को महसूस हो कि प्रभु स्वयं उसके घर, उसके मन, उसके जीवन में पधार चुके हैं। इसी भाव को समर्पित ये भजन आइए सुनते हैं।

जीवन की कठिन राहों में जब कोई सहारा नजर नहीं आता, तब इंसान केवल ईश्वर को याद करता है। उसी विश्वास और प्रार्थना से भरा ये भजन आइए सुनते हैं।

ईश्वर पर विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है, और ये भजन हमें उम्मीद और सकारात्मकता का संदेश भी देता है। साथियों, इसके साथ ही हमारा आज की भजन संध्या यहीं पर संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, 5:30 होने को है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम नारी संसार।

गुड इवनिंग, नमस्कार। नारी संसार प्रोग्राम में आप सभी श्रोताओं का, बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं आपकी अपनी रेडियो दोस्त भावना कंचन। कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूं बहुत ही खुश होंगी और प्रसन्न होंगी। बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं जो हमारे आज और आने वाले कल दोनों से ही जुड़ा हुआ है। अगर हम अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो सड़क पर पड़े प्लास्टिक के थैले, नालियों में फंसी हुई बोतलें, कूड़े के ढेर में बिखरा हुआ प्लास्टिक जगह जगह आपको दिखी जाएगा। देखा जाए तो सुविधा का जो ये साधन समझा जाने वाला प्लास्टिक है, आज हमारे पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या बन चुका है। प्लास्टिक का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यह आसानी से नष्ट नहीं होता है। इसके गलने में सैकड़ों साल लग जाते हैं और यही कारण है कि यह मिट्टी, पानी और हवा को प्रदूषित करता है। देखा जाए तो कई बार ये जो प्लास्टिक है, हवा को, पानी को, मिट्टी को प्रदूषित तो करता ही है, साथ ही साथ नदियों और समुद्रों में पहुंचकर जलीय जीवों के लिए भी खतरा बन सकता है। ये कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ जानवर इसे भोजन समझकर खा लेते हैं, जिससे उनकी जान भी जा सकती है। और इतना ही नहीं, प्लास्टिक जलाने से निकलने वाला जो धुआं होता है वो हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। अब समस्या ये है कि जब प्लास्टिक इतना खतरा बन चुका है, तब भी हम जाने अनजाने उसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं। हर पल देखा जाए तो प्लास्टिक हमारे आसपास रहता है। तो इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? एक ही समाधान है कि हमें प्लास्टिक का जो प्रयोग है वो कम करना होगा, लेकिन कैसे?

हम कर सकते हैं कम, ये बात आप हमें बताएंगे अपने कमेंट्स के ज़रिए। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि हमारा जो आकाशवाणी बरेली का फेसबुक पेज है वहाँ पर जाइए, नारी संसार की पोस्ट में हमारा आज का सवाल यही है कि आप किस तरह से प्लास्टिक के प्रयोग को कम कर सकते हैं। तो अपना जवाब वहाँ पर लिखकर भेज दीजिए, हम ज़रूर शामिल करेंगे इस प्रोग्राम में।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बहनों, हम बातचीत कर रहे थे प्लास्टिक के कम इस्तेमाल के बारे में, और जैसा कि हमने आपको बताया कि जो प्लास्टिक है वो मिट्टी, पानी और हवा को प्रदूषित करता है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नुकसान हमारे पर्यावरण को भी पड़ता है। अब देखा जाए तो आप लोगों ने महसूस ही किया होगा कि आजकल गर्मियां तो चली रही हैं और धूप जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है। ऐसे में अगर कहीं सड़क पर निकल जाए तो दूर दूर तक पेड़ दिखाई ही नहीं देते। ये कहीं ना कहीं इसीलिए क्योंकि हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। और वैसे भी गर्मियों में तेज धूप और लू लगने का खतरा सबसे अधिक होता है, और लापरवाही करने पर चक्कर आना, सर दर्द, कमज़ोरी और शरीर में पानी की कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन थोड़ी सी सावधानी अपनाकर हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि तेज धूप से बचें। जो दोपहर का समय होता है, विशेषकर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का बाहर निकलने से बचना चाहिए, और यदि बाहर जाना भी हो तो छाता, टोपी या फिर गमछे का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही साथ हल्के सूती कपड़े पहने, गहरे रंग और मोटे कपड़ों की जगह हल्के रंग के सूती जो कपड़े होते हैं वो शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं और साथ ही साथ आरामदायक भी महसूस कराते हैं। इसके अलावा खान पान का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। गर्मियों में अधिक तेल, मसालेदार और भोजन से बचना चाहिए, बल्कि तरबूज, खीरा, ककड़ी, आम का पना और दही जैसी ठंडी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में शरीर से पसीने के रूप में जो पानी निकलता रहता है, इसीलिए दिन भर पानी, नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी और ताजे फलों का रस लेना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके अलावा बहुत से ऐसे कोल्ड ड्रिंक हैं जिन्हें हम आज कल यानी कि गर्मियों के दिनों में पी सकते हैं, और बहुत ही इस तरीके के पेय पदार्थों की रेसिपी लेकर के हमने बातचीत की है हमारे अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है इनसे मिलिए। तो आइए अब मिलते हैं मोहिनी शर्मा जी से।
5: इनसे मिलिए सेगमेंट में आप सभी श्रोताओं का, बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिनसे आपको मिलवाने जा रहे हैं उनका नाम है मोहिनी शर्मा जी, और जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय बहुत तेज धूप हो रही है, तो आज मोहिनी जी से हम जानेंगे कुछ ऐसे ड्रिंक्स जिन्हें हम अपने घर में आसानी से बना सकते हैं और साथ ही खुद को डिहाइड्रेटेड रख सकते हैं, कूल रख सकते हैं और एनर्जी गेन कर सकते हैं। मोहिनी जी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है।
6: धन्यवाद भावना जी।
5: मोहिनी जी, जैसा कि सबको पता ही है कि बहुत तेज धूप हो रही है, तो ऐसे में आप अपने आप को किस तरीके से बचाती हैं?
6: जब ज्यादा धूप हो रही है, सबसे पहला तरीका है कि जब हम घर से निकलें तो हम चेहरे पे कोई मास्क वगैरह लगा के रखें, अम्ब्रेला लेके निकलें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी का इंटेक हर 15 मिनट में लेते रहें, और इसके लिए कुछ ड्रिंक्स भी हैं जिस तरह से आप अपने आप को हाइड्रेट रख सकते हैं
5: जी।
6: कम से कम जिम करें, ज्यादा एक्सरसाइज ना करें, ओवरलोड ना लें, प्राणायाम करें, हल्का प्राणायाम करें, हल्की

0: एक्सरसाइज करें जी, लूज ड्रेस पहने, ज्यादा टाइट कपड़े ना पहने, और 10 बजे से 4 बजे तक निकलने का परहेज करें, क्योंकि उस समय बहुत स्कॉर्चिंग हीट होती है और तेज धूप होती है, उसमें आप कम से कम निकलने का प्रयास करें। अब जैसे गर्मी है तो गर्मी में आप क्या क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको कई तरह की शिकंजी बताऊंगी जो आप घर पे आराम से बना सकते हैं जी। पहले आप उसका टी मिक्सचर बना के रख लें और उसके बाद आप उसको जिस तरह से चाहें उस तरह से उसको यूज कर सकते हैं जी। आप थोड़ा सा जीरा लें, थोड़ी सी सौंफ लें, सौंफ हमारी बॉडी को बहुत ठंडा करती है। जीरा जो होता है वो हमें डिटॉक्स करता है। ठीक, थोड़ा सा काला नमक लें
1: जी।
0: ठीक है, हल्का सा इनको रोस्ट करने के बाद पीस लें
1: जी,
0: और हल्की सी इसमें हींग डाल लें, रोस्ट हींग को नहीं कर। उसके बाद एक प्री मिक्सचर बना के आप रख लें। आप क्या करें, ये जो आपने प्री मिक्सचर लिया है इसको एक ग्लास में डालें। अगर आप शुगर लेना चाहते हैं तो एक चम्मच शुगर डालें, हल्का सा पानी डालें, नींबू डालें, आपकी एक ये शिकंजी तैयार होगी जो आपको हाइड्रेट कर। दूसरा यही प्री मिक्सचर लें
1: जी,
0: इसमें कुछ पुदीने के पत्ते कूट के डालें, चीनी डालें, पानी डालें, नींबू डालें, आप ले सकते हैं। तीसरी जिसको हम जानते हैं गोंद पतीला, गोंद पतीला का नाम आपने सुना होगा, सब्जा सीड सुना होगा, तो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा ठंडा रखता है। तो क्या करें, ये जो हमने अपना प्री मिक्सचर बना के रखा है जिसमें सोप की क्वांटिटी हमारी अच्छी रहती है, सोप हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा ठंडा रखती है, तो ये प्री मिक्सचर उसमें डालें, थोड़ा सा गोंद पतीला लें जो रात में भी बोली, 4-5 दाने उसके लेके रात में भी बोले, वो फूल के बड़ा हो जाएगा। एक आध घंटे पहले सब्जा सीड भी बोले, फिर वही करना है आपको, एक ग्लास में एक चम्मच प्री मिक्सचर डालना है, एक चम्मच चीनी डालनी है, पानी डालना है, नींबू डालना है, और फिर जो आपने भिगोया हुआ सब्जा सीड रखा था और गोंद पतीला रखा था जो फूल के बड़ा हो चुका है उसको डालें, फिर उसको आप पी सकते हैं। फिर से इसी से प्री मिक्सचर से आप एक और ड्रिंक बना सकते हैं, यही प्री मिक्सचर लें आप। उस प्री मिक्सचर को लेने के बाद इसमें पानी डालें, थोड़ा सा सोडा डालें, नींबू डालें, फिर सोडा शिकंजी आपकी हो जाएगी। इससे आप वाटरमेलन जूस जो होता है जो हमारी बॉडी को बहुत ठंडा रखता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है, आप क्या करें, यही प्री मिक्सचर लें जो आपने बना रखा है, फिर थोड़ा सा उसमें वाटरमेलन को ग्राइंड करके, आपको जूसर में नहीं निकालना है, ग्राइंडर में ग्राइंड करना है, उसका जूस अलग कर लेना है वाटरमेलन का, वो डाला इसमें, हल्का सा नींबू डाला, हल्का सा पुदीना डाला, वो आप ले सकते हैं। ऐसे ही आप मोजैटो बना सकते हैं कई तरह का। मोजैटो में क्या है, आप थोड़ा सा नींबू लें, थोड़ा सा और उसको क्रश करके एक ग्लास में डालें, फिर आपने जो ये पाउडर बना के रखा है उसको डालें, थोड़ा सा चीनी डालें, थोड़ा सा सोडा डालें, और फिर आप अपने आप को डिटॉक्स कर सकते हैं। और सबसे अच्छा है कि जब आप धूप में निकले तो धूप से आने के बाद एक मैं आपको ऐसे ड्रिंक बनाऊंगी जो आम पन्ना जिसे हम लोग कहते हैं, आज जो मार्केट में अभी अवेलेबल हो रही है, अमिया चल रही है, अमिया बोलते हैं हम लोग ना, जो छोटी आमी होती है, वो आप ले लें, 5-6 लें, उनको छील लें, उनको आराम से छीलने के बाद उनकी गुठली निकाल दें, कुकर में उनको डालें और थोड़ा सा पानी डाल के सीटी मार लें। अब सीटी मारने के बाद जब वो ठंडी हो जाए, 5-6 सीटी लेंगे तो बिल्कुल वो मैश हो जाएगी, उसके बाद जब वो ठंडी हो जाए, ठंडी होने के बाद उसको क्रश कर, फिर उसमें पानी डाल के उसको बल्ब को घुमाएं और उसके नीचे से जूस निकल के आपको मिलेगा। ठीक, वो आपने निकाल के एक साइड में रख दिया। थोड़ा सा काला नमक लें उसमें डाल दें, थोड़ा सा जीरा पाउडर लें वो उसमें डाल दें, थोड़ा सा हींग लें वो उसमें डाल दें, और अगर आपको मीठा पसंद है तो हल्का सा पीसी हुई जो चीनी होती है वो उसमें डाल दें। आपके पास पुदीना होगा, पुदीना और धनिया, इनका एक रफ चटनी होती है, मतलब मोटा मोटा इनको पीस लें, पीस के इसका मिक्सचर बना लें, ये उसमें डाल दें जो आपने आम पन्ना बनाया, और जब आप धूप से कहीं लौट कर आए, ये आम पन्ना जो आपने अपनी फ्रिज में बना के रखा है, थोड़ा सा लें, थोड़ा सा इसको डाइल्यूट करें, पानी डालें और इसको आराम से पिए, तो आपको लू नहीं लगेगी, ऊपर से आपके अंदर जितनी भी आपको लग रहा है कि मैं बहुत गर्मी फील कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो वो गर्मी आपकी निकल जाएगी, आप बहुत कूल फील करेंगे अपने आप को। इसी तरह की कई सारी डिटॉक्स ड्रिंक हैं, कई सारी कूलिंग ड्रिंक हैं जो आप पी सकते हैं, बस फोकस इस चीज पे करें कि हम लोग जितना भी लें लिक्विड डाइट में, तला भुला भोजन जो होता है वो कम से कम लें, क्योंकि गर्मी में हमारा मेटाबॉलिज्म रेट जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, जो हमारी पचाने की क्रिया होती है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, इसलिए कम खाएं और लिक्विड से ज्यादा ध्यान दें।
1: जी मोहिनी जी, आपने इतनी सारी ड्रिंक्स बताई, मुझे लगता है हमारी बहनें जो हैं इनमें से कोई ना कोई उनकी फेवरेट तो जरूर होगी और वो उसे बनाएंगी और अपने घर में परिवार में सबको खिलाएंगी भी, और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई और जो आपने हमको सजेस्ट किया है, उम्मीद करती हूँ हमारी बहनें जो इस समय सुन रही हैं आपको उसका जरूर फायदा उठाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो ये तो था हमारा

आज का सेगमेंट इनसे मिलिए, और उससे पहले हम बातचीत कर रहे थे प्लास्टिक के बारे में कि इसका प्रयोग हम कम कैसे कर सकते हैं, और हमने आपसे कहा था आप हमें कमेंट करें। तो एक मैसेज हमारे पास तक आया है प्रवीण चौहान का, जो लिखकर भेजते हैं, प्लास्टिक की थैलियों को, बोतल को जो है कपड़े के थैले और धातु की बोतल से बदल दें, यानी कि प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े के थैले का प्रयोग करें और प्लास्टिक की बोतल की जगह धातु, कांच या स्टील की बोतल का प्रयोग करें। बहुत ही अच्छा उपाय आपने हमें बताया, और आप ऐसे ही हमें कमेंट्स करते रहिए ताकि हम आपके कमेंट को अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकें। फिलहाल तो समय है एक गाने का, तो आइए सुन लेते हैं ये गाना।

बहनों, हम बातचीत कर रहे थे कि प्लास्टिक को किस तरह से कम किया जाए। तो सबसे पहला कदम यह है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक, यानी कि एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक से जो है दूरी बनाना, यानी कि बाज़ार जाते समय प्लास्टिक बैग ले जाने की जगह कपड़े या जूट का थैला इस्तेमाल करना, और पीने के लिए प्लास्टिक की बोतल की जगह स्टील या कांच की बोतल को अपनाना, ये जो कि हमारे कई श्रोताओं ने लिख करके भेजा है। दूसरी चीज़ यह है कि हमें प्लास्टिक से बने कप, प्लेट और स्ट्रॉ का प्रयोग कम करना चाहिए। छोटे आयोजनों में जो है अपने घर में पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ रीयूज़ और रीसाइकिल की आदत डालनी

चाहिए। जो चीज़ दोबारा इस्तेमाल हो सकती है उसे तुरंत फेंकना सही नहीं है। प्लास्टिक के कचरे को अलग करके रिसाइकिल के लिए देना बहुत ही अच्छा विचार है। हमारे पास एक कमेंट आया है किरण शर्मा का विशारदगंज से, जो लिख करके भेजते हैं, प्लास्टिक को नष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम इधर उधर कूड़े में ना फेंकें, बल्कि उसे इकट्ठा करके कबाड़ी वाले को दे दें, जिससे कि वह उसको रिसाइकिल कर सके। और इसके साथ साथ उन्होंने वही सब चीज़ें लिखी हैं कि अपने साथ जो है जूट का या फिर कपड़े का थैला रखें, प्लास्टिक की थैलियों को ना लें। इसके साथ ही साथ वो ये भी कहती हैं कि दुकानदार से पॉलीथीन नहीं मांगनी पड़े, इसलिए अपने बैग में एक थैला अवश्य रखें। अगर आप दुकानदार से पॉलीथीन नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके घर में भी पॉलीथीन कम होगी। अब समय है एक गाने का, तो आइए सुन लेते हैं ये गाना।

बहनों, जब हम बात करते हैं प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने की, तो हमें अपने साथ साथ दूसरों को भी जागरूक करना होगा। स्कूलों में, घर में और समाज में लोगों को ये समझना होगा कि छोटी छोटी जो आदतें हैं वो बड़ा बदलाव ला सकती हैं। यदि हर व्यक्ति ये संकल्प ले कि वो प्लास्टिक का प्रयोग कम करेगा, तो निश्चित रूप से हमारा

पर्यावरण पहले से अधिक स्वच्छ और सुरक्षित बन सकता है। फिलहाल हमारे पास और ज़्यादा वक्त नहीं है कि हम आपसे और ज़्यादा बातचीत कर सकें, लेकिन चलते चलते हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि प्रकृति जो है वो हमें स्वच्छ हवा, पानी और जीवन देती है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी रक्षा करें। जो चीज़ स्वच्छ है उसको स्वच्छ रखें, मैला ना होने दें। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी आदतों में थोड़ा सा अंतर लाएं, यानी कि कोशिश करें कि जो है प्लास्टिक का प्रयोग कम करें, साथ ही साथ आसपास पेड़ पौधे लगाएं ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने कमेंट्स आप भेज सकते हैं, चिट्ठी पत्री के माध्यम से भेज सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। अब अपनी रेडियो दोस्त भावना कंचन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी संसार। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। 6 बजने को है, आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का प्रोग्राम युवावाणी में। और आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी रेडियो दोस्त माधुरी। दोस्तों, आज के समय में पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। बदलता मौसम, पॉल्यूशन और पेड़ पौधों की कमी इन्वायरमेंट के लिए एक बड़ी समस्या है। ऐसे में नेचर को बैलेंस करने में हमारे कई छोटे छोटे जीव हमारी बहुत मदद करते हैं और उन्हीं में से एक है मधुमक्खी। जी हाँ दोस्तों, आज विश्व मधुमक्खी दिवस भी है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मधुमक्खियों के योगदान और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। दोस्तों, ये जो दिवस है वो मधुमक्खी पालन के प्रणेता एंटन जांसा के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, मधुमक्खियाँ केवल शहद बनाने का काम ही नहीं करती, बल्कि फसलों और फूलों के परागण के माध्यम से हरियाली और खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में महाराजगंज और सहारनपुर ऐसी सिटीज़ हैं जो शहद उत्पादन के लिए बेहद प्रसिद्ध हैं। तो ये थी बातें इस दिवस की, और आइए अब सुनते हैं प्यार की धुन में ये खूबसूरत गीत।

0: दोस्तों आइए अब सुनते हैं एमएससी छात्रा से की गई इस खास बातचीत को।
1: आपका नाम?
2: मेरा नाम विनीता, मैं एमएससी माइक्रोबायोलॉजी कर रही हूँ।
1: जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो ये किस तरह से हार्मफुल और यूजफुल होते हैं हमारे लिए?
2: माइक्रोब जो होते हैं वो कुछ हार्मफुल भी होते हैं, कुछ बेनिफिशियल ही होते हैं। बेनिफिशियल जैसे फर्मेंटेड फूड होते हैं, उनके उपयोग में हम माइक्रोब का यूज करते हैं। और हार्मफुल जैसे कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है तो कुछ बैक्टीरिया हमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं।
1: जी, एंटीबायोटिक्स में भी सूक्ष्म जीवों का कोई रोल होता है?
2: एंटीबायोटिक से जो माइक्रोब होते हैं वो खत्म हो जाते हैं जब

0: कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देता है, जैसे पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगा दे या कोई एंटीबायोटिक गोली के तौर पे कैप्सूल देता है, तो उसके द्वारा जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी ग्रोथ नष्ट हो जाती है या इनहिबिट हो जाती है उनकी ग्रोथ। इस तरीके से हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं सूक्ष्म जीवों के लिए कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको हम नष्ट कर सकें कि हमें और इन्फेक्शन ना हो।
1: जी अच्छा, ये बताइए कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या अंतर होता है?
0: ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मेन डिफरेंस पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर का होता है। ग्राम पॉजिटिव में वो थिक लेयर प्रेजेंट होती है और ग्राम नेगेटिव में थिन लेयर प्रेजेंट होती है, और इसको हम आइडेंटिफाई डिफरेंस कर सकते हैं ग्राम स्टेन के द्वारा। जो ग्राम स्टेन करते हैं तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो पर्पल कलर दिखाई देते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो रेड कलर के शो होते हैं, रेड पिंक कलर के। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड प्रेजेंट रहता है, और जो ज्यादातर रेजिस्टेंट होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के।
1: जी, तो इंटर्नशिप वगैरह भी होती है क्या इस कोर्स में?
0: हाँ जी, इंटर्नशिप भी होती है।
1: तो कैसे अनुभव रहे आपके इंटर्नशिप के?
0: अच्छे अनुभव रहे हैं
1: जी अच्छा, ये बताइए कि वायरस और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है?
0: वायरस और बैक्टीरिया में मेन जो डिफरेंस होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो बड़े होते हैं साइज में
1: जी,
0: वायरस के अकॉर्डिंग, और जो बैक्टीरिया होते हैं वो नॉर्मली हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं पर वायरस नहीं होते हैं। वायरस अधिकतर हार्मफुल ही होते हैं हमारी बॉडी के लिए, और जो वायरस होते हैं वो उन्हें जीवित रहने के लिए किसी होस्ट की जरूरत होती है पर बैक्टीरिया को नहीं होती है।
1: तो एमएससी आप कर रही हैं, अगर कोई युवा साथी हमारा इस क्षेत्र में जाना चाहता है तो वो किस प्रकार एडमिशन ले सकता है?
0: एज अ गवर्नमेंट सीट से लेंगे तो पहले एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, और अगर डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। बीएससी बायो से होनी चाहिए।
1: जी, तो इस क्षेत्र को आपने चुना है तो इसमें करियर की क्या क्या संभावनाएं हैं?
0: इसमें हम इंडस्ट्रियल एरिया और हॉस्पिटल वगैरह में हम जॉब कर सकते हैं, एज अ रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं।
1: अन्य ऐसी कोई बात जो आप हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहें तो कर सकती हैं?
0: हाँ, इसका बहुत स्कोप होता है हमारी लाइफ में, और जॉब वैकेंसियां भी काफी मिलती है। कोई से भी मतलब कहीं पे भी जाओगे तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट जरूर होता है, चाहे हॉस्पिटल हो, इंडस्ट्रियल एरिया हो, या कहीं पे भी वैकेंसी वगैरह हो, तो उसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है।
1: जी, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और आकाशवाणी बरेली से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुनी है बातचीत, और अब सुनते हैं प्यार की धुन में ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों अब बारी है सेगमेंट चक्रव्यूह की। चक्रव्यूह में हमारा पहला प्रश्न है, नासा द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या था। साथियों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों, दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया की छत किस पठार को कहा जाता है। हमारा पांचवा प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से ही जाना जाता है। हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो ये थे चक्रव्यूह के आज के प्रश्न, और आइए अब सुनते हैं प्यार की धुन में ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों अब बारी है उन प्रश्नों के उत्तर की जो हमने आपसे चक्रव्यूह के पिछले अंक में पूछे थे। साथियों, पहला प्रश्न हमने आपसे पूछा था, भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है आदित्य L1। साथियों, दूसरा क्वेश्चन हमने आपसे किया था, भाला फेंक स्पर्धा में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है? तो इसका सही उत्तर है नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था दोस्तों, दुनिया के सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1998। साथियों, चौथा प्रश्न हमने आपसे किया था, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है नील नदी। और साथियों, पांचवा प्रश्न हमने आपसे पूछा था, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 61वां संविधान संशोधन। साथियों, अगला प्रश्न हमने आपसे किया था, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसका सही उत्तर है यकृत। और साथियों, हमने आपसे आखिरी प्रश्न पूछा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भारत के किस महान स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? तो इसका सही उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये था चक्रव्यूह, और आइए आपको लिए चलते हैं प्यार की धुन की ओर और सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग।

दोस्तों आप जानते हैं आज के सवाल का जवाब। हमने आपसे पूछा था कि गोल गुंबज कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर है बीजापुर। तो ये था सवाल और जवाब, और अब सुनते हैं ये गीत।

0: ग्राम जगत कार्यक्रम सुनन वारे सब भैया बहन को आपके भैया सुरेंद्र
1: और आपके अपने भैया कृष्णवीर की राम राम, राम।
0: और सुनाओ कृष्णवीर भैया क्या हाल है तुम्हारे?
1: हाल चाल हमारे बहुत बढ़िया हैं और उम्मीद जागरते हैं कि हमारे ग्रामीण साथी भी बहुत अच्छे होंगे।
0: अच्छे होंगे भैया, लेकिन आप देख रहे हैं उसमें कितनी गर्मी पड़ रही है।
1: गर्मी पड़ रही है और गर्मी के संग संग बात यह है कि जगह जगह जब आंधी आई है ना पिछले दिनों, तो खम्बा वम्बा बहुत जगह टूटे हैं। इस चक्कर से कहा है कि विद्युत आपूर्ति भी ठप पड़ी है कई जगह।
0: विद्युत आपूर्ति भी ठप है भैया, और जो हमारे किसान भैया बहन तो खेती बाड़ी में काम करते हैं और अक्सर जो जानवर हैं घर में उनको बहुत गर्मी लगती है, बच्चे हैं बुजुर्ग हैं, तो ऐसे मौसम में जो हमारे भैया बहन है ना खेती बाड़ी को ध्यान तो रख ही है, अपने ध्यान रखें, अपने जानवरों को ध्यान रखें और अपने जो घर में बच्चे हैं बुजुर्ग हैं उनको भी ध्यान रखें।
1: अपना ध्यान आप इस समय कम रख पा रहे हो क्योंकि आवाज आपकी बता रही है और हम सब लोग जो चर्चा करते हैं कि जो ग्रामीण साथी अपनों खूब ध्यान रखें। अब प्रोग्राम करके माधुरी गई हैं, उनकी आवाज देखी कैसे कर रही है
0: भैया तो, आवाज का हम बता मैं आपको गर्मी पड़ी रही बहुत। हाँ। अब आदत है ना जैसे घर से बाहर से कहूँ आप घर में आप तुरंत ठंडो पानी निकालो पी लो, अब ठंडो पानी निकाल को पीनो ही सबसे गलत काम है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: थोड़ी देर आराम से बैठ लो, ताजा पानी पियो, ठंडो पानी फ्रिज को अगर एकदम पी लेंगे भैया तो हमारी तरह स्थिति यही कि बीच बीच खांसी हो जाती है और आवाज देवर कैसी लग रही है फटे बांस की तरह।
1: बिल्कुल तो सही है, ध्यान रखोगे आप ऐसी हम आशा करते हैं और जब स्वास्थ्य को ध्यान रखोगे निश्चित ही चीजें हैं बहुत अच्छी होंगी। अच्छा भैया देखो आज के कार्यक्रम को लेकर हम दोनों ने उपस्थित हैं किसान साथियों के बीच में, ग्रामीण साथियों के बीच में, तो उनको बता दें कि कौन कौन सी जानकारी उन तक पहुंचेगी। तो सबसे पहले एक उनको लोकगीत सुनवाएंगे और बाकी बाद में कृषि गोष्ठी है वो भी उन तक पहुंचाने हैं। एक बातचीत आप भी करके लाए हो रेडियो के संग कामकाज के संबंध में वो भी साथियों को सुनवाएंगे और भी लोकगीत उनको सुनवाएंगे।
0: तो लेकिन बात से पहले कर ले रहे हैं चर्चा आपसी सद्भाव की।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही है आपसी सद्भाव की। अगर जब बात करें जाए कि हम सब लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और देख ही जाते हैं कि बहुत छोटी छोटी बातों पे ही मनमुटाव हो जाते हैं।
0: मनमुटाव का भैया अक्सर जब हम छोटे छोटे हैं गांव में रहते हैं तो एक चीज बड़ा अच्छी लगती है गांव में, जैसे किसी के यहाँ शादी ब्याह है या किसी खेत में काम है, किसी घर का कोई नॉर्मल काम है, या भैया जैसे पहले छप्पर होते ना गाँव में, छप्पर चढ़वाओ ले लो आप,
1: कितने लोग इकट्ठे हो जाएगा,
0: तो पूरा गांव इकट्ठे हो जाते हो कि भैया आज उनको छप्पर चढ़ रहे बिना कहे पहुंच जाते।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन आज के समय में तो भैया कहा है आज के समय में अगर पड़ोस में भी शादी है अगर आपने कही ना है तो वो जाएगा
1: जाएगा ना। सही बात है,
0: तो ये कहीं ना कहीं बीच के जो अंतर हुआ है वो किन्हीं कारणों से जब हुआ है वो कारणों को हमें समझना चाहिए और उनको दूर करना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और वो जो कारण है बहुत छोटी छोटी मानसिकता जब हो जाती है बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर हम लोग मन में वो चीजों को बसा लेते हैं तो बेही चीजें कहीं ना कहीं हम सबको आपस में दूर कर देंगे।
0: सबसे पहली बात भैया छोटी छोटी बात विवाद से बचे। कोई अगर कोई बात कह रही है भैया आपके लिए उन्होंने जहाँ बात कही तो उससे सीधे जाके पूछ लो, उसकी बात को बुरो मत मानो।
1: बिल्कुल,
0: और दूसरी बात भैया ना कि आपस में जब उठोगे बैठोगे मेलजोल से रहोगे तो स्वतः ही प्रेम ऑटोमेटिक उमड़न लग रहे हो। पहले आपने देखी जो हमारे घर के बुजुर्ग है तो मोहल्ला

0: पूरे बुजुर्ग इकट्ठे होकर गांव में बैठ जाते हैं। आज भैया ना बैठ रहे हैं, आज सब अपने घर में पतों का करते हैं, मोबाइल पे भैया रील चला रहे हैं।
1: अब दो चीजें बात सही कह रहे हैं, छोटे बालक बहुत ज्यादा मोबाइल देख रहे हैं, है ना, और जो बुजुर्ग हैं वो भी अपने नाती पोता के संग में कहूँ ना कहूँ मोबाइल देखने में बिजी अब होने लगे हैं।
0: लेकिन भैया इस चीज को छोड़ें और अपनी जो पुरानी परंपरा ही उसको निभावें।

0: पर ही उसको निभावे, जैसे एक दूसरे के काम में पहले आते हैं वैसे ही काम में आवे, एक दूसरे को साथ निभावे, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म को क्यों ना हुआ। अगर उसके घर में किसी प्रकार का काम है कि इस काम को 10 लोग इकट्ठे होकर करेंगे, तो उसको वहां पर पहुंचना चाहिए और पूरा पूरा सहयोग करना चाहिए।
1: बिल्कुल, बात सही है आपकी। तो सुरेंद्र भैया, अब अपनी जो बातचीत है हम बाबू विराम दे रहे हैं और साथ इनको सुनवा रहे हैं कृष्णा कुमारी माथुर के स्वर में एक मधुर लोकगीत।

0: यही ब्रज धाम है,
1: यही ब्रज धाम है। हमारे भैया बहन सुन रहे लोकगीत कृष्ण कुमारी माथुर की आवाज में। तो कृष्ण भैया देखो जो तो लोकगीत हो और अब अपने भैया बहन का सुनवा रहे हो,
2: अब सुनवा रहे हैं उनको कृषि गोष्ठी। और कृषि गोष्ठी में शामिल हुई हैं हमारे आज के कार्यक्रम में महिला कृषक श्रीमती मिथिलेश और श्रीमती सावित्री, और इनसे बातचीत करी है पूनम ने।
1: और जागो विषय है भैया महिला उद्यमिता एवं महिलाओं के विकास।
3: भैया बहनों, आज हमारे साथ बहनें जुड़ी हैं जो बताएंगी कि उद्यमी हमारी जो बहनें होती हैं, ग्रामीण बहनें उद्यमी कैसे बने, तो उस संबंध में आज हमारी बातचीत होगी बहनों से। तो हम जानते हैं आपका नाम क्या है?
4: मिथिलेश।
3: आप?
4: सावित्री।
3: तो आज कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद।
4: धन्यवाद।
3: आप दोनों बहनों से हम ये जानना चाहेंगे कि हमारी बहुत सी बहनें ऐसी होती हैं जो अपने घर पे रह कर ही बहुत से काम कर लेती हैं, तो क्या आप भी ऐसे कोई काम करती हैं?
4: हाँ, करते हैं।
5: हाँ, हमारी दुकान है, कॉस्मेटिक की दुकान खोल ली घर में, उसी से अपना मतलब खर्चा पानी करती हैं, बचत है मतलब थोड़ा बचा के रखती हैं, और जो पैसे होते हैं उसको थोड़ा सामान ले आती हैं और अच्छा। काम करती हैं।
3: तो और आप सावित्री जी, आप क्या करती हैं?
4: जिंदे पालते हैं।
3: अच्छा, कितनी भैंसे हैं आपके घर पे?
4: चार हैं, दो दूध दे रही हैं।
3: तो ये सब बातें तो आपने करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आप हमें ये बताइए कि आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है?
5: हाई स्कूल तक।
3: अच्छा, तो कब की थी आपने पढ़ाई लिखाई? कितने दिन हो गए लगभग पढ़ाई लिखाई छोड़े हुए?
5: काफी साल हो गए, 13 साल तो शादी को ही हो गई।
3: अच्छा, 13 साल शादी को हो गई, तो आप तो
5: 15-16 साल हो गए छोड़े हुए।
3: तो इतने दिनों से आप घर गृहस्थी में रह रही हो, तब तो आपको घर गृहस्थी का बहुत अच्छा अनुभव होगा।
5: हाँ।
3: तो आप हमें बता रही थी कि आपकी कॉस्मेटिक की दुकान है।
5: हाँ, कॉस्मेटिक की दुकान है।
3: अच्छा, कितना लाभ हो जाता है आपको उसमें, कितना फायदा हो जाता है?
5: हो जाता है, खर्चा पानी अपना आराम से चलता रहता है, थोड़ा बहुत बचत भी हो जाती है। अच्छा। जो बचत हो जाती है वो अपने खाते में जमा कर देते हैं।
3: अच्छा, खाते में जमा कर देते हैं। तो कितने दिन हुए लगभग आपको जब दुकान खोले हुए?
5: 2-3 साल हुई है।
3: अच्छा, तब से आप यही काम कर रहे हैं?
5: हाँ हाँ, अचार उचार भी डाल के बेचती हैं।
3: अच्छा, तब तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतने सब काम करती हैं। हमारी ग्रामीण बहनें या फिर हमारी बहुत सी बहनें, चाहे ग्रामीण हों चाहे शहरी हों, उन बहनों को बहुत से ऐसे लाभ हैं जो सरकार द्वारा भी मिलते हैं। हाँ, और ये भी काम
5: समूह से पैसा लिया था हमने, तो मोमबत्ती का काम शुरू किया था। अच्छा। उससे, हाँ, उससे भी लाभ हुआ था, उसकी किस्त जमा करते रहे समूह की और अपना भी खर्चा पानी करते रहे।
3: तो कितने दिनों से आप समूह का काम
5: हो गए? 4-5 साल।
3: मतलब समूह से आप कब जुड़ी थी?
5: हो गए 3-4 साल।
3: अच्छा, तो उसमें कैसे जमा करने पड़ता है रुपया?
5: उस पे महीने पे होते हैं 100 रुपए।
3: अच्छा। हाँ। महीने पे होते हैं? हाँ। 100 रुपए।
5: हाँ।
3: बहुत अच्छी बात है। तब तो कितने लोग जुड़े होते हैं एक समूह में?
5: हमारे समूह में 10 लोग जुड़े हुए हैं।
3: अच्छा, तो आप समूह में कोई पद पर हैं? अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, कोई?
5: सचिव बने हुए हैं।
3: अच्छा, सचिव हैं। तब तो आपको उसमें और भी काम करने हो तो होंगे?
5: नहीं, जो मेन है सदस्य वही काम करते हैं।
3: अच्छा, आप और कोई काम ना देख रहे?
5: ना, ना, और कोई काम?
3: तो आप जहाँ रहती हैं जिस हाँ। जगह पे, उस वहाँ पर कोई समूह सखी भी है?
5: हाँ, समूह सखी है। अच्छा। रेखा नाम है उनका। अच्छा, समूह सखी है।
3: तब तो उनको भी रोजगार मिल गया?
5: हाँ, हाँ, उनको भी मिला है।
3: बहुत अच्छी बात।
5: उन्होंने बहुत सारे समूह खुलवाए हमारे गाँव में।
3: अच्छा, उन्हीं ने खुलवाए।
5: हाँ, हाँ।
3: तो वो मीटिंग वीटिंग करवाती हैं आपकी, जो समूह की मीटिंग
5: करवाती हैं? कभी कभी होती है मीटिंग।
3: और कोई ऐसी जानकारी जो समूह के द्वारा आपको मिलती हो, जैसे आप बैठक करवाती होगी तो? हाँ, कोई जानकारी मिलती है?
5: जो मतलब कोई फायदे की बात होती है तो मीटिंग में बताई जाती है।
3: अच्छा,
5: इससे मतलब ये फायदा लाभ होगा आपको, ये सब बताती हैं। नौकरी वगैरह भी मिल जाती है समूह की तरफ से, अगर वो करो तो। बैंक सकी है, समूह सकी है, मतलब और भी नौकरी निकलती जाती, मिल जाती समूह से जुड़ी हुई।
3: तो सावित्री जी, आप भी बता रही थी कि आप जानवर पालती हैं, तो कितने दिन हो गई आपकी जो भैंसें?
4: 2-3 साल हो गई।
3: अच्छा, तो आपने

0: किस तरह से इनको खरीदा था, मतलब क्यों सोचा आपने कि हमें जानवर खरीदने चाहिए?
1: खर्चा चले, ऐसे बाली बच्चे दुखी नहीं रहे, अपने खुश रहे, सब खर्चा पानी के लिए ऐसे है तो ले लो, कोई भी चीज की जरूरत पड़े तो।
0: हाँ जब बात तो सही है। तो आपकी जो जानवर हैं बेका दूध दूध दे देता है?
1: हाँ हाँ दूध देते हैं, बेचते भी हैं।
0: अच्छा कितनों कितनों दे देती हैं?
1: एक देती है 2 किलो, एक देती है 4 किलो।
0: अच्छा
1: दो किलो वाला जैसे रहन देते हैं, 4 किलो बेच देते हैं, जैसे बच्चे उच्चे पी लेते हैं, कभी मठा भी चला लेते हैं।
0: जब बात तो सही की आपने की थोड़ छोड़ देती हैं।
1: हाँ हाँ
0: तो मठा भी चलाती हैं?
1: हाँ मठा भी चलाते हैं।
0: तो इन दिनों में आप छाछ उछ बना खूब पीत होगी?
1: और खूब पीते हैं, जैसे कड़ी भी बना लेते हैं, रोते भी बना लेते हैं।
0: काय का को रोते बना लेती हैं? अच्छा
1: लौकी का बनाते हैं।
0: अच्छा खीरा उरा को भी बना लेती हैं कुछ महीने?
1: खीरा का हमने अभी नहीं बनाया है।
0: अच्छा अच्छा तो बूंदी और लौकी को ही खाती हैं?
1: हाँ
0: चलो बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसे करके अपने घर में जो जानवर हैं,
1: जैसे जो अपने घर में सब लोग खा लेते हैं वही चीज अच्छी लगती है बनाती हुई।
0: अच्छा तो आप हमें ये बताइए कि आप भी क्या समूह से जुड़ी हुई हैं?
1: हाँ समूह से।
0: जैसे हमारी ये बहन बता रही थी कि ये समूह से जुड़ी हुई
1: हैं। हाँ हाँ हम भी हैं समूह से जुड़े हुए।
0: अच्छा कब जुड़ी थी आप समूह से?
1: जब हमने जो जिंगरे लाए थे तभी जुड़े।
0: अच्छा तो कितना फायदा मालूम पड़ता है आपको समूह में?
1: यही फायदा है, अब जरूरत पे कोई भी चीज की जरूरत पड़ रही है तो पैसा निकालो ले लो।
0: अच्छा
1: और इसमें जुड़े भी नहीं होते तो कहाँ टपटपाओ, जैसे आदमी काम करता है तो वो खर्चा ही पानी होता रहा है इसमें।
0: हाँ,
1: जाए
0: वो बात तो सही है।
1: और दोनों लोग वो बाहर करते हैं, अपने घर में करते रहते हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही कही आपने कि वो बाहर करते हैं। आप तो आप इन जानवरों के साथ साथ खेती बाड़ी भी करते?
1: हाँ,
0: हैं
1: धान गेहूँ करते हैं सीजन के हिसाब से।
0: अच्छा तब तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतने सारे काम करती हो और उनके संग संग आप
1: जानवर
0: भी पालते
1: करवा लेते हैं। जैसे वो घर खेती में काम होता है, अब धान होंगे तो धान में पौधों है जे भी सब काम करवाते हैं।
0: अच्छा तब जे कहो आपको खूब अनुभव है खेती बाड़ी को।
1: हाँ हाँ
0: तो ये जानवर भी आपने का समूह के द्वारा ही खरीदे हैं, मतलब समूह से रुपए?
1: हाँ, समूह से ही पैसा निकाल के तभी खरीदे।
0: अच्छा तो इनको कैसे ध्यान रखती हो जब गर्मी के मौसम में? बहुत ध्यान रखने होता है घर के जो जानवर हैं।
1: सुबह शाम जैसे कारी जिंगरे हैं, इन्हें गर्मी बहुत लगती है तो सुबह शाम नहवा जाते हैं।
0: अच्छा
1: टाइम से सानी करी जाती है सुबह को दोपहर में, और जो दूध वाले हैं इसे तो ज्यादा ही ध्यान रखे जाता है।
0: तो बहुत अच्छी बात है कि ज्यादा ध्यान रखती हूँ। ज्यादा ध्यान को मतलब कितनी बार उन्हें सानी उनी कर देती हूँ और का खिला रही हूँ ऐसे जिससे कि वे ज्यादा दूध दें, मतलब दूध में बढ़ोतरी हो?
1: चोकर खवाते हैं, सानी करते हैं, जैसे गाड़ी गाड़ी जैसे उससे ठंड होती है उन्हें तो ऐसी दे दो, और गाभिन होती है उस पे ज्यादा ध्यान देता है, वह हिसाब से दूध देगी, जैसे खवा लो वैसे ही दूध देगी।
0: अच्छा तो कितने दिन पहले से हम खवाना चाहिए अपनी गाभिन भैंसिया को?
1: सुबह गाभिन जैसे एक महीना रह गया तो वापस ज्यादा ध्यान दो।
0: अच्छा काका खिलाती हूँ, फिर जब देखती हूँ कि आप की थोड़े बहुत दिन रह गए हैं तो
1: गेहूँ खिलाते हैं। अच्छा, दलिया
0: बनाकर?
1: हाँ हाँ।
0: किस प्रकार से खिलाती हूँ, नमकीन मीठो या फिर?
1: नहीं नमकीन खवाते हैं।
0: अच्छा, तो कितनों कितनों खिला देते होगी मतलब एक बार में?
1: एक बार में ऐसे 1-2 किलो, ज्यादा भी तो नुकसान देगा।
0: अच्छा और कोई चीज तो ऐसी ना खिलाती हूँ अपने जो दूध देने वाले जानवर हैं? आपने बताई कि दूध देने वाले जो जानवर हैं तो
1: नहीं, उसे सानी भी और जैसे चरी बह लेते हैं, बरसीन बह लेते हैं तो वो खवाते हैं।
0: अबे हरे चारे में का दे रही हैं?
1: अभी तो चरी है।
0: अच्छा
1: चरी खवाते हैं।
0: तो कितनी कितनी मिले देती हूँ एक बार में?
1: एक पल्ला घुस मिलाते हैं, एक पल्ला चरी मिलाते हैं।
0: अच्छा और ऊपर से चोकर डालती
1: हूँ? चोकर डाल देते हैं।
0: चोकर का भिजे के खिलाती हूँ?
1: पहले भिगा देते हैं जैसे आधे घंटा पहले, तो उसके बाद सानी कर देते हैं।
0: अच्छा।
1: और सानी तो जब ही करते हैं जैसे हरियाई नहीं होती है तो बचत के लिए, जैसे हरियाई होती है तो बचेगा तो सानी नहीं करते हैं, अब हरियाई होती है तो ही नहीं करते हैं, अब बच जाएगा अगली बार को हो जाएगा।
0: हाँ जी बात सही है कि आगे अगली फेरा को हो जाए। हाँ। तो आपके जानवर अच्छे से दूध देते हैं?
1: हाँ हाँ सही दे
0: तो
1: रहे हैं।
0: उनके जो लवारे हैं यानी कि जो छोटे जानवर हैं उनको कैसे ध्यान रखती हैं जो गर्मी के मौसम?
1: पानी पिलाते हैं और हंधवाते हैं यही ध्यान रखते हैं।
0: अच्छा छाया हुआ को भी विशेष ध्यान रखने होता है घर के जो जानवर होते हैं उनको? फिर पेड़ उड़ के नीचे बांध देती हैं या फिर कहीं पे छबो वो आप?
1: नहीं हमारा खेत है वहाँ आम के पेड़ है, वहाँ छाई में बांध देते हैं। अच्छा। वहीं भी जैसे सानी ले जाते हैं दोपहर में कर देते हैं।
0: अच्छा।
1: शाम को लाते हैं बांधने के लिए गर्मी की वजह से।
0: तब तो बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं अपने जानवर को। साफ सफाई किस प्रकार से करती हैं उनके नीचे की, मतलब झाड़ू उड़ू कितनी बार लगा देती हैं?
1: झाड़ू तो कई बार लगाते हैं जब जाते हैं, जैसे हम अंत रहते हैं और जिंगरे अंत बनते हैं तो जब जाते हैं तो झाड़ू लगा के आते हैं, जैसे मच्छर भी ना लगे, साफ सफाई रहा तो बेबी खूब कोई दुख परेशानी नहीं हो।
0: अच्छा बहुत से ऐसे लोग होते हैं, मतलब बहनें होती हैं कि जो अपने जानवर होता है उनकी जो शाम को घर के इनको लोगों को कितने मच्छर लगते हैं आपको पता है?
1: जितनी भी गंदगी होगी उतने ही मच्छर लगेंगे।
0: हाँ तो आप कैसे ध्यान रखती हूँ कि आपके जो जानवर हैं उनको मच्छर ना लगे? जैसे रात में, दिन में तो आप बाहर बांध देती हैं उन्हें आपने बताया,
1: कई बार उठते हैं रात में धुआं करते हैं कंडा सुलगाते हैं।
0: अच्छा।
1: तो जब आँख खुलती है तो धुआं कर देते हैं। अच्छा। मच्छर नहीं लगे।
0: तब तो बहुत अच्छी बात है कि इतने अच्छे से आप उन सबको ध्यान रखती हैं और अच्छे से काम भी करती हैं। अच्छा आप क्या आप भी जानवर पालती हैं?
2: हाँ, हमारे घर

0: भी
1: अच्छा, कितने जानवर हैं आपके घर पर?
0: हमारे घर पे दो
1: दो हैं। अच्छा, तो काका है?
0: एक भैंस है और एक बड्डा है।
1: अच्छा, तो वो दूध
0: भैंस
1: दे रही
0: हाँ
1: है?
0: दूध दे रही है,
1: कितना दे देती है?
0: दे देती है 6 लीटर,
1: अच्छा,
0: 3 लीटर सुबह को 3 लीटर शाम
1: तब
0: को।
1: तो सही दे देती है।
0: हाँ
1: तो फिर काका आपका ध्यान रखती हूँ? जी बहन तो हमारी बता रही है कि जो चोकर वोकर खिलाती हैं, लेकिन आप
0: हाँ
1: चोकर से अलावा कुछ खिलाती हैं? जैसे कुछ लोग हमने देखी है कि पॉलिश उलिश भी खिलाते हैं।
0: नहीं पालिश नहीं, गाभी नहीं, हमारी भैंस तो पालिश नहीं खिलाते हैं उसे अभी।
1: अच्छा
0: हाँ तो उसे चोकर से सानी करते हैं, और चरी है खेत में, चरी खिलाते हैं और उसे नहवाते हैं उसे तीनों टाइम, और धुलाई उलाई करते हैं उसके जहाँ वह रहती है सुबह
1: हाँ
0: शाम,
1: वहां पर सफाई
0: जैसे
1: करते
0: हाँ
1: हैं।
0: गंदगी ना रहे, मच्छर काटते हैं ना गंदगी रहे तो।
1: हाँ, तो मच्छर के लिए रात में
0: हाँ
1: फिर
0: हाँ
1: बचाव के लिए क्या करती हैं?
0: धुआं करते हैं मच्छर के लिए,
1: अच्छा, धुआं कर
0: हाँ
1: देती
0: कंडस
1: हैं।
0: लगा देती हैं।
1: बहुत अच्छी बात है कि आप इतने अच्छे से दोनों बहनें ध्यान रखती हो, वो भी अपने जानवरों का ध्यान रखती हैं, आप भी अपने जानवरों का ध्यान रखती हैं। लेकिन हमारी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो कुछ लापरवाही कर देती हैं, जैसे कि बारिश के मौसम जब होता है, अभी तो ऐसा मौसम ना है लेकिन जब होता है, तब घर के जानवरों के टीका लगना बहुत जरूरी होता
0: हाँ
1: है कि बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे
0: टीका
1: आपने।
0: लगाने आते हैं हमारे गांव में
1: अच्छा,
0: जानवरों के,
1: तो
0: मैं भी
1: ध्यान
0: लगा
1: रखती
0: देती
1: हैं
0: हूँ।
1: आप
0: हाँ
1: कि
0: हाँ
1: उनको टीका हमें लगवाना
0: हाँ
1: चाहिए?
0: लगवाने में लगा के जाती हैं।
1: अच्छा, और सावित्री जी आप लगवाते हैं अपने जानवरों
0: हाँ
1: के टीका?
0: लगवाते हैं।
1: अच्छा, तब तो बहुत अच्छी बात है कि गांव में ही लग जाता है या
0: हाँ
1: फिर
0: गांव
1: लेके
0: में
1: जाने पड़ता
0: नहीं,
1: है?
0: गांव में आ जाते हैं
1: अच्छा
0: सरकार की तरफ से, जिसे लगा देते
1: हाँ,
0: हैं।
1: तो उसमें तो कोई खर्चा ना होता है,
0: नहीं
1: वो
0: नहीं
1: तो आराम से ही लगा चले
0: और खुद
1: जाते
0: ही
1: हैं।
0: हम भी ध्यान रखते हैं, जैसे मच्छर उच्छर लगे ना तो धुआं करते रहते हैं। वे तो टाइम से ही आएंगे
1: हाँ
0: और
1: वो तो
0: हम तो
1: टाइम
0: देख
1: से।
0: ही रहे हैं कैसे रह रहे हैं, अब तो अपने ही ऊपर है तो देखेंगे ही,
1: हाँ, बहुत अच्छी बात
0: और
1: आपने
0: सामने होंगे
1: बताई
0: तो देख भी नहीं मिलेंगे।
1: कि उनको अगर हम अच्छे से ध्यान
0: हाँ
1: रखेंगे तो वे सही सही रहेंगे। तो हमारी बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हम अपने जानवरों के तो करने ही होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप बता रही कि आप खेती बाड़ी भी करती
0: हाँ
1: हैं,
0: हाँ खेती बाड़ी
1: तो
0: करें।
1: मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें उगाती हैं? अभी कोई फसल ऐसी है जो लगी हुई है आपके खेत में?
0: नहीं अब पौध पड़ रही है,
1: अच्छा,
0: तिधान होंगे
1: तो सिर्फ धान ही करती
0: ना,
1: हैं?
0: धान भी करते हैं तो गेहूं भी कर लेते हैं, और
1: धान
0: जैसे
1: भी
0: खान
1: होती
0: के
1: है
0: लिए
1: सुबह
0: जैसे
1: को?
0: थोड़ी बीच में घुईया है, साग है, भिंडी है, ऐसी सब चीज कर लेते हैं अपने खाने के लिए।
1: अच्छा, तो अभी ऐसी कोई सब्जी है जो आपने लगाई है?
0: हाँ घुईया है
1: घुईया है।
0: अभी, और थोड़ी तुरैया भी हैं।
1: अच्छा, तो घुईया कब लगाई?
0: घुईया तो 2 महीने पहले लगी।
1: मट्टी उट्टी चढ़ाने पड़ती है
0: हाँ
1: कबाम?
0: हाँ नराने पड़ती है उसमें, मट्टी चढ़ाने पड़ती है, और भराई भी जल्दी जल्दी होती है हर तीसरे दिन।
1: अच्छा, तो आप भी लग रही है खेती करती हो खूब?
0: नहीं ये थोड़ी बहुत कर लेती हैं, वैसे तो
1: अच्छा
0: धान गेहूं होते हैं हमारे खेत
1: अच्छा
0: में,
1: नहीं
0: खाने के
1: हमारे
0: लिए हो जाती है खाली, घर में
1: हमारी
0: तो
1: कुछ बहनें ऐसी
0: खर्चा
1: होती
0: पानी
1: हैं
0: के लिए
1: जो
0: अपने।
1: जैसे थोड़ी बहुत जगह में
0: हाँ
1: अपने
0: हाँ
1: खान
0: थोड़ी
1: के
0: सी
1: लिए सब्जियां कर लेती
0: हाँ,
1: हैं,
0: तो
1: या
0: ऐसी
1: कोई
0: तो कर जाती घुईया है,
1: है,
0: जैसे
1: मिर्च के
0: बाजार
1: पेड़
0: जाने नहीं
1: वगैरह
0: पड़े
1: हैं
0: तो
1: जो
0: जो
1: गाड़ी
0: पैसे
1: हैं।
0: अपने बचेंगे।
1: तो आप बताइए कि आप बता रही थी कि हम भी
0: हाँ
1: कुछ
0: हमारे खेत
1: फसलें
0: में,
1: उगाते
0: हाँ
1: हैं, जैसे थोड़ी थोड़ी आप कर लेती हो, तो कौन कौन सी
0: हमारे
1: फसलें इस
0: खेत
1: समय
0: में
1: पे?
0: घुईया है, हरी मिर्च है, बैगन है, तुरई है, लौकी है,
1: अच्छा,
0: ये
1: तब
0: सारी
1: तो
0: चीजें
1: आपने
0: हैं।
1: बहुत फसलें लगा रखी
0: हाँ
1: हैं,
0: थोड़ी
1: मतलब
0: थोड़ी
1: बहुत
0: सब्जी
1: सब्जियां लगा रखी हैं, तब तो बाजार भी ना जाने पड़ते हैं।
0: ना, अभी तो आ नहीं रही है, कम आ रही है, से सूढ़ी बैगन खराब हो गए हैं, इसका आने वाला
1: हाँ
0: दवाई लगाई तो अभी बैगन आ नहीं रहे हैं।
1: अच्छा, तो
0: और
1: ये सब सब्जियां आप लगाती कैसे हो? जैसे अगर बैंगन की बात करें तो बैंगन कैसे
0: उसकी
1: लगाती
0: बेड़
1: हैं?
0: गाड़ी जाती है,
1: अच्छा
0: बेड़ ला के मोर वो गाड़ी
1: हाँ,
0: जाती है,
1: तो खेत कैसे तैयार करती हो? कितनी फेरा
0: खेत
1: जुतवा उतवा लेती हो
0: दो
1: वाको?
0: तीन बार जुतता है, फिर उसमें खाद डालो तभी बेड़ लगा
1: अच्छा,
0: दो।
1: देसी घूरो?
0: हाँ देसी हीरो
1: तो
0: गोबर की खाद।
1: फिर बाको गाड़ती हो?
0: हाँ बेड़ को फिर गाड़ दो, फिर पानी उनी लगाओ उनमें, थोड़ा थोड़ा
1: अच्छा
0: से चोइया वगैरह लगाए थी, फिर
1: हाँ
0: पानी भर दो, फिर पेड़, फिर दवाई वाई लगानी पड़ती है,
1: अच्छा,
0: खाद उद फूल उलाए से घेरे ना सूड़ी उड़ी ना लगे।
1: वो बात सही कही कि काफी काफी दिनन में आता है बैंगन
0: हाँ
1: तो।
0: बैगन अभी आ नहीं रहे हैं, बस खराब हो गए, सूड़ी ने खा ली है, दवाई लगी है तो अभी
1: अच्छा,
0: आ नहीं रहे हैं बैगन,
1: तो कितने दिन में हो जाती है हमारी बैंगन की फसल? अगर बात करें तो
0: हो
1: कितने दिन में
0: जाती है
1: तैयार
0: तीन
1: हुई
0: चार
1: है?
0: महीने में।
1: अच्छा, तब हो जाता है खान लायक।
0: हाँ वैसे
1: तो आप
0: हमारे तो पिछले साल के गड़े हुए हैं, वो ये मतलब दवाई लगा दी और तो फूल आ रहा है उनमें।
1: अच्छा, पुराने पेड़
0: हाँ हाँ
1: भी जो फल हैं वो
0: हाँ
1: देने लगते
0: हाँ
1: हैं?
0: उन पे दवा लगा दी तो आ रहे हैं उन पे फूल।
1: अच्छा, तब तो बहुत अच्छी बात है कि आपके एक फेरा गड़े में 2 साल चलेंगे।
0: हाँ
1: और आप बता रही कि लौकी भी आपने लगा रखी है,
0: लौकी
1: लौकी कब
0: लगा
1: लगाई?
0: दिया लेकिन आई नहीं अभी, उनको भी 2 महीने हो गए,
1: अच्छा अभी तक
0: अभी
1: आने
0: फूल
1: पर।
0: आ रहे हैं।
1: चलो वो कोई बात ना है, वो तो जब
0: हाँ
1: पेड़ लगे
0: हाँ
1: हैं तो फल तो आएंगे ही। और बहुत से
0: हाँ
1: ऐसे
0: घुईया लगी हुई है,
1: अच्छा घुईया
0: घुईया
1: भी
0: लगा
1: है।
0: ली है, उसे मट्टी चढ़ा दी है, काफी टाइम हो गया, खुदने लगेगी थोड़े दिन बाद,
1: अच्छा,
0: 15-20 दिन बाद।
1: तो आप कैसे पता करती हो कि हमारी घुईया खुदन लाई होगी? कैसे पता लग जाती है?
0: उससे वो अलग से कल्ला आ जाती निकल के, उसने
1: अच्छा, और
0: पत्ते
1: ऊपर के पत्ते से भी कुछ पता कर सकते हैं हम?
0: पे भोपे वो आ जाती है, कुछ भोपे टाइप के वो,
1: अच्छा
0: और वैसे अलग से कल्ले आ जाते हैं, कल तो पता चली घुईया मतलब खोदने लायक हो गई,
1: अच्छा
0: कल्ले निकल जाते जगह जगह से घुईया के।
1: तब तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी सारी फसलें कर लेती हो, तो आपको बाजार भी जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात कि
0: बचत भी
1: शुद्ध
0: हो जाती है और अपने
1: हाँ
0: शुद्ध सब्जी खाओ।
1: तो आप बता रही थी सावित्री जी कि आपने भी और

0: ले लगाई हैं, जैसे आप बता रही तुरई के बीज लगाए हैं। तुरई आपने कब लगाई थी?
1: हो गए 1 महीना हो गया,
0: अच्छा
1: आ रही हैं, बच्चे हैं अभी, छोटे छोटे हैं,
0: अच्छा
1: हो जाएंगे 8-9 दिन बाद तोड़ने लग।
0: अभी खूब नहीं हुई ना?
1: हाँ अभी वही नहीं, छोटी हैं अभी।
0: अच्छा, बहुत अच्छे से आप अपनी सब फसलें करती हो, और उसके साथ साथ
1: हाँ
0: आप बता रही हैं कि आप धान की फसल भी करती
1: हाँ
0: हो।
1: धान करते हैं, अब पौध पड़ जाएगी तो
0: हाँ
1: 1 महीने बाद फिर वो धान चौहरे जाएंगे, फिर
0: अच्छा
1: 3 महीने बाद होते हैं कटने के लिए, तो उन्हें पूरा बनाते हैं, फिर झाड़ते हैं, फिर सहलाते
0: हाँ
1: हैं।
0: हाँ पूरा काम आप कर लेती हो, आपकी बातों से लग रही
1: हाँ, खेती
0: है।
1: किसानी के बारे में तो हम सब कर लेते हैं।
0: अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने खेती बाड़ी का काम भी करती हो, घर में जानवर भी
1: जब
0: पालती हो और
1: घर में
0: उसके। हाँ
1: गृहस्थी में सब काम औरत करेगी तभी घर चल पाएगा, निखर आदमी के ऊपर से कुछ नहीं होगा।
0: बहुत अच्छी बात है कि आप इतने सारे काम करती हो। आपने बताई कि अगर हम दोनों लोग मिलके काम करेंगे तो ज्यादा बढ़ोतरी होगी। उसी प्रकार से आप अगर जानवर पालती हो और दूध बेचती हो तो बस अभी आपको फायदा लगत होए।
1: हाँ हाँ बहुत फायदा है, अपने कोई भी चीज की हमारा मन है तो तुरंत ले लेते हैं।
0: हाँ रुपया इकट्ठा कर लेते हो
1: हाँ
0: दूध बेच
1: हाँ
0: बेच कर।
1: पैसा इकट्ठे कर लेते हैं, जैसे बचत होती है तो हम खाते में भी डाले आते हैं, बच्चन के भी जैसे कपड़ा है, पढ़ाई के बारे में सब के बारे।
2: जैसे सलाद वगैरह बांधते हैं,
0: अच्छा
2: सलाद और खरबूजा वगैरह चल रहे हैं, वो रख देते, खीरा रख देते हैं काट के सलाद में खा लेते हैं। रोजगार शुरू करें जिससे अपने घर परिवार सही चलता रहे, अपना भी खर्चा पानी सही से करते रहे और बचत भी कर सके। मैंने कॉस्मेटिक की दुकान खोली, उसी से अपना रोजगार कार चालू किया, और अचार की दुकान खोली,
0: अच्छा
2: अचार डाल ले, अचार डाल के बेचा, उससे बचत वगैरह की और
0: अच्छा
2: घर खर्चा पानी चलाया।
0: अच्छा सावित्री जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी सुनने वाली बहनों को आप सलाह के रूप में क्या कहना चाहोगे?
1: ये है जैसे अपने बचत हो तो खर्चा पानी करो, तो वही हिसाब से अपना काम देख लो, कोई भी काम है तो बचत हो उसमें तो खर्चा पानी खूब करो, दुखी नहीं रहो। हमारी बहन है, कुछ मोमबत्ती बनाए, कुछ प्लेट बनाए चाट वाली, ऐसे कुछ बचत हो तो खर्चा पानी करो, वो करेंगी तो दुखी भी नहीं रहेंगी, बच्चे भी दुखी नहीं रहेंगे, अपनी जो चीज की इच्छा हो वो चीज ले लो, अपना काम करके आय भी बढ़ेगी और खर्चा पानी कर लो, सुख शांति रहेगी।
3: अभी हमारे भैया बहन सुन रहे कृषि गोष्ठी, महिला उद्यमता एवं महिलाओं का विकास। प्रतिभागी थी श्रीमती मिथिलेश और श्रीमती सावित्री, और संचालन करो हमारी बहन पूनम ने। देखो कृष्ण भैया, कितनी अच्छी जानकारी जो हमारी बहनें आई उन्हें दी कि किस तरीका से हमें अपने खेतों में सब्जी उगानी चाहिए, किस तरीका से अपने पशुओं की देखभाल करनी चाहिए।
4: बिल्कुल। अच्छा भैया, जो तो ही कृषि गोष्ठी, और अब बाकी बाद में हम कुछ फरमाइशी कमेंट शामिल कर रहे हैं, सोशल मीडिया कमेंट जो कि हम तक पहुंचे हैं और जरूरी भी है, क्योंकि जो श्रोता सुन रहे हैं उन्हें जब लगता है कि हमारे नाम जरूर कार्यक्रम में शामिल हों। तो आप हैं हमारे श्रोता उत्तम सिंह जंघिल, आर्य नगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से, साथ में है मोरस जंघिल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंघिल, धमधा ग्राम सुखरी कला से हैं अमित जंघिल, शकुन आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघिल और अंजलि जंघिल,
3: ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद यादव, सनोज यादव, अमन यादव और केशव यादव,
4: धनोली तेलीवाला उत्तराखंड से हैं निसार सलमानी, नौसा सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू,
3: किसान रेडियो क्लब ग्राम व पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से विजय पाल यादव, शुभम यादव, वृषा यादव, शिखा यादव, गुड़िया यादव, बबलू यादव व विजय पांडे,
4: बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं रामचंद माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी और सभी लोग परिवार।
3: और इसी लोग की सुनने की फरमाइश हमारे पास आई है जिला बरेली ग्राम करेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, समीम अंसारी, नसरीन अंसारी, शमा अंसारी और नूर अंसारी। तो भैया आप सब भैया बहन की पसंद से सुन लेते हैं लोकगीत, श्याम चूड़ी बेचने आयो, सरस कॉल और सखियों की आवाज़।

0: साथियों, अभी आपने सुनो जो मधुर लोक गीत सरस कौल बस सखियन के स्वर में, और सुरेंद्र भैया अब है एक क्षेत्र संगठित भेंट वार्ता जो आप बातचीत करके लाए हो रेडियो के संग कामकाज।
1: तो देखो भैया, अपने भैया बहनों को सुनवाई दे रहे हैं कि वे कैसे खेती बाड़ी में काम करता रेडियो के संग आनंद लेते। देखो, हम आपको रोजाना अपने कार्यक्रम में कोई ना कोई नई जानकारी सुनवाते हैं जो हमारे किसान भैया बहन खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी से जुड़े अन्य व्यवसाय करते हैं, और खेती बाड़ी के संग संग कुछ हमारे भैया ऐसे हैं जो सब्जियां खेती करते हैं। तो आज हम जिस गांव में पहुंचे हैं, अब वो उन्हीं भैया की जुबानी जान लेते हैं, उनको परिचय कैसे वे खेती बाड़ी करते हैं, का नाम और कहाँ रहता है। का नाम भैया आपको?
2: हमारा नाम हसमत अली है।
1: घर के जिस गाँव में खड़े हैं, जो गाँव को का नाम?
2: लटूरी गाँव।
1: किस ब्लॉक में पड़ता
2: है ये? भोजीपुर ब्लॉक में पड़ता है।
1: तहसील?
2: बरेली।
1: जिला बरेली को?
2: जिला बरेली।
1: बात करें आपकी उम्र की, तो आपकी उम्र कितनी हुई?
2: लगभग 38-40 के करीब हुई।
1: पढ़ाई लिखाई करी आप?
2: हाँ, पढ़ाई लिखाई करी है।
1: कहाँ तक पढ़ाई लिखाई करी है?
2: 8वां पास करा है।
1: अच्छा, 8वां पास करो, बाकी आगे न पढ़े?
2: ना, बाकी आगे ना पढ़े।
1: क्या कारण रहो जो बाकी आगे पढ़ाई लिखाई न करी आपने?
2: ऐसा कुछ घर के हालात के हिसाब से आगे न पढ़ पाए।
1: अच्छा, हम देख रहे हैं जो रेडियो आपके पास रखो वो है, आप रोजाना रेडियो सुनते हो?
2: हाँ, रोजाना रेडियो सुनते हैं।
1: कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हो रेडियो में?
2: कार्यक्रम में हेलो बरेली है अपना, और किसान बाड़ी है, और बाकी के अपने विविध भारती के जो प्रसारण होते हैं वो भी सुनते हैं।
1: कब से है आपको रेडियो सुनने का शौक?
2: रेडियो का लगभग 20-25 साल हो गए।
1: 20-25 साल होगी। आज के दौर में तो मोबाइल ज्यादा चल रहा है, आप रेडियो के बहुत ज्यादा शौकीन है, क्या कारण है?
2: रेडियो में जो सुनने की क्वालिटी है वो मोबाइल वगैरह में नहीं है।
1: वो नहीं है?
2: हाँ, वो नहीं है। रेडियो का सुनने का मजा ही कुछ अलग है।
1: जैसे आप खेत पर हैं, समो रेडियो साथ में है। हाँ। तो काम भी चल जाता है और रेडियो भी सुनते रहते
2: हैं। हाँ, उसमें जो है कि अगर रेडियो एक जगह रखा और सुन ले आराम से, अब मोबाइल को कहाँ संग लिए फिरंगे वहाँ।
1: ना, सही बात है। अच्छा, रेडियो के 90 साल पूरे हो चुके हैं, यानी कि जो जन जन की बाड़ी आकाशवाणी के 90 साल पूरे हो गए हैं। 90 साल को सफर बहुत लंबा होता है।
2: हाँ, काफी लंबा सफर है 90 साल का, और रेडियो जो है अपने आज भी उसी चरम पर है जो पहले था।
1: जो पहले था? हाँ। यानी कि जो लोकप्रियता पहले थी वही लोकप्रियता
2: वही आज है।
1: घर के जिस खेत पर खड़े हैं, जैसे जो हम देख रहे हैं सामने, कौन सी फसल है आपके खेत में?
2: जे करेला है।
1: करेला की फसल है, कब बोई गई है?
2: जे लगभग हो गई फसल, सिर्फ 2.5 महीने की लगभग हो गई।

0: महीने की होगी। क्या तरीका है जागो बोन को, किस तरीका से बोई जाती है?
1: जी, इसके थावने लगाए जाते हैं, खाद डालने के बाद में देसी उसमें बीज लगाए जाते हैं, बीज के बाद में फिर इसमें झामा पूरा जाता है, थुनिया वगैरह लगाई जाती हैं लकड़ी की।
0: जो लकड़ी की थुनिया देख रहे हैं, जो लगभग कितने दिन बाद लगाई जाती है?
1: जे लगभग 1 महीने के बाद लगाई जाती हैं।
0: जमकर थोड़ा सीधे हो जाए पेड़,
1: जब इसमें बेल चालू हो जाती है तभी लगाई जाती है।
0: तभी लगाई जाती है। आप बता रहे हैं 2.5 महीने की खेती हो गई है लगभग, तो बेल लगभग 1 महीने में शुरू हो जाती है?
1: हाँ, 1 महीने में शुरू हो जाती है बेल।
0: तो ऊपर जो इस पे प्लास्टिक की क्या बांध दीजिए,
1: जो प्लास्टिक से जो ताना पूरा जाता है इसका, उसी पे बेल चढ़ाई जाती है ऊपर।
0: अच्छा, इसमें क्या फायदा है बेल चढ़ाने में और जो जमीन पर करेला होता है?
1: जमीन पर जैसे बरसात के मौसम में जमीन पर अगर आपका करेला है तो वो बारिश से मिट्टी वगैरह चढ़ जाती है तो कल्ली वगैरह उसकी खराब हो जाती, फल में नुकसान हो जाता।
0: अच्छा, इसमें फल बिल्कुल सेफ रहते हैं?
1: हाँ, इसमें बारिश हो या कुछ भी हो फल सेफ रहता,
0: क्योंकि वो लटकू पड़ो जमीन पर टच ना ही रहो। अच्छा, पैदावार भी ज्यादा होती हुई?
1: हाँ, पैदावार भी इसकी ज्यादा हो, फिर कीड़ा मकोड़ों से बचा रहता है।
0: कीड़ा मकोड़ों से बचा रहता है। अच्छा, कीड़ा मकोड़ों की बात करिए आपने, इस पर करेला में कोई बीमारी लगती है क्या?
1: हाँ, करेला में बीमारी लगती है, पीला पड़ता है करेला।
0: पीला पड़ता है, फिर उसको क्या उपचार करो जाता है?
1: उसमें जो फिर कीटनाशक का उपयोग करा जाता, उससे जो कि कीड़ा खत्म हो जाए और फल साफ सुथरा हो जाए।
0: जो आपने करेला बो, जब मैं देसी खाद को इस्तेमाल करो?
1: हाँ, देसी खाद का इस्तेमाल इसके थावले में करा। वैसे तो देसी खाद पूरे खेत में ही डालना चाहिए, मगर जानवर ना होने के कारण जो खेत ना पड़ पा रहा हो खाद।
0: हाँ, क्योंकि जानवर आजकल कम कर दे लोग। इसमें जो पेड़ से पेड़ की दूरी है वो लगभग कितनी होती है?
1: पेड़ से पेड़ की दूरी लगभग जो है 10 फीट मान लो।
0: और नाली से नाली की दूरी?
1: नाली से नाली की भी 10 फीट।
0: अच्छा, सब तरफ से 10-10 फीट की दूरी पर रहता है। पूरी तरह से झामा जब लगा दिया। हम देख रहे हैं लटके हुए करेले हैं, कितने दिन बाद जो करेले तोड़न लाए हुए
1: जे? लगभग जो है फल जो है 8 दिन में टूट जाता है एक बार।
0: अच्छा, इसकी पहचान कैसे करी जाती है कि जो हमारा करेला है वो तोड़ने लग गए तैयार ही हो?
1: वो देखने में ही पता लग जाएगा कि ये तोड़ने लायक है, ज्यादा छोटा करेला नहीं तोड़ते।
0: अच्छा, बिक्री तो काफी अच्छी होती है करेला?
1: हाँ, बिक्री ठीक ठाक है अपने बरेली मंडी में ज्यादा,
0: क्योंकि करेला काफी पसंद करते हैं लोग बाग, और खासकर जो आजकल जो बीमारी चल रही है डायबिटीज की, डायबिटीज बारे तो बहुत ही अच्छे मन से खत्म करे।
1: हाँ, उनके लिए तो ज्यादा ही फायदेमंद है जी।
0: क्योंकि वो करेले में कड़वापन होता है हल्का।
1: हाँ, तो उसमें डायबिटीज में जो ना कुछ फायदा मिलता।
0: तो बरेली मंडी पास में ही अपने?
1: हाँ, अपने पास में है बरेली मंडी डेला पीर, वहीं पर ज्यादा है ये।
0: तो सुबह तोड़ा जाता है या शाम के समय तोड़ा जाता है करेला?
1: शाम को भी तोड़ लेते हैं, सुबह को भी तोड़ लेते हैं, ऐसे खराब नहीं होता आज।
0: खराब नहीं होता इसमें? हाँ। खराब होने के चांस कम है?
1: कम है।
0: अरे, तोड़ने के बाद अगर 1 या 2 दिन रखा रहा है तो खराब नहीं होगा?
1: ना ना, खराब ना होता।
0: जैसे हमने आज तोड़ाई करी, कल मंडी ले जाए कोई दिक्कत वाली?
1: कोई दिक्कत ना।
0: लगभग कितनी पैदावार 1 बीघा खेत में करेला की?
1: 1 बीघा अगर ठीक ठाक लग जाए तो 8 दिन में लगभग निकल जाता है, 2-2.5 क्विंटल।
0: 8 दिन? का भाव चलो जाते मंडी में?
1: अब जो तो मंडी के रेट के ऊपर है, बाकी 10-12 रुपए, 20 रुपए तक, 15 रुपए बिक जाता अलग।
0: हर दिन का भाव जो है वो अलग अलग
1: मंडी के हिसाब से?
0: मंडी के हिसाब से।
1: जैसे माल ज्यादा आ गया मंडी में तो सस्ता हो गया, और कम है तो फिर वो अपने सही रेटों में बिक जाता।
0: फुटकर में तो बिकतना हुआ
1: ना? फुटकर में तो कम बिकता, मंडी ले जाते हैं,
0: क्योंकि 8 दिन में 2-2.5 क्विंटल माल फुटकर में बेचना तो समस्या आ जाती है।
1: समस्या? हाँ, समस्या आ जाती है। वो तो मंडी में ही खरीद के फिर वो लोग बाहर ले आते हैं,
0: मंडी में आप ले जाते हैं और भाई पर बिक जाते। अच्छा, दूसरी बात, करेला की कितने दिन की फसल है?
1: करेला की लगभग 5 महीने की फसल है, 4 से 5 महीने की।
0: 2.5 महीने के लगभग हो गया ये फसल, इस पर आना शुरू हो गई?
1: आना शुरू हो गई। हाँ,
0: अब ये 2.5 महीने तक और चलेगा?
1: हाँ, 2.5 महीना और मानो।
0: हम देख रहे हैं आपके इधर गांव के आसपास काफी करेला, लौकी, तुरैया की काफी खेती होती है। हम एक बार जब यहाँ पर आए तो हमने बाकी सेमी की खेती बहुत देखी।
1: हाँ, सेमी भी होती है। अब जो लौकी तुरैया जब ये आधी हो जाएगी तब इसके अंदर सेमी गाड़ देते हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ,
0: जैसे जो करेला खत्म होगा?
1: हाँ,
0: फिर जब करेला
1: इसी में ही अंदर लगा देंगे, जैसी बरसात 1-2 बरसात होगी।
0: हाँ,
1: उसी के बाद तुरंत लगा देंगे।
0: अच्छा, करेले में ही आप सेमी लगा दोगे?
1: सेमी लगा देंगे।
0: इसको जो झामा ऐसी पुरो रहा है वो?
1: हाँ, झामा ऐसी पुरा रहा है, वो करेला सूख जाएगा उसे उतार देंगे, फिर वो सेमी चढ़ जाएगी ऊपर।
0: अच्छा, जो झामा जब इसका सूख जाएगा, करेले के जो पौधे हैं जो सूख जाएंगे, फिर जो उतारे जाते हैं?
1: फिर जो उतार देंगे फिर वो सेमी चढ़ जाएगी इस पर।
0: अच्छा, सेमी चढ़ जाएगी।
1: हाँ।
0: फिर खेत की जुताई तो होती नहीं होगी
1: ना? खेत की वो निराई वगैरह होती रहती है।
0: लड़ाई होती रहती है, जैसे इसमें घास उस ज्यादा जब जुटाई नहीं होगी तो घास ज्यादा होती होगी तो मेहनत भी ज्यादा लगती होगी।
1: हाँ, कुछ लोग जो है कि अपनी दवा लगा देते हैं घास जलाने की, मगर ये कि

0: नहीं लगाना चाहिए, उससे खेत के लिए नुकसान होता है, उसे निलाई ज्यादा बेहतर रहती है।
1: निराई ज्यादा बेहतर रहती है। बात करें सिंचाई की, तो सिंचाई लगभग कितने दिन बाद करेला में शुरू हो जाती है?
0: सिंचाई तो वही, अगर ज्यादा गर्मी है और मौसम ज्यादा गर्म है तो वो 5-6 दिन में सिंचाई होती है।
1: हर 5-6 दिन बाद?
0: हाँ,
1: क्योंकि नमी ज्यादा जरूरी,
0: नमी ज्यादा जरूरी है।
1: निराई गुड़ाई कितने बार हो जाती है लगभग?
0: 2-3 बार तो हो ही जाती है।
1: 2-3 बार तो पूरे खेत की होती है निराई गुड़ाई, या केवल जो 10-10 फीट में आपने पौधे लगाए हैं उसी के चारों तरफ करती है?
0: वो पूरे खेत की होती है। उसमें जो है कि अगर पूरे खेत की करोगे तो जो भी कीट वगैरह है वो सब भाग जाते हैं, तो उससे जो ज्यादा फायदा रहता है पूरे खेत की।
1: पूरे खेत की निराई गुड़ाई करने में एक फायदा और तो है, घास में जो खेत में जो खरपतवार ना होंगे, करेला तोड़न बड़ो आराम रहते हो।
0: हाँ, और उसमें जो है कोई भी सांप वगैरह और कोई और कीड़ा, उसका भी जो है अंदेशा कम हो जाता है।
1: हाँ, क्योंकि जब घास फूस खेत में ना हुए, खेत साफ हुए, तो देखना मच्छर आ गए, घूमना मच्छर आ गए, और तोड़ाइयो आराम से।
0: हाँ हाँ,
1: आज रेडियो पर आपकी और हमारी बातचीत बहुत सारे भैया बहन सुन रहे होंगे, क्या कहना चाहोगे?
0: हम तो यही कहना चाहेंगे कि अपनी फसल का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें और नियमित रेडियो सुनते रहें, जिससे कि अच्छी से अच्छी जानकारी हमें लोगों को मिलती रहे।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही कि खेत में मेहनत करते रहें, नियमित रेडियो सुनते रहें, जिससे कि अच्छी से अच्छी जानकारी हम लोगों को मिलती रहे। हसमत अली जी, आपने हमसे बातचीत करी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी, जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: से?
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
2: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: अभी हमारे भैया बहन सुन रहे संदेश से पहले 6 संकलित भेंट वार्ता रेडियो के संग कामकाज। देव कृष्ण भैया जो हमारे भैया बहन है ना, वे अगर खेती बाड़ी में काम करें और संग में अगर रेडियो बजा लें तो काम करने को आनंद ही कुछ और ही।
8: बिल्कुल बात सही है आपके, और हम सब कहूँ ना कहूँ जब दौर से गुजरे हैं, हम सब ने खेती में काम करो और रेडियो अपनों पीछे रखू है।
1: तो देखो हमारे कुछ भैया बहन कह रहे हैं भैया हम काम कर रहे हैं और हमों को देखो लोग भी सुनवा दो।
8: अच्छा बिल्कुल,
1: तो
8: बिल्कुल।
1: कुछ भैया बहन की फरमाइश आई है, देखो भैया किसकी फरमाइश है?
8: एक पत्र हम तक पहुंचो है ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया जी को, ग्राम दूनी नगर जिला बदायूं से, और हैं परिवार के सभी लोग, और इनके ही पत्र के बाद में अब हम सुनवा रहे हैं साथियों को एक मधुर लोकगीत, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है।
1: ना तो और भैया के नाम जो है हम शामिल कर लेते हैं।
8: बिल्कुल,
1: इसलिए आप सुन लेते हैं लोकगीत, ऐसो मानना कीजो राधे, सुवर मणिका कांत भारद्वाज।

0: कृष्णपीर भैया इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम जगत से अपने भैया सुरेंद्र
1: और अपने भैया कृष्णवीर सिंह को देवनमति आज के कार्यक्रम ग्राम जगत से आप सबको हम दोनों की राम।

सतियों भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए खोए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। एक व्यक्ति अमर सिंह पुत्र भगवंत निवासी जलालपुर बिसौली बदायूं 2 अप्रैल 2026 से लापता है। इनकी उम्र लगभग 36 वर्ष, लंबाई 5 फीट, रंग गोरा, चेहरा लंबा, आंख नाक कान औसत, काले बाल, इकहरा जिस्म। साथ ही इन्होंने नीला लोअर, कत्थई शर्ट और हवाई चप्पल पहनी हुई है। जिस किसी को भी इनके विषय में जानकारी मिले तो कृपया प्रभारी निरीक्षक बिसौली बदायूं को सूचित करने की कृपा करें। एक और खोए व्यक्ति की सूचना सुनिए। एक व्यक्ति धनपाल पुत्र रामस्वरूप निवासी मैरोली थाना मूसा झाक बदायूं 26 अप्रैल 2026 से लापता है। इनकी उम्र लगभग 55 वर्ष, लंबाई 5 फीट, रंग सांवला, चेहरा पतला, आंख नाक कान औसत, काले बाल, इकहरा जिस्म तथा इन्होंने गेहुआ रंग की टी शर्ट, पट्टी का नेकर पहना हुआ है। जिस किसी को इनके विषय में जानकारी मिले तो कृपया प्रभारी निरीक्षक थाना मूसा झाक बदायूं को सूचित करने की कृपा करें। सूचना समाप्त हुई।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: सुन रहे थे श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से बुरा हाल, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश, अगले 3 दिन तक जबरदस्त गर्मी की चेतावनी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ की अहम बैठक, गलत सूचनाएं फैलाने वाले नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। प्रदेश के 44 जिलों में कल होगी लेखपाल भर्ती परीक्षा, 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल, परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें। और प्रदेश में जारी स्वगणना का कल अंतिम दिन, 22 मई से शुरू होगी मकानों की गिनती। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आज 48 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा प्रदेश में सबसे गर्म जनपद रहा, जबकि हमीरपुर और प्रयागराज में पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के लिए लू चलने को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसी क्रम में प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश के सभी मंडलीय, जिला, संयुक्त शहरी और ग्रामीण चिकित्सा स्थानों में गर्मी से पीड़ितों को समुचित इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अस्पतालों में अतिरिक्त बेड, जीवन रक्षक दवाओं और आवश्यक औषधियों का पर्याप्त भंडार रखने के निर्देश दिए हैं। तेज गर्मी से वन्य जीवों को बचाने के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इटावा सफारी पार्क के उपनिदेशक विनय सिंह ने बताया कि सफारी में शेरों के लिए एसी और खस की चटाई का प्रबंध किया गया है।
5: सफारी पार्क में जो भी वन्य जीव हैं, उनको गर्मी और लू से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं, जिनके अंतर्गत जो हमारे हाउस हैं, उनमें खस की चटाई लगाना, इसके साथ कूलर को लगाते हैं ताकि कमरे का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। जो भी ब्रीडिंग वाली शेरनी है, उसके नवजात बच्चे रहते हैं, शावक रहते हैं साथ में, उनको एसी के माध्यम से उनके कमरे का तापमान मेंटेन किया जाता है।
4: गर्मी और लू से बचाव के लिए विभिन्न जनपदों में स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। फतेहपुर में जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं मिर्जापुर में भी 15 जून तक स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। कानपुर में जिलाधिकारी ने कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों को 31 मई तक बंद रखने का आदेश दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में आगामी नीट यूजी 2026 की दोबारा होने वाली परीक्षा के मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में श्री प्रधान ने परीक्षा को सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। श्री प्रधान ने ऐसे नेटवर्कों पर कार्रवाई के निर्देश दिए जिसमें फर्जी जानकारी फैलाने वाले चैनलों की सक्रिय पहचान, उन्हें ब्लॉक करना और हटाना शामिल है। शिक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि गलत सूचना पर तुरंत रोक लगाई जा सके और परीक्षा प्रणाली की अखंडता की रक्षा की जा सके। प्रदेश में लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा कल 44 जिलों के 861 केंद्रों पर होगी।

0: करीब 8,000 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में लगभग 3,66,700 अभ्यर्थी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
1: लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार ने तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि परीक्षा को शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिन जिलों में सर्वाधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे वहां विशेष सतर्कता बरती जाए। रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर अभ्यर्थियों और उनके परिजनों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए जाएं और होल्डिंग एरिया बनाए जाएं। उन्होंने सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने के साथ ही लोकल इंटेलिजेंस को भी सक्रिय रखने के निर्देश दिए। गर्मी के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों पर विद्युत आपूर्ति, पीने का पानी की व्यवस्था के अलावा नजदीकी अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखने को कहा गया है। परीक्षा की जिला और राज्य स्तर के कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी की जाएगी। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने बरेली जंक्शन और मथुरा जंक्शन के बीच 2 स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने की घोषणा की है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर लखनऊ परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है, जो 21 मई की रात 12:30 बजे गोरखपुर से रवाना होगी और सुबह 6:40 पर लखनऊ पहुंचेगी। वापसी में लखनऊ गोरखपुर अनारक्षित स्पेशल ट्रेन शाम 6:15 बजे लखनऊ से चलकर रात 11:55 पर गोरखपुर पहुंचेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर क्लस्टर, प्रोजेक्ट गंगा और गेहूं के इन हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मंडी शुल्क में छूट जैसे विषयों की समीक्षा की। इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एक रिपोर्ट।
2: यूपी डेटा सेंटर क्लस्टर की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश के एआई मिशन की बुनियादी संरचना तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर क्लस्टर केवल एनसीआर क्षेत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों को भी इससे जोड़ा जाए। प्रोजेक्ट गंगा की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन युवाओं को डिजिटल उद्यमी के रूप में चुना जाए, उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तेजी से विस्तार और कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने गेहूं के इन हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की रणनीति की समीक्षा के दौरान मंडी टैक्स और मंडी शुल्क व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश की मंडियों को आधुनिक, स्वच्छ और आकर्षक बनाया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में जारी स्वगणना का कल अंतिम दिन है। राज्य के जनगणना निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि नागरिकों को स्वगणना के लिए census.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपने राज्य को चुनना होगा और फिर परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर या ईमेल के जरिए लॉगिन कर जानकारी भरनी होगी। मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी ने बताया कि गणना पर 11 अंकों का एक कोड प्राप्त होगा, जिसे प्रगणक के घर आने पर देना होगा, जिससे जानकारी का सत्यापन होगा। उन्होंने लोगों से स्वगणना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश में 22 मई से मकानों की गणना शुरू होगी, जो 22 जून तक चलेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट मंत्री बने भूपेंद्र चौधरी ने आज सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री के तौर पर कामकाज संभाल लिया है। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोगों को इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त हो।
3: और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के विकास में जिस प्रकार से एमएसएमई विभाग की भूमिका है और उस भूमिका में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो, इसका प्रयास और इस लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 46% निर्यात इन्हीं इकाइयों के द्वारा उत्पादित सामानों का होता है, तो इसे आगे बढ़ाएं, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। और उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है, हमारा विभाग उसमें एक महती भूमिका निभाए, इसका प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे।
0: प्रयागराज से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने को नागर विमानन महानिदेशालय ने मंजूरी दे दी है। प्रयागराज एयरपोर्ट के निदेशक राजेश चावला ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने के बाद प्रयागराज जेवर फ्लाइट की समय सारणी जारी की जाएगी। नई उड़ान सेवा शुरू होने से प्रयागराज से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्री

0: यात्रियों को काफी सुविधा होगी।
1: प्रयागराज एयरपोर्ट के ऊपर एक हफ्ते में 60 फ्लाइटों का आना जाना है, और अभी ये जो जेवर एयरपोर्ट जून से शुरू हो रहा है, इसमें अभी जैसे ही ये थोड़ा अभी तो कुछ कम फ्लाइटों से वहां से आना जाना शुरू होगा। इंडिगो की एक फ्लाइट शेड्यूल्ड है जो कि जेवर से प्रयागराज और प्रयागराज से जेवर जाएगी, क्योंकि तो अभी उसका पूर्णतः वो नहीं हुआ, शुरुआत नहीं हुई। जैसे ही वो जैसे जैसे फ्लाइट की संख्या वहां बढ़ती जाएगी तो हमारे यहाँ भी एक फ्लाइट आने का समर शेड्यूल में प्रोग्राम है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से बुरा हाल, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश। अगले 3 दिन तक जबरदस्त गर्मी की चेतावनी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ की अहम बैठक। गलत सूचनाएं फैलाने वाले नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। प्रदेश के 44 जिलों में कल होगी लेखपाल भर्ती परीक्षा, 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें। और प्रदेश में जारी स्वगणना का कल अंतिम दिन, 22 मई से शुरू होंगी मकानों की गिनती। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
3: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। लीजिए आप सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन।
4: प्रायोजक रोहेलखंड का आधुनिकतम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल गंगाशील हॉस्पिटल दीदीपुरम बरेली।
5: मानसिक तनाव, अत्यधिक चिड़चिड़ापन, सोचते सोचते खो जाना, याददाश्त की कमी, परेशान रहना, रोज के कार्य करने में असक्षमता, मेंटल ट्रॉमा जैसी किसी भी समस्या में परामर्श एवं सुझाव करें गंगाशील अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता से।
6: कैंसर के इलाज का अति आधुनिक अस्पताल,
4: गुर्दे और पेशाब संबंधी बीमारियों के इलाज की सभी सुविधाएं,
6: महिलाओं के बांझपन और जसाने की सभी बीमारियों के इलाज की सुविधा,
4: स्किन अथवा त्वचा के रोगियों का संपूर्ण इलाज,
6: 24 घंटे इमरजेंसी सेवा,
4: आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों के इलाज के लिए सरकार द्वारा अधिकृत अस्पताल गंगाशील हॉस्पिटल दीदीपुरम बरेली। इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 8273254444।
7: रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही स्वागत है हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद बरेली के गुर्दा रोग विशेषज्ञ, डायलिसिस एवं किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रेम मोहन झा साहब का। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका।
8: धन्यवाद सर।
7: डॉक्टर साहब, चूंकि आज का हमारा विषय है गुर्दे की बीमारियों में डायलिसिस, भ्रांतियां और सच्चाई, तो सबसे पहले हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि गुर्दा मानव शरीर का बहुत जरूरी अंग कहा जाता है, ये क्या होता है और मानव शरीर में इसकी क्या उपयोगिता है, क्या भूमिका होती है?
8: जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हम अपने आज के टॉपिक की शुरुआत इसी से करेंगे। तो हमारे शरीर में नॉर्मली 2 गुर्दे होते हैं जिनको कि किडनी भी बोलते हैं, और ये शरीर में पीछे की तरफ होती हैं। नॉर्मली इनका काम सिर्फ एक नहीं होता, ये हमारे शरीर में बहुत सारी चीजों का बैलेंस बनाने की काम करती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने वाले हार्मोन बनाना, शरीर में विटामिन डी बनाने वाले हार्मोन बनाना, शरीर में नमक और पानी की मात्रा को संतुलित करना, और शरीर में एसिड और बेस की मात्रा को संतुलित करना
7: जी,
8: ये सारे काम। और इसके अलावा यूरिया और क्रिएटिनिन जो होते हैं उनकी भी मात्रा को नियंत्रित करने का काम हमारी किडनी करती है
7: जी। आमतौर पर कहा जाता है कि गुर्दे 2 होते हैं व्यक्ति के शरीर में
8: जी।
7: कई बार लोगों में ये भी सुना गया है कि किसी किसी को एक ही किडनी होती है
8: जी। कई लोगों में पैदाइशी एक किडनी होती है, लेकिन अगर दूसरी किडनी स्वस्थ है तो आदमी अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकता है सिर्फ एक किडनी के सहारे।
7: अच्छा।
8: अगर उसमें कोई दिक्कत आती है
7: जी,
8: तब उसके लिए रिस्क उन लोगों की तुलना में ज्यादा बढ़ जाता है जिनमें कि दोनों किडनी होती है।
7: अच्छा अच्छा, यहाँ एक चीज और हम अपने श्रोताओं को आपके माध्यम से जरूर बताना चाहेंगे। कहा जाता है कि एक एक करके ये गुर्दे काम करते हैं, सच्चाई क्या है डॉक्टर साहब? क्या दोनों गुर्दे एक साथ काम करते हैं, दोनों किडनी साथ साथ काम करती हैं, अलग अलग काम करती हैं?
8: जी, जैसे कि गाड़ी के 2 पहिए होते हैं
7: जी,
8: वो दोनों एक साथ चलते हैं तभी गाड़ी बढ़ती है
7: जी।
8: ऐसे ही गुर्दे होते हैं, दोनों गुर्दे हर समय 24 घंटे हर सेकंड हर पल लगातार काम करते हैं, बिना रुके काम करते हैं।
7: अच्छा, ये

0: भ्रांति है कि एक एक करके गुर्दे काम करते हैं, एक करके किडनी काम करते हैं।
1: जैसे कि ऐसा लोगों में हो सकता है
0: जी,
1: और जानवरों में हो सकता है कि एक काम कर रहा है वो थक गया तो दूसरे ने जिम्मेदारी उठा ली, लेकिन किडनी में आमतौर पर ऐसा नहीं होता, दोनों किडनी हर समय काम कर रही होती है।
0: जी जी, ये तो बात रही किडनी या गुर्दे की डॉक्टर साहब। अब जो महत्वपूर्ण आज का विषय है वो है डायलिसिस। तो सबसे पहला तो यही कि डायलिसिस आखिर

0: स्पेशल सपोर्ट है।
1: अच्छा,
0: कि जब किडनी काम नहीं कर रही तो डायलिसिस के सहारे हम किडनी के नॉर्मल काम का कुछ हिस्सा कर पाते हैं, जैसे कि शरीर में पानी की मात्रा अगर ज्यादा है या कम है, या शरीर में सोडियम पोटेशियम यूरिया क्रिएटिनिन इनकी मात्रा ज्यादा या कम है, तो उनको डायलिसिस के सहारे नियंत्रित किया जाता है।
1: जी, क्या होती है डॉक्टर साहब डायलिसिस, किस तरह की प्रक्रिया है?
0: देखिए, डायलिसिस दो तरह की होती है, एक तो हीमोडायलिसिस, दूसरी पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस वो होती है जो आमतौर पे हम लोग देखते हैं, जो ज्यादा कॉमन है, इसको खून वाली डायलिसिस बोलते हैं। और जो पेरिटोनियल डायलिसिस होती है वो पेट से होती है और इसको पानी वाली डायलिसिस बोलते हैं। और जो पेरिटोनियल डायलिसिस है वो यूजली लोग घर पे खुद से कर सकते हैं।
1: अच्छा,
0: उसके लिए सेंटर आने की जरूरत नहीं पड़ती है।
1: जी जी,
0: तो डायलिसिस में जो खून है, अगर हम हीमोडायलिसिस की बात कर रहे हैं
1: जी,
0: तो उसमें एक मशीन होती है, तो मरीज के शरीर में एवी फिशुला या डायलिसिस कैथेटर लगा दिया जाता है, तो उसके सहारे ब्लड मशीन में आता है और मशीन उस खून को साफ करके या फिल्टर करके वापस पेशेंट के शरीर में भेज देती है।
1: जी जी, आपने डॉक्टर साहब अभी अभी बताया कि गुर्दे जो है वो शरीर का जो वेस्ट मटेरियल है, जो खराब चीजें हैं उनको बाहर निकालने का काम करते हैं, तो ये किस तरह होता है, क्या किस तरह से निकलता है शरीर का वेस्ट शरीर से बाहर?
0: जैसे मैंने बताया कि गुर्दे का जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। तो किडनी में ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, लाखों करोड़ों नेफ्रॉन्स होते हैं, जो साथ साथ काम करते हुए किडनी से जो वेस्ट मटेरियल है उसको फिल्टर करते हैं और जो यूजफुल मटेरियल है जैसे कि शरीर में प्रोटीन है उनको रिटेन करते हैं। तो बेसिकली किडनी में एक तीन लेयर वाली मेम्ब्रेन होती है जिसको ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, या आप आम भाषा में छलनी कह सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा,
0: वो छलनी के सहारे किडनी अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकालती है,
1: यानी खून में से ये सारी चीजें छानी जाती हैं
0: जी।
1: और बाहर निकलने का माध्यम अगर हम कहें तो वो यूरिन पेशाब के थ्रू बाहर शरीर से निकलता है।
0: जी
1: जी, एक ही रास्ता है उस वेस्ट का बाहर निकलने का, वो है यूरिन।
0: जी
1: जी। अच्छा, डायलिसिस के विषय में डॉक्टर साहब आपने हीमोडायलिसिस के बारे में कहा कि एक मशीन होती है, मशीन में शरीर का खून जाता है और जो शुद्ध करके या उसे छान के दोबारा वापस शरीर में भेज दिया जाता है।
0: जी,
1: तो क्या पूरे शरीर का खून जाता है, थोड़ा सा स्पष्ट कीजिएगा, क्योंकि खून सबसे जरूरी पदार्थ है शरीर का, थोड़ा सा भी कम हो तो लोगों को चक्कर आते हैं, बेहोशी आने लगती है, और मशीन में अगर पूरा खून जाएगा तो कैसे, क्या होता है, कैसे करते हैं आप लोग ये सब?
0: ये देखिए, इसमें चक्कर आने या बेहोशी जैसी चीजें नहीं होती, उसका कारण ये है कि ये क्लोज्ड सिस्टम होता है, जितना ब्लड मशीन में आता है उतना ही मशीन से वापस शरीर में लौट जाता है।
1: अच्छा,
0: तो इसलिए एकदम से सारा जो खून है वो नहीं आता। जैसे डायलिसिस में हमें ब्लड कितना लेना है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसका कंट्रोल हमारे हाथ में होता है।
1: अच्छा,
0: हम हर मिनट 50 ml से लेकर 300 ml तक भी ब्लड एवरी मिनट
1: अच्छा
0: पेशेंट के शरीर से ले सकते हैं, लेकिन उसी रफ्तार से वो वापस भी लौट जाता है।
1: अच्छा,
0: तो एक मिनट में अगर आप 300 ml ले रहे हैं तो एक घंटे में ऑलमोस्ट 18 लीटर के आसपास ब्लड आपने फिल्टर कर दिया। और नॉर्मली इंसान के शरीर में टोटल वजन का करीब 13% ब्लड होता है।
1: अच्छा,
0: तो हम 7-8 लीटर के आसपास भी मान लें तो ऐसे समझ लीजिए कि उस 4 घंटे की डायलिसिस में आप पूरे शरीर का ब्लड कई बार साफ करके
1: अच्छा
0: वापस लौटा देते हैं।
1: अच्छा, एक साइकिल है जो चलता रहता है शरीर से मशीन में और मशीन से शरीर में।
0: जी, 300 ml पर मिनट।
1: जी,
0: तो मशीन हर मिनट में 300 ml ब्लड ले रही है, उसको प्यूरिफाई कर रही है और वापस कर रही है।
1: अच्छा,
0: और ये लगातार 4 घंटे तक ऐसे ही चलता रहता है।
1: अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब ये और बताइएगा, वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जबकि मरीजों को डायलिसिस पे रखना पड़ता है या उनकी डायलिसिस करनी?
0: तो उसमें दो तरह की परिस्थितियां होती हैं, टेक्निकल वर्ड्स में एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं।
1: अच्छा,
0: दूसरी परेशानी होती है क्रोनिक किडनी डिजीज, यानी पुरानी किडनी की परेशानी चली आ रही थी और धीरे धीरे किडनी बिल्कुल फेल हो गई।
1: जी,
0: तो दोनों ही परिस्थितियों में डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। तो उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, क्लिनिकल क्राइटेरिया एंड लैब क्राइटेरिया। तो क्लिनिकल जो क्राइटेरिया है वो मरीज के लक्षणों के ऊपर होते हैं, जैसे मरीज की सांस बहुत फूल रही हो, उसको पेशाब बिल्कुल नहीं आ रहा, उसको सूजन आ रही है, उसको दौरे पड़ रहे हों या यूरिया क्रिएटिनिन बहुत बढ़ने की वजह से कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो, तो ये उसके क्लिनिकल क्राइटेरिया होते हैं जिनके आधार पर डायलिसिस कर सकते हैं। दूसरे होते हैं लैब क्राइटेरिया, तो उसमें यूरिया क्रिएटिनिन का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, पोटेशियम का बहुत ज्यादा बढ़ जाना जो कि मेडिसिन से भी करेक्ट ना हो रहा हो, या शरीर में एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाना जिसको कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं, तो उस स्थिति में भी डायलिसिस की

0: पड़ सकती है
1: जी।
0: या लंग्स में पानी का भर जाना,
1: अच्छा,
0: तो उस स्थिति में भी डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है।
1: डॉक्टर साहब, हीमोडायलिसिस के अलावा आपने बताया कि पेट के द्वारा भी डायलिसिस होती है, वो किस तरह की डायलिसिस है
0: जी? तो उसमें पेट में कैथेटर डाल दिया जाता है और फिर कुछ समय के लिए पेट में एक डायलिसिस फ्लूड आता है, वो भर दिया जाता है। तो पेट के अंदर जो झिल्ली होती है वही डायलाइजर का काम करती है,
1: अच्छा,
0: और उसके थ्रू जो है ब्लड सर्कुलेट होता है और वो फिल्टर होता है और बाद में हम उसको पेट से दूसरे बैग में वापस निकाल देते हैं।
1: अच्छा, तो आपने बताया कि ये प्रक्रिया जो है वो मशीन के द्वारा ना होकर के व्यक्ति हॉस्पिटल में आने की जरूरत नहीं है
0: जी, ये दोनों तरह से हो सकती है, मैनुअल भी और ऑटोमेटिक भी।
1: अच्छा,
0: और ये घर पे होती है, इसमें पेशेंट खुद भी कर सकता है या पेशेंट के जो सात लोग रह रहे हैं वो थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद खुद कर सकते हैं।
1: अच्छा, चूंकि भ्रांतियों की बात हम बताने वाले हैं अपने श्रोताओं को, तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा, चूंकि आप डॉक्टर हैं, अब डे बाई डे आपकी प्रैक्टिस में लोग आते हैं जो किडनी के बीमार लोग हैं, उनकी आप इलाज करते हैं, किस तरह की भ्रांतियां आपने समाज में अब तक महसूस की?
0: सबसे बड़ी भ्रांति तो यही है कि एक बार डायलिसिस शुरू हो गई तो फिर कभी बंद नहीं होगी, जिंदगी भर
1: डायलिसिस करानी पड़ेगी।
0: ऐसा पूरी तरह से सही नहीं है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किडनी की परेशानी नई है या पुरानी। अब जिन लोगों की किडनी पूरी तरह से बैठ चुकी है, खराब हो चुकी है और किडनी का जो फंक्शन है वो 10% के नीचे आ चुका है, ऐसे लोगों में यूजली एक बार डायलिसिस शुरू होकर जिंदगी भर चलती है। लेकिन जिन लोगों में किडनी किसी वजह से, जैसे कि अचानक से कोई इन्फेक्शन हुआ या कोई ऐसी मेडिसिन ले ली तो अचानक से किडनी डैमेज हो जाती है, यूजली उन लोगों में 1 हफ्ते से लेके 4 से 6 हफ्ते तक के बीच में किडनी रिकवर कर जाती है।
1: अच्छा।
0: और यूजली डायलिसिस बंद हो जाती है। इसलिए दिमाग में बिल्कुल भी ऐसा नहीं रखना चाहिए कि हर मरीज में डायलिसिस जो शुरू होती है वो जिंदगी भर चलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1: जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने बताई है। वाकई में ये भ्रांति बहुत बड़े स्तर पर लोगों में है कि एक बार अगर डायलिसिस हुई तो जीवन भर उस पर निर्भर रहना पड़ेगा, जबकि बात सच्चाई की करें तो ये इसका उलट, कुछ परिस्थितियां होती हैं जबकि जीवन भर के लिए आपने बता ही दिया है डायलिसिस की जरूरत होती है, वरना तो डायलिसिस एक बार हो जाती है, किडनी अपना काम शुरू कर देती है और फिर डायलिसिस की आवश्यकता नहीं होती।
0: जी, मैं एक कुछ बातें और बोलना चाहूंगा। मेरे पास बहुत सारे सब तरह के लोग आते हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, और मैंने देखा है कि ये जो भ्रांति है ये सारे लोगों के मन में रहती है कि एक बार डायलिसिस शुरू हुई तो कभी बंद नहीं होगी, और उस चक्कर में कई बार लोग डायलिसिस के लिए परमिशन ही नहीं देते, और ऐसे में जो एक्यूट किडनी इंजरी वाले मरीज हैं जिनको बचाया जा सकता है डायलिसिस करके, कई बार उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, अपने डॉक्टर के साथ बैठें, डिस्कस करें, सारी परिस्थिति समझें, और इससे भी ज्यादा कुछ समझना है तो डायलिसिस का इंडिकेशन समझें कि डायलिसिस वो क्यों कर रहे हैं, क्या बीमारी है, क्या इंडिकेशन है वो समझें
1: जी,
0: और डायलिसिस के अन्य विकल्प क्या हो सकते हैं और उन सबके प्लस और माइनस सारे समझें, और अगर ये निकल के आता है कि नहीं डायलिसिस जरूरी है तो बिल्कुल करानी चाहिए, ये मरीज के लिए लाइफ सेविंग होता है।
1: जी जी, कई बार ये होता है डॉक्टर साहब कि जब इमरजेंसी होती है उस समय लोग तैयार हो जाते हैं कि ठीक है डॉक्टर साहब, अगर इसके अलावा कोई चारा नहीं है तो डायलिसिस कर दीजिए, और दोबारा अगर आप उन्हें सलाह देते हैं कि आपको इतने दिन बाद दोबारा फिर डायलिसिस करानी है तो लोग कतराते हैं, समय पर डायलिसिस के लिए वापस नहीं आते। ऐसा करने पे किस तरह का नुकसान होता है मरीज का?
0: ऐसा करने पे मरीज को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अगर डायलिसिस की जरूरत है और वो समय पे नहीं करा रहे हैं
1: जी,
0: तो सबसे पहला तो यही आता है कि जो शरीर में वेस्ट मटेरियल है, यूरिया, क्रिएटिनिन, पानी, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे शरीर में इकट्ठा होने लगते हैं। तो शरीर में पानी की मात्रा बढ़ने से सांस फूल सकती है, सूजन आ सकती है, भूख लगना बंद हो जाता है, यूरिया क्रिएटिनिन की मात्रा बहुत बढ़ने से दौरे पड़ सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, और हार्ट में और फेफड़ों में सूजन आ सकती है, और अगर शरीर में पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई तो सडनली डेथ भी हो सकती है।
1: इतना घातक हो सकता है समय पर डायलिसिस ना करवाना
0: जी।
1: डॉक्टर साहब, कुछ तरह के मरीज होते हैं जिनमें कई बार डायलिसिस की परिस्थितियां बहुत तेजी से बनती हैं। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि कई बार शुगर के जो मरीज हैं, डायबिटीज के जो मरीज हैं, उनमें ये सुनने में आता है कि साहब शुगर की बीमारी है और शुगर अगर बहुत दिनों तक बढ़ी रहेगी तो डायलिसिस करवानी पड़ेगी, सच्चाई क्या है?
0: जी देखिए, इसमें यह है कि ज्यादातर डायबिटीज के पेशेंट्स
1: जी
0: न तो पूरी तरह से डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करते हैं
1: जी,
0: न दवाइयां टाइम पे खाते हैं, और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है डाइटरी प्रिकॉशंस, वो ज्यादातर लोग फॉलो नहीं करते। डायबिटीज के मरीजों

0: के लिए मीठा जहर के समान है, लेकिन उसके बाद भी ये बात जानते हुए भी कई लोग अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रखते और बीच बीच में मीठा खाते रहते हैं, चोरी से, चुपके से, और शुगर का जो ऑप्टिमम कंट्रोल होना चाहिए वैसा इन लोगों में देखने को नहीं मिलता है
1: जी।
0: और इन लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन इनके अलावा जो लोग अवेयर हैं, कॉन्शियस हैं, हेल्थ के प्रति अपने चिंतित हैं, वो लोग भी शुगर तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन बाकी के पैरामीटर्स भी कई बार लोगों से मिस हो जाते हैं। जैसे कि एक मैंने अपने पिछले टॉक में बताया था कि कुछ लोग जो ज्यादा रिस्क वाली कैटेगरी में होते हैं किडनी की बीमारियों के लिए, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, जिसमें वो पहले से हार्ट की परेशानी है और पहले से लिवर की परेशानी है
1: जी,
0: ऐसे इन सारे लोगों को टाइम टाइम पे अपने कंप्लीट हेल्थ चेकअप डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से कराते रहने चाहिए, ताकि हमें समय रहते किडनी की बीमारी पता चल सके। जो अचानक से इमरजेंसी आती है वो यूजली उन लोगों में आती है जिन्होंने सालों से अपनी किडनी के बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं होता
1: है। डॉक्टर साहब, किडनी की बीमारी है तो किडनी की जाँच स्वाभाविक है, किडनी की जाँच के बाद ही उसकी बीमारी के बारे में पता लगता है, लेकिन कई बार जो डायबिटीज के मरीज हैं वो ये कहते हैं हमारी शुगर तो ठीक चल रही है, और नाप भी लेते हैं आजकल, ग्लूकोमीटर लगभग लोगों के पास होता है, तो अगर ग्लूकोमीटर से चेक करके खुद को संतुष्ट कर रहे हैं लोग कि हमारी शुगर ठीक चल रही है और हमारा खान पान ठीक है, ऐसे में भी क्या वो परिस्थितियां आ सकती हैं जबकि डायलिसिस जैसी इलाज की जरूरत पड़ जाए लोगों को?
0: जी बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि डायबिटीज एक सिंगल बीमारी नहीं है, डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिजीज है, और इसके जो भाई बहन हैं वो हैं ब्लड प्रेशर और थायराइड
1: जी
0: और किडनी की परेशानी।
1: अच्छा,
0: तो अगर शुगर सिर्फ ग्लूकोमीटर से चेक करके आप ये आश्वस्त नहीं हो सकते कि सब कुछ ठीक चल रहा है, एक तो आपको HbA1c का लेवल कराना चाहिए, जो 3 महीने की शुगर का एवरेज आपको बताता है
1: जी।
0: वो आपका बहुत अच्छे से अंडर कंट्रोल होना चाहिए। उसके अलावा किडनी की भी समय समय पर जांच होनी चाहिए, उसके लिए पेशाब की जांच में प्रोटीन लीक हो रही है या नहीं ये देखना बहुत जरूरी है, और जिस समय किडनी से डायबिटीज वाले मरीज की किडनी से प्रोटीन लीक होने लग जाता है तो किडनी की डिजीज की शुरुआत हो जाती है, तो ऐसे में हमें और फ्रीक्वेंटली डॉक्टर के पास जाके, और आज कल कई ऐसी दवाइयां आ गई हैं जो यूरिन से लीक हो रही प्रोटीन को कम करने में या पूरी तरह से रोकने में सहायक हैं, हेल्प करती हैं
1: जी। जी, किडनी की जांच कराने के लिए कौन कौन सी टेस्ट होते हैं जो कराने जरूरी होते हैं? KFT का जांच करा लेते हैं और ये तय हो जाता है कि किडनी ठीक काम कर रही है नहीं कर रही है, डॉक्टर होने के नाते आप क्या सलाह देंगे?
0: देखिए, ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, वो इसलिए क्योंकि डायबिटीज वाले मरीजों में जब किडनी अफेक्ट होना शुरू होती है उस समय क्रिएटिनिन तो ठीक ही रहता है, शुरुआत होती है यूरिन में प्रोटीन लीक होने से।
1: अच्छा,
0: तो बहुत इनिशियल स्टेज में जब कम प्रोटीन लीक हो रही होती है तो हम उसको माइक्रो एल्बुमिनूरिया बोलते हैं, और उसके बाद फिर मैक्रो एल्बुमिनूरिया आता है, और उसके बाद सीवियर प्रोटीनूरिया आता है।
1: अच्छा,
0: तो इन सब के बाद फिर क्रिएटिनिन बढ़ना स्टार्ट होता है।
1: अच्छा,
0: तो एक अच्छा खासा टाइम गैप होता है जहां पे हम चीजों को रिवर्स कर सकते हैं, बशर्ते वो पेशेंट उस पीरियड में कॉन्टेक्ट करे।
1: जी,
0: ज्यादातर लोग उस पीरियड में कॉन्टेक्ट ही नहीं कर पाते तो क्रिएटिनिन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तब दिक्कत बढ़ती है।
1: डॉक्टर साहब, जो प्रोटीन लीक होने की बात आप कर रहे हैं तो इसके लिए कौन सी जांच आप लोग कराते हैं जिससे ये तय हो पाता है कि प्रोटीन लीक हो रहा नहीं हो रहा?
0: ठीक है, इसमें यूरिन में माइक्रो एल्बुमिन शुरुआत में जो हम करते हैं, और उसके अलावा यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो, यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो, 24 आवर यूरिन एल्बुमिन या 24 आवर यूरिन प्रोटीन, वो डिपेंड करता है पेशेंट प्रोफाइल के ऊपर।
1: अच्छा,
0: ही जो ट्रीटिंग नेफ्रोलॉजिस्ट है वो डिसीजन लेते हैं।
1: इसके लिए डॉक्टर साहब पेशाब का टेस्ट होता है या फिर ब्लड से ये सब पता किया जाता है?
0: जैसा कि इसके नाम में ही है यूरिन फॉर प्रोटीन या यूरिन फॉर एल्बुमिन, तो ये यूरिन के थ्रू ही होता है,
1: यानी ब्लड का सैंपल नहीं देना होता है, सिर्फ यूरिन के सैंपल से ये जांच हो जाती है। अच्छा, एक बात और बताइएगा डॉक्टर साहब, कहते हैं कि सुबह सुबह अगर यूरिन का सैंपल दिया जाता है तो परिणाम अच्छे आते हैं, रिजल्ट ठीक आता है, एक डॉक्टर होने के नाते आपका क्या सुझाव है हमारे श्रोताओं के लिए? किसी भी समय सैंपल दे सकते हैं यूरिन का या फिर सुबह का ही सैंपल ज्यादा उपयुक्त है?
0: जो मॉर्निंग का पहला सैंपल होता है उसको रिकमेंड करते हैं
1: जी।
0: उसका रीजन ये होता है कि उस समय ब्लैडर ओवरनाइट का फुल होता है और उस समय जो सैंपल आता है वो ओवरनाइट का रेस्ट भी होता है, तो उसके बाद जो सैंपल आता है वो एक्यूरेट होता है। दिन में हो सकता है आपने थोड़ी दौड़ लगा दी या ज्यादा एक्सर्सन ले लिया तो यूरिन में प्रोटीन की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है।
1: अच्छा,
0: तो ये सारे जो फ्लक्चुएशंस हैं डे टाइम वाले वो फर्स्ट वर्डेड मॉर्निंग सैंपल में अवॉइड हो जाते हैं।
1: अच्छा, अच्छा डॉक्टर साहब, जो हम गुर्दे की डायलिसिस की बात कर रहे हैं तो गुर्दे की डायलिसिस की समस्या पुरुषों में ज्यादा होती है मतलब इसकी जरूरत

0: पुरुषों में ज्यादा पड़ती है या महिलाओं में, या फिर दोनों में समान रूप से गुर्दे की बीमारियां होती हैं और डायलिसिस जैसी इलाज की जरूरत पड़ सकती है?
1: किडनी की परेशानियां दोनों लोगों में ही काफी कॉमन है, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। डिपेंड करता है कि आपकी जो बेसलाइन हेल्थ स्टेटस है वो कैसा है, आपको कोमोर्बिडिटीज यानी कि पुरानी जो बीमारियां हैं वो क्या है।
0: जी, कुछ एज का भी होता है डॉक्टर साहब कि इस उम्र में ज्यादा संभावना रहती है?
1: किडनी की बीमारियां हर एज ग्रुप में और हर जेंडर में हो सकती हैं, और हर एज ग्रुप की अपनी डिजीज प्रोफाइल होती है। जैसे कि बच्चों में यूजली जो जेनेटिक और एनाटोमिकल किडनी की प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा कॉमन होती हैं। मिडिल एज में यूजली इम्यूनोलॉजिकल डिजीज ज्यादा कॉमन होती है, और ओल्ड एज में यूजली जो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये सब ज्यादा इनकी वजह से किडनी की बीमारी ज्यादा कॉमन होती है। लेकिन ओवरऑल डायबिटीज मोस्ट कॉमन कॉज है किडनी की बीमारी का।
0: क्या कुछ दवाइयां भी ऐसी हैं जिनके सेवन से गुर्दे खराब होते हैं और डायलिसिस की जरूरत पड़ती
1: है? जी बिल्कुल, ऐसी हैं स्पेशली लंबे समय से सिर दर्द के लिए या जोड़ों के दर्द के लिए दर्द की दवाइयां खा रहे होते हैं, या और ओवर द काउंटर मेडिसिन खा रहे होते हैं, या फिर वो लोग जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, बहुत तेजी से बॉडी बनाने के लिए, जिम करने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स, इंजेक्शंस और ये सारी चीजें करते हैं, ऐसे लोगों में संभावना होती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई ऐसी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स जिनके बारे में नहीं पता, बस हमने किसी से सुना और ले लिया, तो कुछ टाइम पीरियड में वो आपको बिल्कुल किडनी को पूरी तरह से डैमेज करके आपको डायलिसिस तक पहुंचा सकती है।
0: जी, अगर हम ये जानना चाहें डॉक्टर साहब के मरीजों के पास और क्या विकल्प हैं डायलिसिस के अलावा, तो क्या?
1: तो जो मरीज अब डायलिसिस पे आ चुके हैं तो उन पे पहला तो यही विकल्प होता है कि डायलिसिस में हीमोडायलिसिस पे रहना है या पेरिटोनियल डायलिसिस पे जाना है।
0: अच्छा, ये विकल्प हो सकता है?
1: जी जी। तो जो ऑफिस गोइंग लोग हैं, अदरवाइज हेल्दी हैं, पहले पेट की सर्जरी नहीं हुई, बहुत ज्यादा ओबीज नहीं है, ओवरवेट नहीं है, तो वो अपनी पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकते हैं। तो उसमें नाइट टाइम में डायलिसिस करके सुबह आराम से लोग ऑफिस जा सकते हैं और रात में अपना डायलिसिस कर सकते हैं, और कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो भी डिपेंड नहीं होते, और वो अपनी पेरिटोनियल डायलिसिस का सामान लेके जा सकते हैं और डायलिसिस कर सकते हैं। और सपोज ठीक है, हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस दोनों को एज डायलिसिस कंसीडर करते हैं, तो दूसरा जो विकल्प है वो होता है किडनी ट्रांसप्लांट।
0: अच्छा,
1: तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि पेशेंट सुटेबल है कि नहीं किडनी लेने के लिए, और अगर पेशेंट सुटेबल है तो उसमें जो भी उनके ब्लड रिलेशन में डोनर्स हैं वो किडनी दे सकते हैं। और आजकल किडनी ट्रांसप्लांट की जो टेक्निक है और जो दवाइयां हैं वो इतनी अच्छी हो गई हैं कि ब्लड ग्रुप मैच करे या नहीं करे आप किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं।
0: अच्छा
1: जी,
0: एक समय था डॉक्टर साहब ये सारी चीजों का मिलान आप डॉक्टर लोग करते थे तभी गुर्दा एक दूसरे का ट्रांसप्लांट कर सकते थे, लेकिन आज आप बता रहे हैं कि परिस्थितियां बदल चुकी हैं।
1: हाँ, मिलान अभी भी करते हैं
0: जी,
1: बहुत सारी चीजें होती हैं और सारी चीजें देखते हैं। मैं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली तो यही होती है, ये देखा जाता है कि जो किडनी दे रहा है उसके जीवन को कोई खतरा तो नहीं पैदा हो रहा
0: जी, जी।
1: और ये बिल्कुल लीगल तरीके से होता है, इनके लिए अप्रूवल कमेटीज होती हैं मल्टीपल लेवल्स पे, उनके थ्रू सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं, और उसके बाद बेसिक जांचें होती हैं लेवल वन लेवल टू, उसके बाद जो फाइनल जांचें होती हैं क्रॉस मैच है ना, ये सारे लेवल थ्री के होते हैं, ये सारे करके उसके बाद ट्रांसप्लांट के लिए लिया जा सकता है। बस जिन लोगों में ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है उनमें एक तो ट्रांसप्लांट का खर्चा बढ़ जाता है, यूजली डेढ़ से दो गुना हो जाता है, क्योंकि उसकी दवाइयां महंगी होती हैं।
0: अच्छा।
1: और दूसरा, उनमें नॉर्मल पेशेंट जिसमें कि ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है उसकी तुलना में थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रिजेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो डायलिसिस पे रहने से बेहतर होता है कि किडनी ट्रांसप्लांट करा लें।
0: अच्छा, एक बेहतर ऑप्शन है ये।
1: जी
0: जी डॉक्टर साहब, ये और बताइएगा, चूंकि लोग ये मानते हैं कि डायलिसिस कराएंगे तो साहब कमजोरी आ जाएगी, हमें आराम करने की जरूरत पड़ेगी, तीन दिन चार दिन कोई काम नहीं करना है, हमें खाना नहीं खाना है, कई चीजें हैं जिनसे बच के रहना है, एक डॉक्टर होने के नाते आपका क्या सुझाव है?
1: देखिए, मैं एक गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूँ और मेरे यहाँ गंगाशील अस्पताल में करीब 10 मशीनें हैं और जो 24 घंटे डायलिसिस यूनिट खुली रहती है हमारी, है ना, डायलिसिस हमेशा चलती रहती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मैं बहुत सारे मरीजों को डेली देखता हूँ, और ये बिल्कुल सही बात है कि आपको खाने में परहेज करना होता है, लेकिन ये बात गलत है डायलिसिस के बाद कमजोरी आती है और आराम करना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर सही तरीके से डायलिसिस हो रही है

0: जिसको कि एडिक्वेट डायलिसिस बोलते हैं। ये बहुत सारे पैरामीटर पर असेस करनी होती है।
1: जी
0: तो अगर एडिक्वेट डायलिसिस है
1: जी
0: तो पेशेंट बहुत बेहतर फील करता है। और मेरे पास कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो खुद बाइक से या कार से या बस से आते हैं,
1: जी
0: डायलिसिस कराते हैं और चले जाते हैं। एक बार
1: अच्छा
0: जब वो डायलिसिस यूनिट से बाहर निकल जाते हैं तो आप उनको देख के ये नहीं कह सकते कि ये पेशेंट है या ये डायलिसिस करा रहे
1: या
0: होंगे।
1: बिल्कुल हेल्दी
0: बिल्कुल
1: पर्सन है
0: जी, देखने में बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल हेल्दी होते हैं।
1: डॉक्टर साहब। चूंकि समय हमारे कार्यक्रम का सीमित है और बातें अब भी मेरे मन में बहुत सी हैं, शायद हमारे श्रोताओं को भी कुछ ऐसे प्रश्न लगते होंगे जिनके उत्तर उन्हें नहीं मिले, फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि खान पान और दिनचर्या कितनी महत्वपूर्ण होती है किसी डायलिसिस के मरीज के लिए और डायलिसिस से बचाने के लिए भी लोगों को।
0: जी, आप खान पान और दिनचर्या बदल के आप किडनी की बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन एक बार अगर किडनी की बीमारी हो गई और डायलिसिस की नौबत आ गई
1: जी
0: तो फिर डायलिसिस से नहीं बच सकते। लेकिन
1: जी
0: डायलिसिस के मतलब होते हुए आप एक स्वस्थ जीवन जरूर जी सकते हैं।
1: जी जी
0: तो उसमें एक तो खान पान आपको स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ से मतलब फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए, जो नमक है नमक की मात्रा सीमित रखनी चाहिए, और डेली एक्सरसाइज होनी चाहिए, और आपका जो वेट है वो हेल्दी कैटेगरी में रहना चाहिए आपकी हाइट के हिसाब से। और जो डायलिसिस वाले मरीज हैं उनको ये सलाह दी जाती है कि नमक की मात्रा सीमित रखें, फास्फोरस की मात्रा सीमित रखें,
1: जी
0: पोटेशियम की मात्रा सीमित रखें, और प्रोटीन इंटेक अच्छा रखें, और पानी की मात्रा अपने ड्राई वेट के हिसाब से डॉक्टर से कंसल्ट करके डिसाइड करते रहें।
1: जी डायलिसिस के मरीजों का जो दिनचर्या है या उनका खान पान है वो किस तरह का होना चाहिए जिनकी डायलिसिस हो रही है जिन
0: हाँ,
1: मरीज।
0: हम अभी इन्हीं की बात कर रहे थे। इसमें बस एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो डायलिसिस वाले पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली जो हीमोडायलिसिस वाले पेशेंट हैं, उनमें प्रोटीन इंटेक नॉर्मल पॉपुलेशन से थोड़ा ज्यादा होता है। जो बिल्कुल हेल्दी लोग हैं उनको हम बोलते हैं कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट का प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। हीमोडायलिसिस वाले मरीजों के लिए यही प्रोटीन रिक्वायरमेंट 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होती है। और जो पेरिटोनियल डायलिसिस वाले पेशेंट्स हैं इनमें यही प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 1.4 से 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हो जाती है।
1: अच्छा,
0: जी
1: ये परिवर्तन होता है।
0: जी
1: डॉक्टर साहब क्या खास सुझाव देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को, चूंकि हम बात कर रहे हैं गुर्दे की बीमारियों में डायलिसिस की भ्रांतियां और सच्चाई की।
0: जी, मेरा एक सबसे जरूरी सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यही है, अगर आपका मरीज उस स्थिति में पहुंच गया है जहां पे कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, गुर्दा रोग विशेषज्ञ होते हैं, और वो अगर डायलिसिस के लिए सलाह दे रहे हैं तो मना नहीं करना चाहिए। ये डायलिसिस जो है लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है, और मन में किसी भी तरह का डाउट है तो आप अपने डॉक्टर के साथ बैठिए और वो डायलिसिस क्यों करना चाहते हैं, उसके कॉन्स क्या है, प्रोज क्या है, कब तक डायलिसिस चलेगी, तो वो सारी चीजें समझिए और मरीज की बेहतर रिकवरी में आपको हेल्प करेगा।
1: जी बिल्कुल, हम कामना करते हैं और ऐसा विश्वास भी करते हैं कि उचित सलाह स्वस्थ जीवन की गारंटी होती है। उचित सलाह के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाएं। अगर डायलिसिस की बात करें तो डायलिसिस की जरूरत है तो डायलिसिस कराने में हिचकना नहीं चाहिए।
0: जी
1: डॉक्टर
0: बिल्कुल,
1: की सलाह पर समय से डायलिसिस कराते रहेंगे तो गुर्दे सही काम करेंगे और व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है।
0: जी
1: डॉक्टर प्रेम मोहन झा साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे श्रोताओं को गुर्दे की बीमारियों में डायलिसिस के विषय में, भ्रांतियां के बारे में भी आपने विस्तार से बताया, सच्चाई भी बताई। आपका स्टूडियो में आने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
3: रोहेलखंड का आधुनिकतम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल गंगाशील हॉस्पिटल दीदीपुरम बरेली।
4: मानसिक तनाव, अत्यधिक चिड़चिड़ापन, सोचते सोचते खो जाना, याददाश्त की कमी, परेशान रहना, रोज के कार्य करने में असक्षमता, मेंटल ट्रॉमा जैसी किसी भी समस्या में परामर्श एवं सुझाव करें गंगाशील अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता से।
5: कैंसर के इलाज का अति आधुनिक अस्पताल,
3: गुर्दे और पेशाब संबंधी बीमारियों के इलाज की सभी सुविधाएं,
6: महिलाओं के बांझपन और जठरांत की सभी बीमारियों के इलाज की सुविधा,
3: स्किन अथवा त्वचा के रोगियों का संपूर्ण इलाज,
6: 24 घंटे इमरजेंसी सेवा,
3: आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों के इलाज के लिए सरकार द्वारा अधिकृत अस्पताल गंगाशील हॉस्पिटल दीदीपुरम बरेली। इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 8273254444।
7: साथियों, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, 100.4 MHz पर। 8 बजने को है, थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम रिले किया जाएगा आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

हिंदी कार्यक्रम के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से हिंदी के आज के इस अंक में प्रस्तुत है प्रकृति प्रेम और सौंदर्य के उपासक सुमित्रा नंदन पंत। सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत की जन्म जयंती के अवसर पर लीजिए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।

वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। हिंदी साहित्य की कोमलतम अनुभूतियों को यदि किसी कवि ने शब्दों में जीवंत किया तो वो नाम है सुमित्रा नंदन पंत। उनकी कविताओं में प्रकृति की हरियाली है, हिमालय की शीतलता है, प्रेम की मधुरता है और मानवता की गहरी संवेदना है। वो केवल छायावाद के प्रमुख स्तंभ नहीं थे बल्कि हिंदी काव्य को आधुनिक चेतना देने वाले महान साहित्यकार भी थे। आपकी रचनाएं पढ़ते समय ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति स्वयं बोल रही हो। शब्दों में संगीत बहता है, कल्पनाएं रंगों की तरह फैल जाती हैं और मन किसी शांत पर्वतीय प्रदेश में पहुंच जाता है। पंत जी की कविता केवल पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के सुंदर पर्वतीय क्षेत्र कौसानी में हुआ। कौसानी की प्राकृतिक छटा ने उनके बालमन को गहराई से प्रभावित किया। बचपन में ही उनकी माता का निधन हो गया था जिसने उनके मन में एक गहरी संवेदनशीलता और भावुकता उत्पन्न कर दी। हिमालय की ऊंची चोटियां, बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं, देवदार के वृक्ष, झरनों की कलकल ध्वनि और पक्षियों का संगीत, ये सब उनके हृदय में ऐसे समा गए कि आगे चलकर उनकी कविता का आधार बन गए। यही कारण है कि उनकी कविताओं में प्रकृति केवल दृश्य नहीं बल्कि एक जीवित आत्मा के रूप में उपस्थित होती है। पंत जी ने प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा और वाराणसी में प्राप्त की। बाद में वो इलाहाबाद गए जहां साहित्यिक वातावरण ने उनके व्यक्तित्व को नई दिशा दी। महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और साहित्य साधना को अपना जीवन बना लिया। उनका मन पुस्तकों, दर्शन और प्रकृति के बीच रमने लगा। वो संस्कृत, हिंदी, बंगला और अंग्रेजी साहित्य से अत्यंत प्रभावित थे। रवींद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के विचारों ने भी उनके चिंतन को गहराई प्रदान की। हिंदी साहित्य में छायावाद को भावुकता, प्रकृति प्रेम और सौंदर्य चेतना का युग माना जाता है। इस युग के चार प्रमुख स्तंभ थे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। इनमें पंत जी को प्रकृति और सौंदर्य का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। आपकी कविताओं में कोमल भावनाएं, संगीतात्मक भाषा और कल्पना की अद्भुत उड़ान दिखाई देती है। यदि पंत जी की कविताओं का सबसे बड़ा आधार खोजा जाए तो वो प्रकृति है। उन्होंने प्रकृति को केवल देखा नहीं बल्कि जिया है। उनकी कविताओं में पर्वत मुस्कुराते हैं, बादल खेलते हैं, फूल बातें करते हैं और हवाएं गीत गाती हैं। उनकी प्रसिद्ध कृतियां जैसे पल्लव, वीणा, गुंजन और युगांत प्रकृति सौंदर्य और मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण है। उनकी कविता में प्रकृति केवल बाहरी सौंदर्य नहीं बल्कि आत्मा की शांति और जीवन का सत्य बनकर उभरती है। वो मानते थे कि मनुष्य का संबंध प्रकृति से टूटना और उसकी संवेदनाओं का सूख जाना है। समय के साथ

पंत जी के चिंतन में परिवर्तन आया। प्रारंभिक कविताओं में जहां प्रकृति और सौंदर्य प्रमुख थे, वहीं बाद की रचनाओं में सामाजिक चेतना, मानवता और प्रगतिशील विचार दिखाई देने लगते हैं। उन्होंने गरीबी, असमानता और मानव संघर्ष को भी अपनी कविताओं में स्थान दिया है। वो चाहते थे कि साहित्य केवल सौंदर्य का चित्रण न करे बल्कि समाज को एक नई दिशा भी दे। आपकी रचनाओं में ये परिवर्तन हिंदी साहित्य के विकास का महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। यही कारण है कि पंत जी केवल छायावादी कवि नहीं बल्कि आधुनिक चेतना के कवि भी कहे जाते हैं। पंत जी की भाषा अत्यंत मधुर, कोमल और संगीतात्मक है। आपके शब्दों में चित्रात्मकता है। वो ऐसे शब्दों का चयन करते थे जिन्हें पढ़ते ही मन में दृश्य उभर आए। उनकी कविताएं पढ़ते समय लगता है मानो कोई चित्रकार रंगों से कविता रच रहा हो। हिंदी भाषा को उन्होंने सौंदर्य, लय और नवीनता प्रदान की। आपकी प्रमुख रचनाएं पल्लव, वीणा, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, लोकायतन और चिदंबरा हैं। इन रचनाओं में प्रकृति, प्रेम, दर्शन, मानवता और सामाजिक चेतना का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। पंत जी को हिंदी साहित्य में अतुलनीय योगदान के लिए अनेक सम्मान प्राप्त हुए। उनकी कृति चिदंबरा के लिए उन्हें प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण जैसे सम्मान भी प्राप्त हुए। ये केवल एक कवि का सम्मान नहीं था बल्कि हिंदी साहित्य की समृद्ध परंपरा का गौरव था। आज का मनुष्य तकनीक और व्यस्तता के बीच प्रकृति से दूर होता जा रहा है। संवेदनाएं धीरे धीरे कम होती दिखाई देती हैं। ऐसे समय में पंत जी की कविताएं हमें फिर से प्रकृति और मानव मूल्यों के निकट ले जाती हैं। वो सिखाते हैं कि जीवन का वास्तविक सौंदर्य सरलता, प्रेम और संवेदनशीलता में छिपा है। उनकी कविताएं मन को शांति देती हैं और ये एहसास कराती हैं कि प्रकृति केवल देखने की वस्तु नहीं बल्कि जीवन का आधार है। सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य के ऐसे अमर कवि हैं जिनकी रचनाएं सदैव जीवित रहेंगी। वो प्रकृति के उपासक थे, सौंदर्य के साधक थे और मानवता के सच्चे कवि थे। उनकी कविताओं में हिमालय की शीतलता, फूलों की कोमलता और मनुष्य के हृदय की गहरी संवेदनाएं एक साथ दिखाई देती हैं। उन्होंने हिंदी कविता को केवल शब्दों का संसार नहीं दिया बल्कि उसे आत्मा की अनुभूति बना दिया। जब जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाएगा, सुमित्रानंदन पंत का नाम प्रकृति और संवेदना के अमर गायक के रूप में स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा।

प्रकृति प्रेम और सौंदर्य के उपासक सुमित्रा नंदन पंत। अभी आप सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत की जन्म जयंती के अवसर पर यह विशेष कार्यक्रम सुन रहे थे। आलेख वाचन और संपादन सुरेंद्र राजेश्वरी का था और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। अब इसके साथ ही आज का हिंदी कार्यक्रम का यह अंक अब यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTU-UP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें, वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप

0: यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: मीडियम वेव 461 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 8:10 हो गए हैं, अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं संयुक्ता बैनर्जी के स्वर में गीत। तो चलिए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं रामप्रिया की इस रचना के साथ, जिसके बोल हैं जय जयति जय।

इस गीत के साथ ही अब आज का सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में आज कलाकार थीं संयुक्ता बैनर्जी, इनके गाए गीत आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 8:30 हो गए हैं, अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं और प्यार हो गया फिल्म से। आवाजें आपको बता दें, उदित नारायण की हैं और इस गीत में जो संगीत है वो नुसरत फतेह अली खान साहब का है और बोल लिखे हैं जावेद।

0: से अधीक्षक SDPGM और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश। आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है। एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें, वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: साथी है

0: चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश। आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTWP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: उदित नारायण की आवाज में कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सुन रहे थे दस्तक फिल्म से। इसी के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम चित्रपट से अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से होगी।

0: कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता

0: के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है, और मेरा भी ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
1: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बने संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsonAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कागज कलम

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं जूली फिल्म के गाने से, जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, संगीत राजेश रोशन का, बोल आनंद बख्शी के।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: लीजिए सुनिए अनिरुद्ध फिल्म में किशोर कुमार को। तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: अभी आपने एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत सुना। आवाज किशोर कुमार की थी, फिल्म का नाम था आराधना।
1: तुम्हें याद करते करते
2: छाया गीत
1: लग जागने।
2: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
3: तेरे मेरे सपने अब
2: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
3: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
2: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

खामोशी द म्यूजिकल। अभी आपने इस फिल्म में अलका याग्निक और हरिहरन को सुना। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी जतिन ललित ने। और यह है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश।

एसपी बाला सुब्रमण्यम के गाय इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनका कार्य उन्हें जीते जी अमर कर देता है। फिल्मों में गिरीश कर्नाड को हमने चरित्र अभिनेता के रूप में देखा, निशांत, स्वामी, मंथन, अपने पराए, मेरी जंग, सुर संगम के तो वे नायक थे, परंतु मूलतः गिरीश सच्चे साहित्यकार और रंगकर्मी थे। गिरीश कर्नाड का जन्म 19 मई 1938 को महाराष्ट्र के पर्यटन स्थल माथेरान में हुआ था, मगर उनकी मां कृष्णाबाई और पिता डॉक्टर रघुनाथ कर्नाड कन्नड़िगा थे, अर्थात कर्नाटक के रहने वाले थे। प्राथमिक शिक्षा मराठी में हुई। आगे जब वो परिवार कर्नाटक के सिरसी गांव में रहने लगा, तब गिरीश नाटक मंडलियों के संपर्क में आए। वहां के लोक नाट्य यक्षगान के तो वे जबरदस्त प्रशंसक थे। गिरीश जब 14 बरस के थे, तब उनका परिवार धारवाड़ में आ बसा।

0: जहां उन्होंने बीए तक की पढ़ाई पूरी की और फिर वे इंग्लैंड चले गए। ऑक्सफोर्ड के मैगडलिन शहर में रहकर उन्होंने फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स विषयों को लेकर एमए की डिग्री हासिल की।
1: सर,

1963 में भारत लौटने के बाद गिरीश कर्नाड चेन्नई में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लिए काम करने लगे। अब भी नाटकों और लोक कलाओं के प्रति उनका आकर्षण कम नहीं हुआ था। चेन्नई में रहते हुए गिरीश कर्नाड द मद्रास प्लेयर्स नामक नाटक मंडली से जुड़ गए। विदेश जाने से पहले ही 1961 में गिरीश कर्नाड ने जब लिखना शुरू किया था, ये वो समय था जब कन्नड़ साहित्य पर यूरोपीय साहित्य की छाप देखने को मिलती थी। कमोबेश सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य की स्थिति यही थी। सी राजगोपालाचारी द्वारा रचित महाभारत का संस्करण गिरीश कर्नाड ने पढ़ा और उन्होंने अनुभव किया कि महाभारत के पात्र उनके मस्तिष्क में विचरण कर रहे हैं और उन पात्रों के संवाद कानों में गूंज रहे हैं। आगे एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि मैं तो मात्र लेखनी हूं, एक एक कर सभी पात्र मेरे कानों में बोलते गए और मैं लिखता गया। नाटक तैयार हुआ ययाति। पांडवों के पूर्वज ययाति पर केंद्रित यह नाटक बहुत सफल हुआ और अन्य भाषाओं में इसके अनुवाद भी हुए। 1964 में गिरीश कर्नाड ने अपना अगला नाटक लिखा तुगलक। 14वीं सदी के दिल्ली के इस सुल्तान की कहानी के माध्यम से तत्कालीन प्रशासन के महत्वाकांक्षी आदर्शवाद का बुलबुला बड़ी सहजता से दर्शाया गया था इस नाटक में। गिरीश कर्नाड को एक नजरिया मिल गया था, कहानी के स्रोत इतिहास या पुराणों से लेना और समकालीन विषयों तथा आधुनिक मानव की अस्तित्व के लिए चल रही लड़ाई के साथ उसे जोड़ देना। मात्र 26 वर्ष की आयु में गिरीश कर्नाड एक उदीयमान प्रतिभाशाली लेखक के रूप में स्थापित हो चुके थे। सन 1971, गिरीश कर्नाड के कला जीवन की दो महत्वपूर्ण घटनाएं, एक और 11वीं सदी के संस्कृत ग्रंथ कथा सरित सागर से ली गई एक कहानी पर आधारित नाटक है वदन का निर्माण, और दूसरी ओर SL भैरप्पा के उपन्यास पर बनी फिल्म वंश वृक्ष का निर्देशन। लोकनाट्य यक्षगान के सांचे में ढलकर नाटक हैवदन का सफल मंचन हुआ और खूब सराहना मिली। ये नाटक जर्मन भाषा में भी अनुवादित हुआ, उसका निर्देशन किया जानी मानी निर्देशिका विजया मेहता ने। यूं तो 1970 में ही गिरीश कर्नाड का पदार्पण हो चुका था फिल्म संस्कार के पटकथा लेखक के रूप में। इस फिल्म को राष्ट्रपति के स्वर्ण कमल से सम्मानित किया गया था। निर्देशक के रूप में गिरीश कर्नाड की पहली फिल्म थी वंश वृक्ष, जिसके लिए राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वोत्कृष्ट निर्देशक का पुरस्कार उन्होंने साझा किया BV कारंत के साथ। आगे कई कन्नड़ फिल्मों का उन्होंने निर्देशन किया। जहां तक हिंदी फिल्मों की बात है, 1977 में गिरीश कर्नाड ने जिस फिल्म का निर्देशन किया वो फिल्म थी गोधूली, और 1984 में शशि कपूर निर्मित फिल्म उत्सव।

जी हाँ, क्यों न बजे मृदंग मन में और क्यों न खनके मंजीरा अंग अंग में, जब लेखन और निर्देशन के साथ साथ गिरीश कर्नाड के नाम का डंका अभिनय के क्षेत्र में भी बजने लगा। तब बलियु नीनदे मगने ओंद नंदु कल

0: 1980 के दशक में कलाकारों के लिए एक और मार्ग प्रशस्त हुआ, दूरदर्शन का। नई नई श्रृंखलाएं बनने लगी। अंग्रेजी के मशहूर साहित्यकार आर के नारायण की कहानियों पर आधारित हिंदी सीरियल बना मालगुड़ी डेज, जिसका नायक था एक नन्हा सा नटखट बालक स्वामी। इस श्रृंखला में स्वामी के पिता की भूमिका की थी गिरीश कर्नाड ने।
1: पिताजी कॉफी, मुझे मुझे आपका कमरा चाहिए।
2: किस लिए?
1: मेरा एक दोस्त आ रहा है।
2: तो तुम्हारा अपना कमरा है, वही ले।
1: राजम को वहाँ कैसे ले जाऊँ?
2: ये राजम है कौन, इतना बड़ा आदमी?
1: डीएसपी का बेटा है, बहुत बड़ा आदमी है वो।
2: अच्छा ठीक है, तुम ये कमरा ले सकते हो, लेकिन मेज पर रखी हुई चीजों को हिलाना नहीं।
1: बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा पिताजी, आप अच्छे पिताजी हैं।
0: दूरदर्शन के ही एक कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका टर्निंग पॉइंट के सूत्रधार के रूप में भी हमने गिरीश कर्नाड को देखा है।

1971 से लेकर 1990 तक गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित नागमंडल, अग्निमट्टू माले और तालेदंड, इन नाटकों को अनुवादित रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपार सफलता मिली। भाषा साहित्य की सेवा के लिए गिरीश कर्नाड को 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1974 में पद्मश्री पुरस्कार, 1992 में पद्मभूषण पुरस्कार से गौरवान्वित किया गया। 1992 में ही उन्हें कन्नड़ साहित्य परिषद का पुरस्कार प्रदान किया गया। 1994 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। 1998 में कालिदास सम्मान तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से गिरीश कर्नाड को सम्मानित किया गया। फिल्मों में उनके योगदान को अन्यान्य पुरस्कारों से प्रतिष्ठा मिली। 1971 में बेस्ट डायरेक्टर फिल्म वंश वृक्ष के लिए, 1977 में बेस्ट फीचर फिल्म इन कन्नड़ा तब्बलियू नीनदे मगने के लिए, फिल्म भूमिका की पटकथा के लिए 1978 में बेस्ट स्क्रीन प्ले का पुरस्कार उन्होंने साझा किया श्याम बेनेगल और सत्यदेव दुबे के साथ।

चंदनंदू कलदल्ली। कन्नड़ भाषा में बनी इस फिल्म के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का उन्हें पुरस्कार मिला 1978 में। कन्नड़ भाषा के एक संत कवि कनक पुरंदर पर उन्होंने एक वृत्त चित्र का निर्माण किया था। इसके लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार उन्हें दिया गया 1989 में। साथ ही साथ कर्नाटक राज्य सरकार के कई सम्मान उन्हें मिले तथा कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी गिरीश कर्नाड को मिले साहित्य एवं फिल्मों की।

10 जून 2019 भारतीय रंगमंच और सिनेमा तथा कन्नड़ साहित्य जगत के आकाश से एक चमकता सितारा अस्त हुआ।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था लेखक, निर्देशक एवं अभिनेता गिरीश कर्नाड पर।
1: आज के फनकार।
2: यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 10 बज गए हैं। अब लीजिए सुनिए पुराने फिल्मी नगमों का कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ताजमहल फिल्म के।

भेल प्यार की पकौड़ी मिट्टी बातों की भेल थोड़ा नून थोड़ी मिर्च थोड़ी सूट थोड़ा तेल अरे वाह वाह वाह।

चोर कहे कोई कोतवाल, किस पे यकीन करूं मुश्किल सवाल। दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल, दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल। कहीं ढोल कहीं बोल, सीधी बात टेढ़ी चाल।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे हाफ टिकट फिल्म से। ये गीत आगे बढ़ चलते हैं और अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म जब प्यार किसी से होता है। आवाजें आपको बता दें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

गीता दत्त की आवाज में आर पार इस फिल्म से कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे। आगे बढ़ चलते हैं और अगला गीत भी आपको सुनवाते हैं गीता दत्त की आवाज में भाई भाई फिल्म से।

आशा भोसले और किशोर कुमार की युगल आवाजों में चलती का नाम गाड़ी, इस फिल्म से कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे। आगे बढ़ चलते हैं और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में आरज़ू।

पुराने फिल्मी नगमों का कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 10:30 हो गए हैं। अब ये समय है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं उस्ताद नसीर खान का सारंगी वादन, राग है पुरिया का।

0: अभी आप सुन रहे थे उस्ताद नसीर खान का सारंगी वादन, राग था पुरिया कल्याण। इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपके रेडियो सेट पे, न्यूज ऑन AIR ऐप से आपके स्मार्टफोन और DTH पर आकाशवाणी लखनऊ का ये प्रसारण आप सुन रहे हैं।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में आप समाचार सुन सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफी रोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी

0: अब इस साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
0: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Aparajita Nair. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Centre and noted that the India-Italy Defence Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development